0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चली होंगे, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व्ड बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग, द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे, 8 घंटे, जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं, द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुशियां।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती हैं खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा हैं, ठीक है। चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, द बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

चल चल चल मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में एक बार फिर आप सबका स्वागत करते हैं। रिश्तों को जब नए नजर से देखा, नए अंदाज से देखा, तो सबसे पहली बात जो हमारे सामने आई वो ये कि जब भी एक रिश्ते में हम हैं तो उसमें जो मुझे चाहिए उसे अगर मैं देना शुरू कर दूं तो वो मुझे ही मिलता है सबसे पहले, चाहे वो प्रेम की बात है, चाहे वो शांति की बात है, चाहे वो खुशी की बात है। और जब भी हमने अगर पिछली कड़ी को देखें, बहुत इंटरेस्टिंग बात सामने आई थी कि जब हम झगड़ा हो रहा होता है या नाराज हो रहे होते हैं, एक सेकंड अगर हम रुक जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमसे ही होकर गुजर रहा है, जो वो नेगेटिविटी दे रहे हैं या वो हमारे बारे में कुछ कह रहे हैं, बेसिकली वो खुद दर्द में है। उनके उस दर्द को अगर मैंने अंदर ले लिया या मैंने अपने अंदर क्रिएट किया कि उन्होंने मेरे लिए कुछ कहा है, तो मैं खुद दर्द में चला जाता हूं और मैं तब तक किसी और की मदद नहीं कर सकता अगर मैं स्टेबल नहीं हूंगा। ये तो बात बहुत क्लियर सामने आई थी और हमने हर बार की तरह कहा कि एक्सपेरिमेंट करें, अनुभव करके देखें। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और रिश्तों को उस नजर से देखते हैं कि जब सब कुछ ठीक चल रहा है फिर भी कुछ खालीपन है, कुछ कनेक्ट नहीं हो रहा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, जिस तरह से अगर पिछली कड़ी को थोड़ा सा टच करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सिचुएशंस थी, सिचुएशंस बहुत वोलेटाइल हो जाती हैं। अभी तो हम यहां बात कर रहे हैं तो इसलिए सिचुएशंस मुश्किल नहीं लगती हैं, लेकिन जब हम उन सिचुएशंस में होते हैं और हम में से हर कोई उसे दो चार हो रहा है, चाहे वो सुबह घर से निकलते वक्त है या शाम घर पहुंचते वक्त है, एक्चुअली देखा जाए तो इट्स वेरी वेरी पेनफुल प्रोसेस पूरा जो होता है। लेकिन जब हमने देखा कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम वो दर्द को लेना चाहते हैं या हम उस पर स्टेबल हो सकते हैं, थोड़ा सा हम और उसके ऊपर जाएंगे कि आप हमें हमारे साथ बात करें।
1: यू जस्ट सेड दैट द होल प्रोसेस इज वेरी पेनफुल। प्रोसेस

0: not painful. I create pain while going through the process. So that's the only shift jo chahiye. Abhi tak hum kehte hain process is painful, situation is difficult, chaotic. Ye jo words bhi hai na sirf, matlab jo hamari thoughts hain. Just creating these kind of thoughts makes the whole thing very big. Sirf yahan par agar ek shift shuru kar de, process is what it is. Like aapne ka situations to aani hai. Ab jaise aapne ka subah uthkar jo scene create hota. Lekin ye to roz hona hai na. Roz hona hai. Either I withdraw from the situation, I can't do that. Either I try to change the situation, I can't
1: actually,
0: do that.
1: Actually, we start doing these things, you know. Withdraw karke hum fir chup ho jate hain. Hum fir kahin aur apna dimag lagane lagte hain. Matlab kahin kahin aur shifting shuru ho jate hain.
0: Lekin it's not possible to run away from situations. Aap ek paristhiti se withdraw karenge, ek relationship se withdraw karenge, dusre relationship mein kahin na kahin koi challenge aa jayega. So spirituality just teaches us, yes, situations are there. Yes, relationships can be a little challenging. Focus, take care of yourself. Situation apne aap theek hoti jayegi. Sirf thode din ke liye ye experiment karke dekhna, apna focus apne aap change ho jayega. Sirf ye experiment karna hai ki badi se badi paristhiti mein bhi mujhe dhyan apna rakhna hai. Bas utna karna hai. Jaise badi se badi bimari mein bhi dhyan kiska rakhte hain pehle?
1: Apna.
0: राइट चाहे एक छोटा सा वायरस है या एक बड़ा सा एपिडेमिक फैल गया हो पूरे देश में ध्यान किसका रखा जाता है अपना कि हम कैसे बचे ये थोड़ी ध्यान रखा जाता है कि वायरस को कैसे रोका जाए सो फोकस इज वेरी क्लियर तूफान आया है ध्यान किसका रखा जाता है हम कैसे बचे तूफान के साथ थोड़ी जाके लड़ते हैं बैठकर कि तूफान को रोकते नहीं हम कैसे बचे सो दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट कि जबकि फिजिकल चीजों में हमारा फोकस हमेशा राइट होता है कि मुझे अपने को बचाना है तो फिर इमोशनल में भी तो सेम ही करना सपोज हम ड्राइव कर रहे हैं एंड आपकी गाड़ी यहां से आ रही है मेरी गाड़ी यहां से आ रही है लेट्स से मे बी दैट आई एम ऑन द रोंग साइड यू नो बट व्हाट विल यू डू If I am driving on the wrong side, आप क्या करेंगे
1: मैं अपने आप को बचाऊंगी
0: तो isn't that always the focus? कि ठीक है जो सामने वाला आ रहा है he or she is driving on the wrong side, मुझे क्या करना है I don't want to meet with an accident. I will just divert, change my route, whatever. लेकिन जब रिश्तों में आते you are on the wrong side. So what do I do? Head on. Collision. क्यों क्योंकि यू आर ऑन द रॉन्ग साइड सो आई हैव टू कम एंड टेल यू दैट यू आर ऑन द रॉन्ग साइड
1: दूसरे को सुधारना भी तो कई बार हम जो सामने वाला गलत आ रहा होता है उसको गाली भी तो दे रहे होते कि देखो कहां
0: लेकिन पहले क्या करते हैं
1: पहले अपने आप को बचा लेते हैं
0: ऑलवेज पहले अपने को बचाना पहले अपने को बचाना अब वहां अपने आप को बचाते हैं ना कि कहीं मेरी गाड़ी को ना लग जाए कहीं मुझे ना लग जाए और यहां जो सारा दिन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वहां ये ध्यान नहीं रखते वहां कहते हैं वो रॉन्ग साइड से आ रहा है तो मैं क्यों ना उसी साइड से जाकर मैं भी उसको बोल कर आऊं And then collision. And ये जो collision सारा दिन हो रहे हैं कितना impact छोड़कर जाते हैं मुझ आत्मा पर भी impact छोड़ते हैं और मेरी गाड़ी पर भी impact छोड़ते हैं और रिश्तों पे तो impact रहता है तो सिर्फ एक focus. I have to take care of myself. This focus. अब आप देखो वही situation. आप उसको कैसे handle करेंगे आप उसको easily cross कर जाएंगे just because the attention is I have to cross the situation, so I have to take care of myself. दर्द में जाकर कौन सी सिचुएशन क्रॉस की जाएगी फिर तो वो सिचुएशन ही पेनफुल लगती है
1: एक्चुअली और हर मॉर्निंग जो हम कहते हैं बार बार कर रही हूं मैं वो बिल्डअप भी तो हो रहा होता है वो उठते ही बिल्डअप होना शुरू हो जाता है कि अब ये होगा और सीक्वेंस वैसे वैसे वैसे ही होने लगते हैं
0: अब जहां तक ये मॉर्निंग सीन की बात आती ये तो एक तूफान है जो पहले से ही पता कि ये तो रोज ही वो सीन आता है तो जबकि पहले से पता है कि ये परिस्थिति आती है डोंट यू थिंक वी कैन प्रोग्राम आवर सेल्फ फॉर क्रॉसिंग इन द राइट वे सो आई हैव टू आस्क माई सेल्फ कि ये एक एग्जाम है जो मुझे रोज देना होता है तो इसको मैं अपने आप को तैयार करके दूं या रोज गुस्सा करके शोर मचा के एंड उसके लिए मुझे एक ही चीज करनी है एक दिन उसको आराम से क्रॉस करके देखना है
1: इनफैक्ट और इसको मैं एग्जाम क्यों बनाऊं एक्चुअली वो मैंने ही बनाया हुआ है बेसिकली
0: एक्चुअली जितना हम दर्द में जाते हैं उतना हमें लगता है कि सिचुएशन बहुत बड़ी है जितना हम स्टेबिलिटी से क्रॉस करेंगे हमें लगेगा सिचुएशन कुछ भी नहीं है वो तो नॉर्मल एक सीन है जो रोज सामने आता ही है सो इट विल बिकम वेरी वेरी सिंपल जस्ट टेक केयर ऑफ माई सेल्फ दैट इज स्पिरिचुअलिटी
1: यस यू नो इनफैक्ट यहां एक बात बहुत जरूरी सामने आती है कि सबसे इम्पोर्टेंट कौन हो जाता है और किसकी स्थिति कोई भी सिचुएशन है रिश्तों में जब हम हैं और रिश्ते कहीं पे भी हो सकते हैं हम ऑफिस के भी रिश्तों की बात कर सकते हैं

0: हर रिश्ते में आप चेक सिर्फ ये करना है कि मैं क्या हूं, मैं किस सिचुएशन में हूं. वेरी गुड. इनफैक्ट इट विल बी टोटली फोकस ऑन माय सेल्फ. तो ये तो सिचुएशंस हो रही थी शिवानी जहां बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे, लेकिन जनरली भी रिश्ते बन नहीं रहे हैं, रिश्तों में खटास आ गई, ये जो विड्रॉल है इधर, मतलब आई डोंट वांट टू फेस, देयर इज नथिंग टू टॉक, आई डोंट फील रियली रियली कनेक्टेड, यू नो, कोई कम्युनिकेशन नहीं है. यहां क्या करें हम, यहां फिर दूरियां इतनी बढ़ने लगती हैं कि वो कहते हैं फिर कि उसके ग्रेविटी सर्कल से बाहर चला जाता है.
1: When we don't experience the connection with each other, it is because of three major reasons related to time. One is past. कि कोई past hurt है उस रिश्ते के अंदर, कोई past की बात है जो हर time सामने आकर खड़ी हो जाती है. तो जब भी अगर कोई ऐसे past की बात होती है तो हम एक barrier create करके रख देते हैं कि past में आपने मुझे hurt किया था
0: और अभी तक मेरे साथ चल रहा है,
1: आपने कुछ ऐसा किया जो मेरी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार नहीं था, यू हैव लेट मी डाउन, यू हैव डन समथिंग विच आई डिसअप्रूव ऑफ, यू हैव ऑफेंडेड मी, यू नो, ऑल दिस इज यू हैव डन दिस. तो जितना हम इस तरह के थॉट्स क्रिएट करते तो हम एक अंदर एक स्टोरी सी बना लेते हैं अपने रिश्ते को लेकर, और इस स्टोरी का जो यू नो प्राइम सीन है वो ये है कि आई एम हर्ट एंड मेरा हर्ट का कारण कौन है, आप. तो क्योंकि मैंने ये एक सीन बिकॉज ऑफ अ पास्ट इंसिडेंट कुड बी वेरी बिग, वी आर नॉट डिनाइंग दैट, लेकिन मैंने वो पास्ट हर्ट को पकड़ कर रखा है एंड वो दर्द मुझे अभी भी महसूस हो रहा है एंड आई होल्ड यू रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट हर्ट. तो इसलिए जब भी मैं आपके कनेक्शन में अभी भी आती, आई काइंड ऑफ हैव अ बैरियर बिकॉज पेन इज अ बैरियर. और ये बैरियर जब बीच में आ जाता है तो एनर्जी will not flow. So we have to remember कि जो हमारे past की बातें हैं वो हमारे present पर influence करेंगे, क्योंकि whenever I meet the person next, that past, कि past में ये हुआ था, I am not able to let it go.
0: तो मैं भुलाऊं कैसे, भूल पाना ही तो possible नहीं है.
1: सबसे easy तरीका भूलने का फिर से वही मंत्र है कि आपने मुझे hurt नहीं किया,
0: मैंने खुद create किया हुआ ये hurt. आपने जो कुछ किया, स्पेशली अगर कुछ ऐसा हुआ है, अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप,
1: आई गिव यू अ सिंपल एग्जांपल. वन पेरेंट कॉल्स अप, कपल डॉक्टर हैं दोनों, एंड कॉल्स अप एंड सेज माय सन हैज लेट मी डाउन, 10th स्टैंडर्ड में सन है. सो व्हाट हैपेंड, एंड इट साउंडेड एज इफ पता नहीं बेटे ने क्या किया है. माय सन इज इन द 10th स्टैंडर्ड एंड ही इज हैविंग अ रिलेशनशिप इन स्कूल विद अ गर्ल. सेड ओके, Yes, fine. But it's a situation. Okay, maybe as a parent, आप उस बात से approve नहीं करते.
0: मैंने उसको इतनी freedom दी, मैंने इतनी independence दी, और मेरे विश्वास को मैं पता, I can actually write the script.
1: Now see, script, yeah, standard script हो गया ना हम सबका. अब देखो वो जो vicious cycle of thoughts शुरू होता है. You know, the parents said, मैंने उसको इतने अच्छे संस्कार दिए थे, वो इतना अच्छा था, मैं क्या बताऊं आपको सिस्टर, वो इतना अच्छा था. एंड इन दैट फोन कॉन्वर्सेशन ऑफ अबाउट 10 मिनट्स, 5 टाइम्स दैट ब्रदर सेड वो इतना अच्छा था, वो इतना अच्छा था. आई सेड था मतलब क्या, एंड देन ही जस्ट स्टॉप्ड बिकॉज ही रियलाइज्ड व्हाट ही वाज सेइंग. आई सेड आर यू ट्राइंग टू से कि मेरा बेटा बहुत अच्छा था एंड अब उसने कोई एक बात ऐसे कर दी है विच यू आर फीलिंग सो लेट डाउन, सो डिसअपॉइंटेड, कि नाउ व्हेन आई से वो इतना अच्छा था मीन्स कि अब वो अच्छा
0: नहीं है.
1: कौन सी एनर्जी फ्लो करेगी
0: वो, पर वो मान ही रहे होंगे ना कि वो अच्छा नहीं है बिकॉज आपने एक उनके उस पे आप उतरे नहीं, खरे नहीं उतरे हैं
1: किसी एक बात में ना.
0: हाँ.
1: So we are not saying, अब what are we expecting कि दूसरा बिल्कुल वही करेगा जो मेरी डेफिनेशन ऑफ राइट और रॉन्ग में.
0: पर मैं जीवन भर उसकी हर बात मानता रहा, मैंने उसको सब कुछ दिया जो उसने कहा, जो उसने मांगा, और वो इस तरह, मतलब वो.
1: सी, वी विल हैव टू अंडरस्टैंड कि बच्चा अपने पर्सपेक्टिव से तो गलत ही नहीं कर रहा है. एंड एज अ पेरेंट इफ यू डू नॉट अग्री विद व्हाट योर चाइल्ड इज डूइंग, यू हैव अ कॉन्वर्सेशन, यू टॉक अबाउट इट, लेकिन वो कॉन्वर्सेशन के लिए भी एक एनर्जी चाहिए ना. एनर्जी तो चाहिए, एक कनेक्शन ही होगा ना. कॉन्वर्सेशन भी तो तब होगा जब वेन बी बोथ कनेक्ट. लेकिन जहां मैंने ये एनर्जी भेजनी शुरू कर दी कि आप इतने अच्छे थे, मैंने आपको इतने संस्कार दिए, आपने क्या किया उनका, इफ आई थ्रो दिस काइंड ऑफ एनर्जी एट यू, डू यू थिंक हम एक कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं?

0: के बाद.
1: ओह नो, इनफैक्ट और I can actually see a lot of parents doing it, you know, and they feel they are justified.
0: And this can be on small things or on little big things, but ye scenes to aane hi hain. This is a part of the parent child relationship. This is a part of the child upbringing.
1: In fact, yahan ek aur baat main aapse janna chahti hu. It's like about parent child only. Usually kya hota hai, seventh eighth tak mother takes care of child's education usually. बच्चे के स्कूल से जुड़ी हुई या उसकी पढ़ाई की बात या उसकी, क्योंकि मे बी फादर जो है वो क्लाइंब कर रहा होता है अपने करियर में. जैसे ही नाइन्थ आता है, टेंथ आता है, हायर क्लासेस आ जाते हैं, विच आई हैव नोटिस्ड. हायर क्लासेस आते ही अब टेंशन शुरू हुई, अब ट्यूटर लगेगा, अब एजुकेशन की प्रॉब्लम आएगी, अब करियर की प्रॉब्लम आएगी. फादर कम्स एंड टेक्स ओवर द एजुकेशन पार्ट. चाइल्ड डज नॉट इवन रिलेट टू द फादर. फादर इज नॉट इवन अवेयर कि बच्चे का मेरे पढ़ने का पैटर्न क्या है, उसको क्या क्या चीजें आती हैं, कैसे वो पढ़ता है. दिस इज व्हाट आई हैव सीन विद सो मेनी पेरेंट्स. और यहां कॉन्फ्लिक्ट इतना मेजर होता है तब बच्चे मेजर डिप्रेशन में जाते हैं,
0: क्योंकि कनेक्ट नहीं है ना.
1: यहां कनेक्ट नहीं था ना, ये जो मैं कह रही हूं कि कनेक्ट नहीं है. फादर कहते हैं मेरे बेटा मेरी बात समझता क्यों नहीं, जबकि मैंने सारी जिंदगी इंडिपेंडेंस दिए रखी, फ्रीडम दिए रखी. तो यहां ये जो, और बच्चा जो है, आई हैव सीन वन चाइल्ड गोइंग सो मच इन टू डिप्रेशन क्योंकि वो फादर की एक्सपेक्टेशन को मीट आउट नहीं कर पा रहा था.
0: सो दैट इज व्हाट हैपेंस. यू हैव नॉट मेट अप टू माई एक्सपेक्टेशंस, इसके लिए आई एम हर्ट. हमने ही एक्सपेक्टेशंस बनाई, हमने ही फिर अपने आप को कहा कि यू हैव नॉट मेट अप टू माई एक्सपेक्टेशन, और फिर हमने ही उसको लेकर हर्ट क्रिएट किया. सारा प्रोसेस कौन कर रहा?
1: मैं.
0: और उससे एनर्जी जो होगी ब्लॉक हो जाएगी. ना इस एनर्जी ब्लॉकेज के बाद रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन, क्योंकि हम कहते हैं कम्युनिकेशन इज द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, लेकिन रिलेशनशिप में वो कम्युनिकेशन कैसे होगा? जहां भी एक बैरियर आ गया, दर्द आ गया, हर्ट आ गया, उसके बाद कम्युनिकेशन
1: नहीं होता,
0: बहुत अच्छा नहीं होता. आपको याद होगा एक प्रोग्राम में एक बच्चे ने हमारे साथ शेयर किया था, एंड शी वॉज आई थिंक इन द 10th स्टैंडर्ड और समथिंग, एंड शी सेड के माई पेरेंट्स गो थ्रू अ लॉट ऑफ पेन जब भी मुझसे कोई गलती होती है, कि दे फील कि उनकी अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं है. बट ये भी है हर्ट, लेकिन उसने कहा कि दे गो थ्रू सो मच पेन कि नाउ आई फील लाइक कमिटिंग सुसाइड. अब suicide तक आपकी thought आ गई है, and we just asked her one thing, have you talked to your parents about this?
1: She said no.
0: This is a sign कि our communication is, मतलब मैं suicide करने तक का सोच लिया
1: क्योंकि मेरे parents hurt हो रहे हैं,
0: लेकिन
1: मेरी वजह से,
0: लेकिन I have not gone and talked.
1: See, this is what disconnect I'm talking about. Actually मेरे wrong take खड़े हो गए, because this is what we're all going through.
0: एंड अंदर ही अंदर उसके साथ हम जूझ रहे हैं, हम उसको ठीक भी करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा क्या करना है, लेकिन वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट, वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट बिकॉज वी हैव क्रिएटेड सो मच पेन. सो दैट्स वाई अगेन इट विल कम बैक टू आवर बॉटम लाइन, जब तक हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे वी विल नॉट बी एबल टू हैव दैट गुड रिलेशनशिप. तो पास्ट का जो हर्ट है वो भी हमारे एनर्जी फ्लो को ब्लॉक करता है. दूसरा है प्रेजेंट, प्रेजेंट बिहेवियर आपका कैसा है. एज आई एम ग्रोइंग अप एज अ चाइल्ड आई सी माई पेरेंट्स एंड टीचर्स बींग वेरी जजमेंटल. यू नो, मैं सीखती हूँ कि अच्छा ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ठीक नहीं है, ये गलत है, वेरी जजमेंटल. हम बहुत ईजिली औरों के प्रति अपनी जजमेंट्स पास करते हैं, और जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स भी बनती जा रही हैं. आई लाइक
1: और क्लियर होती जा रही हैं हमारी,
0: वेरी क्लियर. आई एम वेरी क्लियर मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नहीं पसंद है. एक तरफ है जजमेंट्स देना, और दूसरी तरफ है मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है. दोनों चीजें ठीक है, लेकिन दोनों चीजें जब मिक्स हो जाती है, माई लाइक्स एंड डिसलाइक्स गेट मिक्स्ड विद जजमेंटल. तो जो जो चीजें मैं डिसलाइक करती हूँ उसके प्रति मैं बहुत इजिली एक जजमेंट दे देती हूँ कि ये है ही गलत. यू नो, लाइक फॉर एग्जांपल, यू आर वेयरिंग, इफ यू आर वेयरिंग ब्लैक कलर, आई डोंट लाइक ब्लैक कलर, लेट्स से इट्स ओके, आई डोंट लाइक ब्लैक कलर. बट मैंने अपने डिसलाइक को अगर जजमेंटल बना दिया तो मैंने कहा ब्लैक कलर ही अच्छा
1: खराब है,
0: तब वो एक अलग पर्सपेक्टिव ले लेती है.
1: यस, यू नो द टू डिफरेंट थिंग्स, आई डोंट लाइक ब्लैक कलर, बट ब्लैक कलर ही खराब है.
0: दोनों में बहुत अंतर है, दोनों में बहुत अंतर है.
1: yes.
0: लेकिन हम जाकर
1: आई डोंट लाइक योर फ्रेंड, बट योर फ्रेंड इज बैड.
0: यस,
1: ओ यस,
0: सी, दे आर टू डिफरेंट.

0: certain thing. Each one will have their likes and dislikes. That's a part of the journey. Lekin uske upar jab hum apni negativity project karke us pe judgmental ho jate hain, ye hai hi kharab. जैसे आपके अंदर कोई संस्कार हो सकता है जो मुझे पसंद नहीं, लेकिन अगर मैंने कह दिया ये है ही खराब, तो मैंने क्या कर दिया, उतनी अपनी एक डिसलाइक की वजह से मैंने जजमेंट पास कर दी. एंड नाउ वंस आई हैव लेबल्ड यू लाइक दिस, नाउ विच एनर्जी विल फ्लो,
1: ये दिस विल टोटल डिस्कनेक्ट, यू विल नॉट एक्सेप्ट.
0: तो मैं बहुत इजिली जजमेंटल होके लोगों के प्रति लेबल्स लगा देती हूँ, ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही है. और जैसे ही हमने एक नेगेटिविटी का लेबल अगर किसी के प्रति लगाया, एंड हम जस्टिफाइड फील करते हैं, मेरा लेबल राइट है, वो तो है ही ऐसे, एनर्जी कौन सी फ्लो करेगी,
1: कंप्लीट डिस्कनेक्ट.
0: अब जब भी हम मिलेंगे, हम उनको उस लेबल के थ्रू देखेंगे. वो जो है जैसे है वो नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि मैंने लेबल कर दिया, मैंने जजमेंट कर दी कि आप तो है ही, देयर आर सो मेनी लेबल्स, ये तो है ही मैनिपुलेटिव, ये तो है ही श्रूड, ये तो है ही चलाक, ये तो है ही धोखे, यू नो सो मेनी थिंग्स, सो मेनी थिंग्स, ये जजमेंट्स पास करते
1: और हम अपनी पूरी जिंदगी उस पर, ओ यस, यू नो, हम अगर और अपने अपने क्लोज रिश्तों में भी, इनफैक्ट हम अपने क्लोज रिश्तों में जितने जजमेंटल होते हैं ना, उतने शायद बाहर कहीं नहीं होते हैं, और उनके साथ हम जीवन भी जी रहे हैं.
0: लेकिन जितना जितना हम जजमेंट्स पास करेंगे, उतना एनर्जी फ्लो करना बंद हो जाएगी, देयर विल बी अ ब्लॉक नाउ, बिकॉज मैंने जजमेंट ही पास कर दी. नाउ आई विल सी यू थ्रू दैट जजमेंट, तो क्वालिटी ऑफ एनर्जी कौन सी होगी, फ्री फ्लोइंग तो होगी ही नहीं, वो ब्लॉक हो जाएगी. तो एक है पास्ट हर्ट, एक है प्रेजेंट आपका कोई बिहेवियर.
1: और इसमें बहुत आई थिंक इट्स लाइक अमेजिंगली क्लियर नाउ कि स्पेशली अगर हम देखें सिस्टर इन लॉज, मदर इन लॉज, और ये जो रिश्ते थे मामी चाची, ये जो सारे रिश्ते, वो सारे ही क्लोज रिलेशन है. मुझे उनकी कोई एक चीज अच्छी नहीं लगी, मतलब कुछ एक बिहेवियर
0: तो
1: अच्छा नहीं लगा,
0: कोई ना कोई संस्कार
1: नहीं अच्छा लगा, लेकिन मैंने कहा कि नहीं वो वही है,
0: ये हो गया.
1: हाँ.
0: तो हमने अपने डिसलाइक पर एक जजमेंट पास
1: और कर, फिर मैं अच्छा देखने को तैयार ही नहीं हूं, मैं अपनी आंखों से वो पट्टी हटाना ही नहीं चाहती, बिकॉज आई फील सो स्ट्रांगली अबाउट माई डिसलाइक, यू नो दैट माई डिसलाइक इज राइट,
0: इज राइट, इट्स राइट, इट्स जस्टिफाइड, ये लेबल करेक्ट है जो मैंने लगाया है आपके,
1: इसलिए उसमें कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, कोई दूसरा अच्छा दिखाना भी चाहेगा, आई डोंट वॉन्ट टू हियर दैट.
0: अब एनर्जी कैसे फ्लो कर,
1: ओ यस, ब्लॉक, टोटल ब्लॉक.
0: So we're talking about relationships, matlab free flowing energy. So that will not happen. So one is past hurt, dusra hai vartaman samay aapka vyavahar, aur teesra hai future threat. Aapse mujhe kuch ek feeling aati hai of insecurity. To kya hota, main ek barrier create kar leti hu. Main pehle hi jaise ek deewar create kar leti hu taki main aapko chance hi nahi do
1: ki aap mere nazdeek aaoge.
0: Yes. So I will either overpower you or I will withdraw from you. कई बार तो हम डिफेंसिव मैकेनिज्म पर अग्रेसिव भी हो जाते हैं कि मुझे अपने आप को बचाने के लिए मैं आपके ऊपर ही गुस्सा करने लग जाती हूँ. दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ थ्रेट कि कहीं ना कहीं आप मेरी पोजिशन या मेरी जो पावर या पर्सनैलिटी है इसको कहीं आप ले न जाएं. दिस कैन हैपन इन एन ऑफिस, इट हैपन्स वेरी ऑफन इन एन ऑफिस. It happens in a mother-in-law relationship.
1: Yes.
0: Yeah, it happens very often there. कि एक future threat है कि कहीं ना कहीं ये ही ना पूरे घर के ऊपर या पूरे परिवार के ऊपर या मेरे बेटे के ऊपर, you know, whatever. तो वो जब पहले से ही हमने एक जो हुआ भी नहीं है अभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है, लेकिन मैंने already वो कहानी पहले से ही क्रिएट कर दी, और जैसी कहानी फिर क्रिएट करेंगे तो एनर्जी फ्लो कैसा होगा,
1: वो होने लगती है फिर चीजें,
0: क्योंकि फिर थॉट्स लीड टू डेस्टिनी.
1: इवन रिलेशनशिप में, मतलब इवन हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में भी, अगर वाइफ पहले से ही सोच ले कि मैंने ये काम किया है या okay, मैंने एक साड़ी खरीद ली है बिना अपने हस्बैंड को बताए हुए, वो आएंगे और वो कुछ कुछ कुछ कुछ बोलेंगे, एंड इनवेरिएबली इट स्टार्ट्स हैपनिंग कि वो वैसा ही बोलते हैं.
0: लेकिन अभी तो उन्होंने ऐसा बोला ना, कई बार आप देखो क्योंकि मैं पहले से ही वो आइडिया कंसीव कर लेती हूँ कि दूसरा ऐसा बोलेगा, तो उसके बोलने से पहले ही मैं कुछ और जोर जोर से बोल देती हूँ ताकि मैं आपको बोलने का चांस ही नहीं दूँ, क्योंकि मैंने पहले से सोच लिया था कि आप ऐसा कुछ बोलेंगे. सो दिस वॉज समथिंग आई कॉन्सेप्चुलाइज.

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पर रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ऐकत रहा 107.8 FM, आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
1: हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ। अगले साल ठंड छह महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं छह महीने बीमार रही। उसके दो साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके चार साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट, एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस। क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM। आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
1: खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार, अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुणेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप ऐकतायत रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पुण्याचा आवाज तुमच्या हृदयाचा साते। पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशिया बाटो।
1: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफ स्टाइल कहते हैं। लाइफ स्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग। लाइफ स्टाइल इज अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग, स्पीकिंग, बिहेविंग। दैट्स माई लाइफ स्टाइल।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: लेकिन अगर मैं गलत हूं तब भी मैं सॉरी नहीं कह पा रहा इसी कारण से कि वो मुझे माफ करेंगे या नहीं करेंगे या उनका अपर हैंड हो जाएगा, यू नो, वो मुझे दबा पाएंगे। तो ये जो गिल्ट है या ये जो है ये मेरे को क्या तंग कर रहा है?
1: ये बात भी जो शिवानी बहन ने कही वो अच्छे से समझनी चाहिए कि चाहे मैं ये समझ रहा हूं कि मैं सही हूं लेकिन सामने वाले व्यक्ति को हर्ट हुआ है, तो मैं समझ लू उनको हर्ट तो हुआ, मैं सही सिर्फ मेरे नजरिए से था, उसके नजरिए से तो मैं गलत था। तो अगर मैं वहां पर आई पुट माई फुट इन ही शूज एंड देन सी कि भी कहां हर्ट हो रहा है, तब मुझे रियलाइज होगा कि भी हर्ट तो हो रहा है और मुझे माफी मांगने से अगर वो हर्ट दूर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात कि अगर मैं नहीं मांगता हूं तो उनसे नेगेटिव वाइब्रेशन मुझे कंटिन्यूस मिल रहे हैं, वो मेरे बारे में नेगेटिव सोच रहा है और इससे भी मुझे हार्म होगी अल्टीमेटली, क्योंकि वो ऑरा मेरे तक पहुंचता है और मुझे उसका नुकसान होगा, इसलिए भी मुझे माफी मांगनी है। और ये छोटी सी बात है वास्तव में तो,
0: लेकिन मैं गलत ही नहीं।
2: जब आपको अपोलोजाइज करना है, ये नहीं कि ऊपर ऊपर से कर दूं, ये नहीं है, दिस इज नो चीटिंग ईच अदर। मैं किस बात के लिए अपोलोजाइज कर रही हूं? मैं अपोलोजाइज जो मैंने किया उसके लिए नहीं कर रही हूं, मैं अपोलोजाइज इस बात के लिए कर रही हूं कि आप हर्ट हैं। टू थिंग्स आर डिफरेंट। आप दर्द में हैं, उस बात के लिए मैं आपको सॉरी कहती हूं। नॉट जो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने कुछ किया, ये कांच टूट गया इतना बड़ा, ये टेबल आपके लिए बहुत वैल्यूएबल थी लेकिन मेरी गलती से टूटी, आई डिडंट डू इट डेलिबरेटली, सो बट यू आर नाउ सो मच इन पेन, सो आई अंडरस्टैंड दिस कि मेरे किसी एक्शन ने आपके अंदर ये दर्द क्रिएट किया, तो आई एम सॉरी नॉट फॉर ब्रेकिंग द टेबल बट आई एम सॉरी फॉर हैविंग बिकम एन इंस्ट्रूमेंट फॉर यू टू एक्सपीरियंस सो मच पेन। वो तो सत्य है ना, वो तो झूठ नहीं है ना। हाँ ये ठीक है, ये मेरी गलती नहीं थी, ये हो गया या मेरे को लगता है ये सही था, वट एवर, लेकिन आप दर्द में हैं, इज दिस अ फैक्ट, सो आई एम सॉरी फॉर यू हैविंग टू गो थ्रू सो मच पेन, दिस कैन बी से सॉरी टू इच अदर। भले आई वॉज राइट बट यू हैव इन यू आर इन पेन, आई एम सॉरी फॉर दैट।
0: लेकिन वहां से फिर रिजल्ट नहीं आता है?
1: नहीं, रिजल्ट आएगा। देखो कभी करके देखिए, जब हम सॉरी कहते हैं तब आप देखेंगे कि जो वंडरफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। सबसे पहले तो कई बार ये होता है सामने वाले व्यक्ति कहेगा नहीं नहीं आपकी तो गलती थी नहीं, तो सारी चीज रिजोल्व हो गई, आप ही उस बोझ को लेकर के घूम रहे थे। दूसरी बात कि वो व्यक्ति रोने लगेगा, तो भी हुआ कि उन्होंने माफ कर दिया, हो सकता है कि अभी हंसने भी लगे। और चलो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, आप कहेंगे कि भाई उसने माफ नहीं किया लेकिन आपने तो माफी मांग ली, आप तो हल्के हो गए, वो भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है।
0: अगर नहीं मांगी माफी, अगर गिल्ट में हूं मैं या ये सब कुछ चल रहा है, व्हाट इज हैपनिंग टू मी, व्हाई आई नीड टू डू दिस,
1: तो अंदर तो आपके वो ब्लॉक्स क्रिएट हो रहे हैं ना, सूक्ष्म में वो इफेक्ट हो रही है, जिसे टॉक्सिक इमोशंस का कहा, भल उससे थोड़ी कम परंतु वो इफेक्ट हो रही है और वो इफेक्ट सारे बॉडी ऑर्गन्स पर हो सकती है, क्योंकि अंदर में आप बोझ को लेकर के घूम रहे हैं, खुशी का अनुभव नहीं करेंगे।
0: डॉक्टर, अभी आपने कहा कि आप उस कर्म के लिए सॉरी नहीं हो अगर, लेकिन उस इमोशन को आपके अंदर क्रिएट करने का जो इंस्ट्रूमेंट आप बने हैं उसके लिए सॉरी हो सकते हैं। तो जो जैसे मैं माफी मांग रही हूं वो तो उम्मीद करता है कि अब उस कर्म के लिए आई शुड फील सॉरी।
2: लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोग्रामिंग। अपने आप को थोड़े समय पहले देखते हैं जब हमें ये नहीं समझ में आया था कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई थॉट्स, तब हम ये फील करते थे कि उन्होंने जो कहा उससे मेरा हर्ट क्रिएट हुआ। नेक्स्ट प्रोग्रामिंग ये हुआ करती थी कि वो सॉरी कहेंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा, होता था ना, इसी प्रोग्रामिंग के साथ हम चल रहे थे कि मैं बुरा भी तब फील करता हूं जब कोई कुछ कहता है, अच्छा भी तब फील करता हूं जब कोई उसको चेंज करता है। दैट्स द पावर ऑफ सॉरी। पीपल आर एक्चुअली वेटिंग टू हियर दैट सॉरी। उनकी कोडिंग अंदर ये हुई हुई है कि जैसे ही ये सॉरी कहेंगे आई विल फील फाइन। ये बहुत डेफिनेट है, डेफिनेट कोडिंग हमारी हुई हुई है। वो ये नहीं रियलाइज कर रहे कि पहले उनके सेंटेंस को मैंने लिया हर्ट क्रिएट करने के लिए, अब उनके सॉरी को मैं लेता हूं अपने आप को बेटर फील कराने के लिए। सॉरी इज वर्क्स एज अ स्टिम्यूलेंट, प्रोवाइडेड यू आर नॉट जस्ट सेइंग इट ऊपर से, यू आर रियली फीलिंग इट। कई बार आप कुछ लोगों के साथ देखेंगे, आप उनको सॉरी कहें, वो कहेंगे नहीं मुझे नहीं लगता आपने रियलाइज किया है। आप कहेंगे रियली आई एम रियली सॉरी फॉर व्हाट हैज हैपेंड। नो आई डोंट थिंक मेरे को

0: तक आप ऊपर ऊपर से कह रहे हैं, यू नो वाई, अभी उनका दर्द नहीं गया। जब तक उनका दर्द नहीं जाएगा, आपका सॉरी सच्चा नहीं था। आप चार बार, पांच बार, दो महीने के बाद फिर से, छह महीने के बाद फिर से कहो, दे आर हील्ड, दिल से नाउ यू हैव रियलाइज्ड बिकॉज नाउ आई एम हील्ड।
1: अच्छा, इट डजंट मैटर कि सामने वाला
0: शायद छह महीने पहले ही रियलाइज कर चुका था कि वो सॉरी है, लेकिन मेरी हीलिंग नम जब तक नहीं होती ना, मुझे लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। इतना डीप मेरी प्रोग्रामिंग ये है कि जिस दिन वो रियलाइज कर लेगा, मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। बिकॉज मैंने ये कभी नहीं समझा था कि मेरा दर्द मैं खुद ठीक करती हूँ। वी कीप ऑन अदर टाइम्स वेन वी कीप ऑन डिमांडिंग सॉरीज फ्रॉम पीपल। सॉरी बोलो फॉर व्हाट यू हैव डन। व्हाई? आप सॉरी बोलेंगे आई विल फील बेटर। दिस इज अ वेरी सटल वे कि जिससे हम अपने आप को ठीक कर पाते हैं। अब वो अपने को कैसे ठीक कर रहे हैं, वी डोंट नीड टू अंडरस्टैंड। वी नीड टू अंडरस्टैंड हम कैसे हेल्प कर सकते हैं अपने को भी फ्री करने में और सामने वाले को भी फ्री करने में।
1: नो, बट दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वेट करते हैं। हम भी तो वेट कर रहे होते हैं।
0: हम तो वेट
1: कि वो सॉरी कहे।
0: yes.
1: और एक्चुअली हम कई बार वेट करते हैं कि उसको रियलाइजेशन भी तो हो।
0: हाँ, तो रियलाइजेशन कब? जिस दिन मेरा दर्द खत्म हो गया उस दिन आपको रियलाइजेशन हो गया। दिस इज हाउ द प्रोग्राम इज गोइंग। हाउ डू आई कम टू नो कि आपके अंदर रियलाइजेशन हुआ है कि नहीं, कैसे पता चलेगा मुझे?
1: सी, वंस यू रियलाइज, अगेन सॉरी कोई ऐसे नहीं कह देता। मुझे लगा कि मैंने कुछ गलत किया, तो देन आई कम एंड हैव अ टॉक विद यू मे बी कि वाई आई डिड दिस, और या ऐसा मैंने किया था तो ये सही नहीं था, आई शुडंट हैव डन दिस।
0: नेक्स्ट मंथ यू माइट डू इट अगेन। आपने रियलाइज किया? नहीं। आप फील कर रहे हो कि हाँ आई एम सॉरी, नेक्स्ट मंथ यू माइट रिपीट द सेम थिंग एब्सोल्यूटली ऑल ओवर अगेन, क्योंकि आपके हिसाब से वो गलत था ही नहीं। वो आपके हिसाब से गलत नहीं था, या वो आपकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है, वो आपकी you know, संस्कार बना हुआ है। रियलाइजेशन मीन्स स्टॉप, चेक, चेंज, गॉन। कितनी चीजें हम इतनी जल्दी चेंज कर पाते हैं? नहीं, हम रियलाइज कर सकते हैं, लेकिन उसको जब तक ट्रांसफॉर्म नहीं किया, इट्स नॉट अ रियलाइजेशन। लेकिन आपका वो एक सॉरी मुझे हेल्प कर देता है टू फ्री माई सेल्फ ऑफ अ लॉट ऑफ पेन।
1: एंड इज इट देन यूजुअली वी आर सेइंग सॉरी जस्ट बिकॉज, सॉरी फॉर क्रिएटिंग हर्ट टू यू, नॉट बिकॉज आई एम रॉन्ग?
0: या मोस्ट ऑफ द टाइम आई वुड फील, बट वी आर नॉट अवेयर कि दिस इज वॉट वी आर डूइंग। आप एक बच्चे को देखो, बच्चे ने कोई गलती कर दी, मदर गुस्सा होकर बैठ गई या मदर रोने लग गई, बच्चे अपने गलती के लिए नहीं सॉरी कह रहा होता, बच्चा अपनी मदर को ऐसे देख रहा होता है ना कि मेरी मदर, मेरी ये बात की वजह से मेरी मदर रो रही है। वो अपनी मदर को चुप कराना चाहता है। बच्चा कई बार रो रहा होता है, मदर चाहती है कि बच्चा चुप कर जाए, मदर बच्चे को कहती है, बच्चे आई एम सॉरी मैंने तुमको ऐसा। व्हाई? शी वॉन्ट्स दैट द चाइल्ड शुड गेट हील्ड, द चाइल्ड वॉन्ट्स दैट द मदर शुड गेट हील्ड। सो व्हाट इज इट, व्हाट आर वी डूइंग विद ईच अदर? हम एक दूसरे को दर्द से बाहर निकालना चाहते हैं। कर्म के बारे में तो एक्चुअली हम बहुत ज्यादा सोच भी नहीं रहे होते,
1: लेकिन अगली बार हमारे सामने वो कर्म आता है, हम दो बार सोचते हैं, बिकॉज इट्स गोइंग टू हर्ट माई मॉम।
0: या बिकॉज इट्स गोइंग टू हर्ट माई मॉम, नॉट बिकॉज द कर्म इज राइट और रॉन्ग। सी, दैट इज द थिंग। आप अपने बच्चे को कुछ एक चीज, उसको सपोज आपने अपने बच्चे को कहा कि स्कूल बंक करके नहीं जाना चाहिए, ही माइट स्टिल लाइक दैट थिंग, उसको अभी भी अच्छा लग रहा है वो आइडिया, लेकिन इट माइट हर्ट माई मॉम, दैट इज वाई आई विल नॉट डू इट। इक्वेशन इज वेरी डिफरेंट। आई हैव नॉट रियलाइज दैट द एक्शन इज रॉन्ग, मेरा उस पर नहीं है रियलाइजेशन। अभी मेरे को सिर्फ टेम्पररी, क्योंकि कुछ एक दिन पहले ही ये हुआ था, थोड़े दिन के बाद जब मुझे वो हर्ट वाला सीन भूल जाएगा, आई विल स्टिल थिंक ऑफ बंकिंग स्कूल एंड गोइंग। तो मेरी रियलाइजेशन एक्शन के बारे में नहीं, मेरी रियलाइजेशन कि आपको दर्द हुआ, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती, इसलिए सॉरी। दो बातों में काफी फर्क है।
2: पहली बात अगर हो जाए, मुझे रियलाइज हो कि मेरी एक्शन गलत थी एंड आई एम सॉरी फॉर दैट, तो सुपीरियर है। तो सदा के लिए खत्म हो जाएगा।
0: देन इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन ना, देन इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, लेकिन हम जो रो देते हैं एक दूसरे को इमोशनली, गिल्ट में फील, बच्चे ने गलती की, पेरेंट्स क्या करते हैं, बात करना बंद कर देंगे। दिस इज अ वे ऑफ पनिशिंग द चाइल्ड कि मैं नहीं बात करूंगा। बच्चे के लिए पेरेंट सबसे इम्पोर्टेंट है, मेरे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट, स्पेशली जब बहुत छोटे, मेरे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति मेरे से नाराज है, वो गोल गोल गोल गोल घूमता रहेगा सॉरी सॉरी सॉरी कहते हुए। व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू? वी ट्राइंग टू टीच हिम अ लेसन, बट दिस इज नॉट द वे। वी आर टीचिंग हिम द रॉन्ग इक्वेशंस

0: लाइफ एक्चुअली उसको उस एक्शन के प्रति लेके जाने की बजाय उस कर्म में क्या गलती हुई, उसका क्या रीजन था, वी जस्ट शोड हिम आई एम हर्ट एंड यू हैव टू से सॉरी. आपका सॉरी बोलने से आई विल बिकम बेटर एंड दैट इज वॉट इज हैपनिंग इवन आफ्टर वी ग्रो अप. द इक्वेशंस जस्ट गो ऑन डूइंग द सेम थिंग. हम एक दूसरे को हर्ट देखते हैं, फटाफट सॉरी बोलते हैं ताकि आपका मूड ठीक हो जाए. भले मैं गलत था या नहीं था, मैं सॉरी बोल दिया ताकि आप ठीक हो जाओ, मतलब आप अपसेट नहीं हो इतना. That's all that we're doing. But we need to understand कि this does make a difference to other people. And most important, मेरे लिए बहुत useful है वो, provided I'm feeling it from inside. Feel करके करें. आजकल कई बार हम सिर्फ ऐसे ही sorry बोल देते हैं ताकि आप ठीक हो जाओ. Then it won't work.
1: नहीं तो feel करके हम क्या कर्म पे काम करेंगे फिर भी?
0: दोनों बातें हैं ना. अगर कर्म आपको लगा कि गलत है तो आप कर्म पे काम करेंगे, या ये आपको लगा कि कौन सा कर्म से किसको दर्द क्रिएट होता है तो आप उस बात पर काम करेंगे. लेकिन कुछ तो काम करेंगे ना, कहीं तो अटेंशन रखकर अपने अंदर परिवर्तन लेंगे. सॉरी को सिर्फ एक शब्द की तरह यूज करके रिश्तों में एक्सप्लॉइट तो नहीं करेंगे ना. यू विल रियली वर्क ऑन व्हाट यू आर सेइंग टू ईच अदर. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कई भाई बहने ऐसे मिलते हैं, दे आर गिल्टी कि उन्होंने कोई अपने पेरेंट के साथ या कोई भाई बहन के साथ कुछ ऐसा किया था एंड देव लेफ्ट द बॉडी. कहते कुछ ऐसा करवा दो जिससे हम एक बार उनको सॉरी कह सके. यू नो इतना गिल्ट दे कैन कैरी एंड उससे उनकी पूरी प्रेजेंट एंड फ्यूचर अफेक्ट हो सकता है जस्ट बिकॉज टाइम रहते हमने वो सॉरी नहीं कहा था. वो गिल्ट इतना बर्डन आपके साथ चल सकता है. सो इट कैन बी वेरी डैमेजिंग टू द एंटायर पर्सनैलिटी.
1: वही पूछा जा रहा है कि जो अब ये जो सारी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, चाहे वो गिल्ट की हैं, हर्ट की हैं, ये अगर हम कैरी करते जाते हैं, अगर लेट को नहीं किया है, सो वेयर डज इट लीड फिजिकली ऑल्सो?
2: फिजिकली ऑल्सो इट विल हैव द सिमिलर. जो भी ऑर्गन वीक है उस पर उसकी नेगेटिव इफेक्ट होगी, या स्पेसिफिक जो ऑर्गन पर उसकी इफेक्ट होनी है वो स्पेसिफिक ऑर्गन पर भी होगी. जैसे गिल्ट की जो फीलिंग है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर हो सकती है. इवन नो गिल्ट कैन अफेक्ट योर एंडोक्राइन सिस्टम एज वेल, क्योंकि उसके साथ इमोशंस जुड़े हुए हैं, तो उस प्रकार की बीमारियां आपको होगी.
1: सप्रेस्ड फीलिंग्स या गिल्ट जो है, ये एक जो हम चुप हो जाते हैं, यू नो हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि, और ये जो एक डर कि मुझे माफ करेगा कि नहीं करेगा, तब हम शायद चुप रहते हैं, नहीं बोल पाते हैं, उसको कैसे ओवरकम करें?
2: लेकिन हमने तो बोल दिया, एटलीस्ट हम तो हल्के हो गए. अगर वो व्यक्ति माफ नहीं करता है फिर भी भले हमें नेगेटिव इफेक्ट होगी, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी हमारे पास आएगी, परंतु हमारी ओर से तो हम हल्के हो गए. एटलीस्ट 50% बेनिफिट हुआ. अब 50% उस व्यक्ति की गलती है, नहीं कर रहा है बोले फिर से भी कहो.
1: पश्चाताप की जो बात है सर शिवाली, पश्चाताप में जो रोना और पश्चाताप में जो हम अपने आप को वन गिल्ट में रख के बहुत सारी चीजें ऐसे करते हैं, वो बहुत डैमेजिंग कई बार होता है, क्योंकि उसमें हम बहुत अपना लो सेल्फ एस्टीम में भी जाते हैं.
0: दो बार गलती हो रही है ना. एक बार जब मैंने वो किया तब गलत एनर्जी क्रिएट की. सपोज मैंने आपको गुस्सा कर दिया, बहुत जोर से अभी आपको कुछ कह दिया, तो अभी गलती हो गई. अब उसके बारे में मैं चार दिन गिल्ट में रहूं, हाँ मैंने इस तरह से बात कर दी, मैंने उस तरह से बात कर दी, तो वो गलती एक बार नहीं हुई, कितनी बार हो गई. सो गिल्ट इज वेरी वेरी डैमेजिंग. और आज हम बहुत सारी बातों की वजह से गिल्ट में हैं. गिल्ट इज नॉट द सोल्यूशन. पश्चाताप इज नॉट द सोल्यूशन. ट्रांसफॉर्मेशन इज द सोल्यूशन. हाँ मैंने पिछली बार ऐसे बात की, ये गलत थी, अब चाहे कुछ भी हो जाए, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट अगेन. मेजोरिटी टाइम वी सी कि सपोज मैंने आज आपसे गुस्सा किया, जोर से किया, कई दिनों तक मैं गिल्ट में भी रही, बुरा भी लगा, लेकिन अगली बार मेरे मुख से फिर उस तरह से बात निकल जाती है. क्यों? क्योंकि जितनी देर मैं पश्चाताप में भी रही, मैं एनर्जी कौन सी क्रिएट कर रही थी? नेगेटिव. तो आत्मा की शक्ति और भी कम होती जा रही थी. जैसे ही स्टिम्यूलस फिर से आया, मुझे फिर गुस्सा आ गया, फिर मैं अगले कुछ दिन फिर पश्चाताप में रही. आई हैव सीन सो मेनी पीपल जो कहते हैं, जैसे हस्बैंड का वाइफ पर हाथ उठ जाता है, कहते हम नहीं करना चाहते, हम बिल्कुल नहीं करना चाहते. बहन आपको नहीं पता, जब हम करते हैं हमें इतना बुरा लगता है, हम पक्का करते हैं, हम नहीं, फिर अगली बार फिर वही होता है. क्यों? क्योंकि हमने अपने थॉट्स को ट्रांसफॉर्म नहीं किया. नेक्स्ट टाइम वो नहीं हो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? ताकत चाहिए. ये सारी नेगेटिव थिंकिंग तो मेरी ताकत को और भी कम कर देती है, मेरी गलती

0: बार बार रिपीट हो रही है। पश्चाताप मीन्स जो गलती मैंने की उसको मैंने अब रिपीट नहीं करना है, फुल स्टॉप। उसके बारे में सोचना सोचना सोचना इज एक्चुअली उस गलती को बार बार रिपीट करना। जितनी बार मैं उसके बारे में सोचूंगी, मैं वही नेगेटिव एनर्जी खुद को भी और आपको भी भेज रही हूँ। सो इट्स जस्ट वन थॉट कि आई विल नॉट डू इट अगेन, चेंज माई थिंकिंग, फिर आप स्टिम्यूलस चाहे कुछ भी दो।
1: बट वी ऑलवेज से विल नॉट डू इट अगेन।
0: हाँ,
1: नॉट टू इवन अदर्स,
0: टू योर सेल्फ, टू योर,
1: अपने आप को भी कहते हैं कि हम नहीं करेंगे।
2: पश्चाताप करना अच्छा है, लेकिन एक ही बार करो और टोटल चेंज।
1: मतलब इट हैज टू फिनिश। वो कैसे करें, नहीं हो पाता ना,
0: क्योंकि हमने अपने थॉट को नहीं चेंज किया।
1: क्योंकि वही बात है ना कि कर्म को चेंज करना तो चाहा हमने कि हम हाथ नहीं उठाएंगे, हम गंदा नहीं बोलेंगे, हम गुस्सा नहीं करेंगे, हाथ नहीं उठाएंगे, लेकिन वो हुआ नहीं, हो नहीं पाता।
0: कहीं ना कहीं हम अभी तक जस्टिफाइड है अपने उस कर्म के लिए। सी दैट्स व्हाई इट्स कमिंग डाउन अगेन टू द सेम थिंग। मैं चाहती हूँ ये रिश्ता ठीक हो जाए, लेकिन उस समय जब मुझे गुस्सा आया था, मेरे अंदर एक और थॉट है जो कहता है लेकिन मुझे गुस्सा तो इसलिए आया था ना क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा था, तो एक्चुअली तो मेरा गुस्सा जस्टिफाइड था। तो मैंने अपने बिलीफ को नहीं बदला, थॉट नहीं बदली, मैंने सिर्फ अपने आप को कहा अगली बार मैं ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन बिलीफ सिस्टम, थॉट्स, फीलिंग, एटीट्यूड, एक्शन नहीं बदला, वो एक्शन में फिर से आ जाएगा।
2: स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन नहीं किया।
0: बिलीफ सिस्टम ये कि उन्होंने भले कहा, गुस्सा मैंने किया था, आई हैव अ चॉइस कि आई कैन चेंज माई रिस्पॉन्स टू एनी सिचुएशन।
1: ये गुस्सा करना मेरे लिए अच्छा नहीं है।
0: नहीं, बट माई चॉइस ऑफ क्रिएटिंग द रिस्पॉन्स इज टोटली इन माई हैंड, इंडिपेंडेंट ऑफ द सिचुएशन। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, मेरा रिस्पॉन्स मैं क्रिएट करती हूँ। ये प्रोग्रामिंग मुझे बार बार अगर मैं करूँ, नेक्स्ट टाइम मेरा रिस्पॉन्स मेरे कंट्रोल में होगा, तब मैं अपने आप को कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ ये बात अब फिर से नहीं होगी।
2: उन्होंने गलती की लेकिन मैं गुस्सा करके दूसरी गलती कर रहा हूँ,
1: लेकिन मैं क्रिएट कर रहा हूँ।
2: हाँ, मैंने क्रिएट भी किया और दूसरी गलती, एटलीस्ट मुझे तो गलती नहीं करनी चाहिए, इसलिए भी मुझे गुस्सा नहीं करना, इसलिए मैं सही बात को चूज करूँ।
1: डॉक्टर साहब, ये तो बात रही कि हमने खुद ये रिस्पॉन्स क्रिएट किया, अगर हम चाहते हैं तो उस बिलीफ सिस्टम पर जाना पड़ेगा। और कौन सी ऐसे इमोशंस हैं जो हमारे को आगे बढ़ने में रोकती हैं?
2: ये वास्तव में तो जो भी आज हम है, हम सब में कुछ अच्छाई भी है, कुछ बुराई भी है। उन सब को अगर हम देखें तो उसके रूट में कुछ बिलीफ सिस्टम होती है, एक भी हो सकती है, शायद दो तीन भी हो सकती है। एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, अगर सभी करें तो हम टोटली रूट को अच्छे से समझ सकते हैं कि एक झाड़ का चित्र बनाएं और फिर आज हमारे में जो भी चीजें हैं कि कुछ अच्छाई है, जैसे भी मेरे में नम्रता है, एकाग्रता अच्छी है, मैं हार्डवर्किंग हूं, ये अच्छी बातें। कुछ बुराइयां भी हो सकती कि मेरे में आलस है, गुस्सा है, गिल्ट फीलिंग है, वो पूरी लिखे और फिर ये ढूंढे कि इन सब के रूट में एक या दो कोई बातें हैं। देखो, एक दो उदाहरण के द्वारा मैं स्पष्ट करता हूं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उनको डिप्रेशन लगता था, या तो मैं अच्छे से काम नहीं कर पा रहा हूं। वो एक बैंक में थे लेकिन मुझे प्रोजेक्ट देते हैं तो ज्यादा टाइम लगता है और लोग तो जल्दी कर लेते हैं। रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, वाइफ वॉज वेरी गुड, स्टिल ही फेल्ट कि भी मैं उनकी संभाल ठीक से कर नहीं पा रहा हूं। एक बेटी थी, उसका ध्यान नहीं रख रहा हूं। ऐसे सारे उसके सिम्टम्स लिखे। जब फादर की डेथ हुई तो ब्रह्मा कुमारी बहनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो मैंने कहा देखो सारा ये परिवार है वह भी आपके साथ है और सब लोग आपको इतना सहयोग दे रहे हैं। जब यह बात क्लियर हो गई कि मैं अकेला नहीं हूं तो एकदम ठीक हो गए। उनकी दवाइयां भी चल रही थी, छूट गई 3-4 महीने। तो ऐसे एक बार वो रूट को अगर हम समझ ले तो सब कुछ दूर हो सकता है।
0: इमोशनल ब्लॉक्स,
2: जैसे
0: हार्ट में ब्लॉक्स, वैसे
2: इमोशनल ब्लॉक्स है।
1: तो इमोशनल ब्लॉक्स को समझा अगर, देखा, तो फिर उसको ठीक भी अपने आप कर पाएंगे क्या?
2: हाँ बिल्कुल, फिर से आत्मा के साथ ही काम करना है।
1: अपने आप को पॉजिटिव दिखाना है,
0: डिटैच होकर ऐसे औरों को बताते हैं, अपने को बताना है। सी, अगर ये किसी के साथ भी और होता, कोई भी व्यक्ति उनको ये बता सकता, देखो आपकी वाइफ कितनी अच्छी है, यू हैव टू जस्ट बी एबल टू से इट टू योर सेल्फ। लेकिन उसके लिए अपने दर्द से डिटैच होना पड़ता है, दैट इज वाई सोल कॉन्शियसनेस हेल्प्स। ये सारी चीजें हम बहुत इजिली कर पाएंगे जब हम अपनी परिस्थितियों से डिटैच हो पाएंगे। हमें परिस्थिति ऐसे दिखाई देगी जैसे वो किसी और की परिस्थिति है। विल बी एबल टू गिव द राइट थॉट।

0: to ourselves. लेकिन इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है वी स्पेंड सम टाइम विद आर सेल्फ. यू नो हमारा क्या हो रहा है, दर्द है, ब्लॉकेज है, नुकसान हो रहे हैं, हम चल रहे हैं, चलते जाओ, बहुत हमें लगता है ये नेचुरल है मुझे, मैं ऐसा ही हूं करके. वर्क ऑन योर सेल्फ, राइट इट डाउन, फाइंड योर ब्लॉक, क्लीन योर ब्लॉक, दोनों काम हमें ही करने हैं.
1: रिजोल्व करने की जो बात है कि जब तक रिजोल्व नहीं करेंगे तब तक वो क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं आ पाएगी.
2: कि आपको समझ में आ जाए तो भी वो रिमूव हो जाए.
1: तो ये रियलाइजेशन हमें अपने आप ही अपने आप को देखते देखते होगा. देखने की आदत तो होती जा रही है, समझ भी रहे हैं तरीका, सिर्फ ये नहीं पता था कि ये ब्लॉक्स जो हैं ना सिर्फ जीवन के हर सुख से, अगर शरीर के सुख देखें उससे भी हमें दूर कर रहे थे. सिस्टर शिवानी, डॉक्टर पटेल, थैंक यू सो मच. कोई बात मन में है आप हमें ईमेल या फोन पर संपर्क करें. हमारे फोन नंबर हैं 9999344555, 9999344666, 9873666555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. अवेटिंग विद प्रमा कुमार, इसमें आज इतना ही, आगे फिर मुलाकात करेंगे. ओम शांति.

0: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में। आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। और आज हमारे विद्यार्थी मित्रों के लिए एक बहुत ही सुंदर अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं, एक नए विषय को लेकर हम लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो आज का विशेष विषय है करियर ऑप्शन का कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट। जी हाँ, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट क्या है, क्या करते हैं और किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से ये कमाते हैं, इसके बारे में है आप सभी को आज पता चलेगा। तो आज के हमारे एक्सपर्ट जैसे हमेशा की तरह अमृतपाल जी हैं, जो करियर काउंसलर हैं, करियर कम्युनिकेशन एक्सपर्ट भी हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे कि ये विषय हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों के लिए, वो भी आपको बताने वाले। आप सभी की तरफ से अमृतपाल जी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: ओम शांति। न्यू एज करियर्स की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशंस की। मैं हूं आपकी सर्टिफाइड करियर काउंसलर न्यू दिल्ली से अमृतपाल, और कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट इसके बारे में आज हम बात करेंगे। क्या होता है कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट? पहले इसको हम पीआर एजेंसी के नाम से भी जानते थे, लेकिन आज की डेट में जो कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट होते हैं वो पीआर एजेंसी भी खोल लेते हैं और वो बहुत सारी कंपनियों के साथ इंडिविजुअली भी काम कर सकते हैं। ऐसे लोग जो बातचीत करने में माहिर हैं, जिन्हें बात करनी बहुत अच्छे से आती है, लेकिन कब, क्या, कैसे और कितनी बात करनी है ये वो सीखकर ये अपनी स्पेशलाइजेशन के साथ कंपनियों के साथ जुड़ते हैं। क्योंकि जो कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट होते हैं उनकी आवाज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनकी नब्ज की तरह होती है, चाहे वो एम्प्लॉयज हो या बाहर की दुनिया हो। ये लोग एक बहुत ही ब्रिज का काम करते हैं, जहां पे वो सही समय पे सही बात कहते हैं।
0: चलिए साथियों, मोटे तौर पे आपने समझ लिया कि कैसे कम्युनिकेशन एक्सपर्ट जो है काम करता है, उनका काम क्या है। तो आइए आगे जानते हैं विस्तार से।

0: नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। चलिए अब बात करते हैं सोशल मीडिया किस तरह से कम्युनिकेशन में रोल अदा करता है, एक अच्छा कम्युनिकेटर बन गया है सोशल मीडिया, और इसका इम्पोर्टेंस क्यों है इसके बारे में जानते हैं। जी अमृता पाल जी।
1: जी तो आगे बात करते हैं हम कि कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट का रोल क्या होता है, उसकी स्पेशल ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। सबसे पहली बात है कि उन्हें इंटरनल और एक्सटर्नल इन दोनों ही लेवल पे, यानी कि कंपनी के अंदरूनी और बाहर दोनों ही लेवल पे कम्युनिकेशन को स्पेशलाइज करना होता है, यानी कि उन्हें कंपनी के गोल्स को अच्छे से समझना होता है, कंपनी के कल्चर को अच्छे से समझना होता है, और इस तरह से बातें रखनी होती हैं कि बाहर जब बात कंपनी की जाए तो जो इन्वेस्टर्स हैं, पब्लिक है, एम्प्लॉइज हैं, उन सबको एक तो कंपनी का गोल समझ में आए और कंपनी अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या कर रही है, वो सब बातें बड़ी सावधानी से, सटीकता से, अच्छे ढंग से और विभिन्न चैनल के माध्यम से पहुंचा सके सही समय। इसमें कंपनी की जो ब्रांड इमेज होती है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जो ब्रांड इमेज है लोग कैसे उस ब्रांड को देखते हैं। जैसे अमूल मक्खन है तो दुनिया अमूल को किस तरह से देखती है। अमूल के और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, अमूल के मक्खन के साथ साथ अमूल का दूध भी आता है, लेकिन अमूल अगर कोई और अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करेगा तो लेकिन दिमाग में उनके अमूल मक्खन की ही बात आती है, और जो वैल्यू अमूल ने क्रिएट की अपने नाम के साथ वो नए ब्रांड के पास भी या नई प्रोडक्ट के साथ भी जुड़ जाएगी। इसलिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है ब्रांड की वैल्यू बनाना। अब इस ब्रांड इमेज को आगे ले जाते हैं जब, तो क्राइसिस मैनेजमेंट, यानी कि कोई ऐसी समस्या आ जाती है, हर कंपनी में आ सकती है, कहीं भी आ सकती है, लेकिन उस समस्या को किस तरह से लोगों के बीच पेश करना है, कब पेश करना है और कैसे पेश करना है, उन सब बातों को बहुत ही ढंग से, ऐसे ढंग से पेश करना कि कंपनी की इमेज खराब ना हो और कोई खास नुकसान ना हो पाए। इस डिजिटल एज में जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो हर कंपनी के लिए अपने सोशल मीडिया को मैनेज करना, अपने प्रेजेंस को बढ़ाना और अच्छे से उसको पेश करना बहुत ही जरूरी होता है। तो हर एक वर्ड जो बोलते हैं, जो वो लिखते हैं, ट्वीट करते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे या किसी भी सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, तो वो कंपनी की वैल्यूज के साथ बहुत अच्छे से अलाइन होना बहुत ही जरूरी है। इस तरह से जो कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट होते हैं वो एक रिलेशनशिप बनाते हैं जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, यानी कि जिन्होंने पैसा लगाया हुआ होता है, उन्हें सही समय पे सही बात का नॉलेज देना, प्लस जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको सही समय पे सही बात बताना। और इसके लिए अक्सर वो लोग वीडियोस क्रिएट करते हैं, पॉडकास्ट क्रिएट करते हैं, इन्फोग्राफिक्स, सोशल मीडिया का कंटेंट, ये सब चीजें ये लोग करते हैं ताकि उनके एम्प्लॉइज और स्टेक होल्डर्स, इन्वेस्टर्स इनको सही समय पर सही बात समझ में आ सके। अगर एक भी जगह पे कोई चूक हो जाती है, सही समय पर सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो ये कंपनी की ब्रांड इमेज को काफी हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका अमृतपाल जी। बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कम्युनिकेशन एक्सपर्ट का क्या काम होता है, कंपनी को कैसे वो रिप्रेजेंट करते हैं। आइए यहां पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत, उसके बाद फिर बातें करेंगे। सुनते रहो, मुस्कराते रहो। अमृतपाल जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया सोशल मीडिया के बारे में, और सोशल मीडिया कितना स्पीडली काम

करता है, इसके बारे में आपने उदाहरण देके बताया। और साथ ही साथ इससे अगर एक छोटी सी भी बात इधर उधर हो जाती है तो इसमें कंपनी का रेपुटेशन खराब हो जाता है, ये भी आपने बताया। तो इसीलिए सोशल मीडिया हर कोई आज इस्तेमाल कर रहा है, हर कंपनी को इसका नीड हो गया है कि इसको यूज करके अपने कंपनी के ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को अच्छी तरह से लोगों के बीच में पॉपुलर कर सकते। तो आइए आगे बढ़ते हुए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ब्रेक के बाद बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट के बारे में। और अमृता पाल जी, मैं चाहूंगा कि इस कम्युनिकेशन एक्सपर्ट के बारे में या स्पेशलिस्ट के बारे में, ये जो है क्यों जरूरी है, ये रोल किस तरह से काम करता है और लोग इनको क्यों हायर करेंगे, थोड़ा सा इसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताइए, क्यों जरूरी है इसके बारे में बताइए।
1: जी, तो आगे बात करते हैं कि क्यों ये रोल इम्पोर्टेंट है, आज के समय में इसकी इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि आज की डेट में सोशल मीडिया बहुत बहुत एक्सपेंड हो चुका है, और ऐसे समय में अगर कोई कंपनी सोशल मीडिया का फायदा नहीं उठाती है तो काफी हद तक पीछे रह जाती है। ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि कोई भी अगर एम्प्लॉई या स्टेक होल्डर, इन्वेस्टर, अगर किसी वजह से कोई एक छोटी सी बात भी सोशल मीडिया पे डाल देता है जो गलत ढंग से सोशल मीडिया पे सामने आती है, तो कंपनी की रेपुटेशन बहुत बहुत जल्दी खराब होती है, क्योंकि सोशल मीडिया आज की डेट में इतना एक्सपेंड कर चुका है कि अभी हम बात कर रहे हैं और वो खबर एकदम से फैल जाती है पूरे विश्व में। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा भूकंप आया और एक मिनट के अंदर अंदर पूरी दुनिया में वो खबर फैल गई कि फला फला जगह पे भूकंप आया है। इसी तरह से किसी कंपनी के खिलाफ कोई भी बात होती है तो वो बहुत जल्दी फैलती है, क्योंकि आज की डेट में जो न्यूज चैनल्स हैं वो 24 घंटे चलते हैं। पहले होता था कि कम से कम 24 घंटे इंतजार करना पड़ता था जब न्यूज़पेपर्स होते थे तो 24 घंटे बाद खबर पहुंचती थी, लेकिन आज की डेट में 24 सेकंड भी नहीं लगते। और इसलिए कॉरपोरेट्स की या कंपनीज की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है वो बिल्कुल पारदर्शिता से अपनी बातों को सामने रखें, और जितने भी इन्वेस्टर होते हैं वो इस बात की डिमांड करते हैं कि कंपनी को बहुत ही क्लियर ढंग से अपनी बातें बतानी है ताकि वो रिस्पॉन्सिबली अपनी इमेज को बरकरार रख सके, ना सिर्फ बरकरार रख सके बल्कि अपने टारगेट्स भी अचीव कर सके, क्योंकि आज की डेट में एक सेकंड में किसी की भी इज्जत की धज्जियां उड़ जाती हैं अगर गलत शब्दों का इस्तेमाल होता है। और दूसरी बात यह है कि आज की डेट में जैसे हम जानते हैं रिमोट वर्क का काफी चलन है, तो ऐसे में रिमोट वर्क में लोगों को सही समय पे सही बात बताना, और रिमोट वर्क सिर्फ इंडिया में नहीं होगा, रिमोट वर्क तो ग्लोबली होगा, तो ग्लोबल मार्केट को सही ढंग से सही समय पे सही बात बताना ये भी कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ताकि सब लोग एक ही टाइम पे एक ही सोच के साथ आगे बढ़ सके।
0: अमृता पाल जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स की क्यों जरूरत है और किस तरह से ये अपना रोल अदा करके कंपनी को और क्लाइंट को बेनिफिट देते हैं, और बहुत ही अच्छा जो है टू वे कम्युनिकेशन होता है, और कंपनीज में भी इनका क्या रोल है ये भी आपने बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया। जहां पर वर्कर तनाव टेंशन में रहते हैं तो उनकी प्रॉब्लम्स, उनके सिचुएशन को जो है समझकर कंपनी जो जिसके लिए काम कर रही है, कंपनी किस तरह की सोच रखती है वो भी आप जानते हैं, तो कंपनीज की मनोस्थिति को जानकर वर्कर के साथ एक अच्छा जो है ब्रिजिंग का काम कर सकते हैं जिसमें वर्कर्स को भी और कंपनी को भी फायदा हो।

है। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि ऐसे कम्युनिकेशन एक्सपर्ट की, स्पेशलिस्ट की बहुत जरूरत है हर कंपनी में। तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और अब बात करते हैं मेन, जिससे कि कम्युनिकेशन जो एक्सपर्ट होते हैं उनका अर्निंग सोर्स क्या है, अर्निंग पोटेंशियल क्या है, और किस तरह का कंपनी जो है उन्हें पेड करती है, और किस तरह की कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट वालों को गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में काम मिलता है, इसके बारे में हम लोग अभी बातें करेंगे। अमृता पाल जी बताइए, स्वागत है आपका फिर से एक बार।
1: तो चलिए अब हम बात करते हैं इस लाइन में अर्निंग पोटेंशियल की, कि हम इसमें क्या कमाई कर सकते हैं। जो एंट्री लेवल पोजीशंस हैं वहां पे हम स्टार्ट में ही 40 से 45 हजार रुपया महीना कमा सकते हैं, और अगर हम जब आगे पढ़ जाते हैं तो 2 लाख 3 लाख रुपया महीना तक भी हमारी इनकम डायरेक्टर लेवल पे चली जाती है। इस लाइन में बहुत अच्छी ग्रोथ है। 5 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे बहुत अच्छे मैनेजरियल रोल पे और अच्छी कमाई के साथ चल सकते हैं। इसी लाइन में कंसल्टिंग भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन गया है, जहां पे आप अपनी कंपनी खोल सकते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां अपना काम आउटसोर्स कर देती हैं, और वहां पे आप एक एक घंटे का बहुत बहुत पैसा बनाते हैं। वो घंटों के हिसाब से पैसा चार्ज करते हैं। इसमें फ्रीलांस अपॉर्चुनिटीज काफी हैं। इसी फील्ड में इसी के साथ राइटिंग अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, लिखने का काम, क्योंकि जब कोई भी न्यूज मार्केट में जाती है तो उसे पहले लिखना पड़ता है। तो इसका जो अर्निंग पोटेंशियल है वो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मैं कहूं कि बहुत अच्छी कमाई होती है इसमें, आपको सिर्फ मेहनत करनी है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। और ना सिर्फ इंडिया में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट्स में भी इसकी बहुत अच्छी वैल्यू होती है। आगे हम बात करते हैं इसमें कि जॉब अपॉर्चुनिटीज इंडिया में कैसी हैं। अब जितने भी पीएसयू सेक्टर है, जैसे ओएनजीसी, एनटीपीसी, इंडियन ऑयल, ये इस तरह की बड़ी बड़ी जो गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, ये लगातार कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट को हायर करते हैं। इनको ना सिर्फ अच्छे जॉब्स मिलते हैं बल्कि इनकी जॉब सिक्योरिटी भी बहुत होती है, और सेंट्रल लेवल पे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स, मीडिया रिलेशंस, पब्लिक कम्युनिकेशंस, इनकी बहुत वैल्यू है। और इवन इन लोगों को बाहर जाने का भी एक बहुत अच्छा मौका मिलता है, क्योंकि ये मिनिस्ट्रीज में काम करते हैं तो एक्सटर्नल अफेयर्स में भी इनकी बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट होती है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में। और बहुत ही बढ़िया ढंग से, बहुत हाई लेवल पे, बहुत बड़े बड़े लोगों के बीच में इनको काम करने का मौका मिलता है। बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो

0: प्राइवेट सेक्टर में जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, चाहे आप हमारी TCS, विप्रो, सब जगह पे इनकी बहुत ही ज्यादा डिमांड है। और इन लोगों को, इन लोग यहाँ भी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 40 से 80 हजार रुपया महीना हो सकती है, और जब आगे बढ़ते हैं तो फिर कोई लिमिट नहीं होती। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। और जो एजुकेशन लेवल है उसमें भी हम जो बात करते हैं, बेसिक बैचलर्स डिग्री किसी भी फील्ड में करके आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अमृता पाल जी। अर्निंग पोटेंशियल क्या है इसके बारे में आपने बताया, अलग अलग कंपनीज किस तरह से कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट वालों को अपना जो है हायर करती हैं, और कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट जो है प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा कमा सकते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में भी उनका विशेष रोल होता है। ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। तो आइए साथियों, विद्यार्थी मित्रों, आप सभी को अच्छा लग रहा हो तो पॉइंट्स नोट करके रखिए ताकि आने वाले समय में आप इस पर काम कर सकें। और मैं चाहूंगा कि आप ध्यान से सुने और कुछ नहीं समझ में आए तो जरूर सवाल पूछिएगा।

0: नमस्कार प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। कार्यक्रम सुन रहे हैं आप करियर ऑप्शन, और इसमें हम लोग आज बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट के बारे में। जी हाँ, किस तरह से ये कमाते हैं कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट, उसके बारे में जानकारी हासिल हो रही है और कैसे कमाते हैं ये भी आपने सुना। तो इस प्रोफेशन को बनाने के लिए, अच्छा करियर इसमें बनाने के लिए किस तरह का एजुकेशन इसमें रिक्वायर्ड होती है, किस तरह की पढ़ाई करनी पड़ती है और किन बातों को ध्यान में रखना है कम्युनिकेशन एक्सपर्ट बनने के बाद कैसे हम काम कर सकते हैं, थोड़ा सा टिप्स एंड टेक्निक बताइए अमृतपाल जी।
1: अब हम बात करते हैं एजुकेशन की। इस फील्ड में एजुकेशन की क्या रिक्वायरमेंट होती है। इस फील्ड में स्कूल, अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो स्कूल लेवल पे आप किसी भी स्ट्रीम से, चाहे साइंस हो, कॉमर्स हो, चाहे आर्ट्स हो, किसी भी फील्ड से आप आ सकते हैं। आपके सिर्फ एक ही चीज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, वो है लैंग्वेज के ऊपर कमांड और कम्युनिकेशन स्किल्स। ज्यादातर इंग्लिश को माना जाता है कि इंग्लिश में आप बात अच्छे से कर सकते हो और आपका बातचीत करने का ढंग बहुत ही बढ़िया हो। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर सकता। बात कैसे की जाती है इसको सीखा भी जा सकता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।

0: बैचलर्स लेवल पे बैचलर्स डिग्री और इसके साथ काफी सारे करियर्स होते हैं, जैसे आप बीए मास कम्युनिकेशन में कर सकते हैं, जैसे जेवियर्स और सिम्बॉयसिस, ये भी आपको बहुत अच्छा बैकग्राउंड देते हैं। जर्नलिज्म की डिग्री भी आप ले सकते हैं, एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म या IIMC, बहुत अच्छी वैल्यू के ये कॉलेजेस हैं। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन करते हैं तो कंटेंट क्रिएशन में आपकी बहुत अच्छी पकड़ बन सकती है। काफी सारे बीबीए प्रोग्राम्स भी हैं जो कम्युनिकेशन स्पेशलाइजेशन में हैं, और NMIMS ये भी आपको बहुत अच्छी एजुकेशन देते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे अगर आप बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं तो MA इन मास कम्युनिकेशन या MBA इन कम्युनिकेशन, ये भी बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं। काफी सारे पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज भी हैं जो कॉरपोरेट कम्युनिकेशन में आपको शिक्षा देते हैं, जो कि इंडस्ट्री फोकस्ड डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट और गूगल और हबस्पॉट, ये सब भी आपके पोर्टफोलियो में बहुत अच्छी वैल्यू डालते हैं। अब कुछ चीजें जो खासतौर पे इसमें ध्यान रखने वाली हैं कि आपकी लिखने की और बोलने की ये दोनों ही एबिलिटीज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। इसमें आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए और अच्छे से रिटन और स्पोकन दोनों ही स्किल्स को अच्छे से हाईलाइट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग लिंक्डइन पर और ट्विटर पर होते हैं और ये जितने भी लोग होते हैं ये बहुत अच्छे से अच्छा लिखा हुआ और अच्छा बोला हुआ सुनना चाहते हैं। इस फील्ड में नेटवर्किंग भी बहुत क्रूशियल पॉइंट है। आप ऐसे अच्छे अच्छे ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं जो पब्लिक रिलेशन सोसाइटी, जैसे पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया है, जहां पे आपको अच्छे से इस लाइन के लिए नॉलेज मिलती है। और अगर आप मल्टीपल लैंग्वेजेस में स्पेशलाइजेशन करते हैं तो ये और भी अच्छी बात है, क्योंकि इसमें आप फॉरेन अफेयर्स में भी जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें एक और भी है जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, कि आपकी क्राइसिस मैनेजमेंट स्किल्स बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। जैसे मैगी का एक समय पे आ गया था कि मैगी का के अगेंस्ट हो गए थे सोशल मीडिया, लेकिन 2015 में फिर से वो वापस आए। उन्होंने किस तरह से अपने आप को इंडियन कल्चर के हिसाब से और ग्लोबल कल्चर के हिसाब से अपने आप को एस्टैब्लिश किया, ये भी एक बहुत ही सुंदर केस स्टडी है जिसको आप समझ सकते हैं। इस फील्ड में जो फाइनल बात आती है वो है कि आपको रुकना नहीं है, हमेशा एक सीखने का एटीट्यूड जिंदगी भर अगर बनाए रखते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए।
1: चलिए मित्रों, आज हमने अमृतपाल जी से बहुत ही अच्छी बातें सुना कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट के बारे में, कम्युनिकेशन स्किल के बारे में, और सोशल मीडिया किस तरह से कम्युनिकेशन करके बिजनेस को और अच्छा एनहांस करता है ये भी हमने देखा। तो साथियों, कोई भी करियर स्किल हो वो हमारे जीवन को, हमारे लाइफ को एनहांस करता है, बस हमें उसमें एक्सपर्ट बनना है। और बहुत सारे टिप्स एंड टेक्निक्स जो बताई हैं अमृतपाल जी ने, तो उन बातों को एक बार रिवाइव करें, अपने मन से अपने आप को तैयार कर लें, अपने आप को एक अच्छा करियर बनाने के लिए किसी भी फील्ड में। आज हमने कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट के बारे में बातें की, और भी आपको जो भी करियर अच्छा लगता हो, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, बिल्कुल जाइए, लेकिन आपका कम्युनिकेशन स्किल तो हर जगह काम आएगा ही, है ना। तो आज का ये एपिसोड आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया जो है हर फील्ड में काम आने वाला था, और इसमें अगर आप एक्सपर्ट बनते हैं तो इसमें भी अच्छे से आप कमा सकते हैं। तो आप कमाएं और अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से जिए, अपने माता पिता भाई बहनों का ख्याल रखें, और समाज के अंदर भी कुछ ऐसा, समाज के लिए भी कुछ अपना समय दें और समाज में भी अपना नाम करें। ऐसी शुभ आशा के साथ फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, एक नए एपिसोड, एक नए करियर के बारे में बातचीत करेंगे आपके साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अहो ऐकलत का? हो आमचा रेडिओ पुणेरी, हो आमचा रेडिओ पुणेरी।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: स्वागत है ज्ञान चिंतन में। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान चिंतन, जहां हम विचारों की गहराइयों में उतरते हैं, ज्ञान के नए आयाम खोजते हैं और जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर मनन करते हैं। इस कार्यक्रम में हम दर्शन, संस्कृति, विज्ञान, समाज और आध्यात्मिकता से जुड़े विषयों पर गहन चर्चा करते हैं। हमारा उद्देश्य है आपके मन में नए विचारों का संचार करना और आपको चिंतन की एक नई दिशा देना। तो आइए ज्ञान की इस रोशनी में आगे बढ़ें और नए दृष्टिकोणों को समझें। ज्ञान चिंतन, एक नई सोच, एक नई दिशा।
3: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। मैं नीतू जैन हमेशा की तरह आज फिर एक नए टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसका नाम है स्नेह और मोह, इनमें क्या अंतर है। मैं इस पर अपना चिंतन शेयर करूँगी। दोस्तों, ये स्नेह और मोह क्या एक हैं या इनमें कोई अंतर है, चलिए इस विषय को जानने की कोशिश करते हैं। स्नेह माना अफेक्शन, स्नेह निस्वार्थ होता है, इसमें व्यक्ति की भलाई की कामना होती है बिना किसी स्वार्थ या प्रतिबंध के। स्नेह स्थायी और शुभ भावना वाला होता है, जिसमें व्यक्ति को पूरी स्वतंत्र

0: सफलता मिलती है। माता पिता का अपने बच्चों के प्रति स्नेह, गुरु का शिष्य के प्रति स्नेह या सच्चे मित्र का दूसरे मित्र के प्रति स्नेह, ये सारे उदाहरण स्नेह के हैं। मोह माना अटैचमेंट और ऑब्सेशन। मोह स्वार्थ से जुड़ा होता है। इसमें व्यक्ति किसी के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाता है और उसे अपने अधिकार में रखना चाहता है। मोह अस्थायी होता है और जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो दुख, क्रोध या पीड़ा उत्पन्न होती है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति से अत्यधिक जुड़ाव होना मोह का उदाहरण है। जैसे माता पिता का अपने बच्चे को उसकी इच्छाओं के विरुद्ध रोकना या किसी व्यक्ति का प्रेम में अंधा होकर सही गलत भूल जाना, ये मोह की कुछ परिभाषाएं हैं। आज इस चिंतन के बाद ये निष्कर्ष निकलता है कि स्नेह प्रेम का शुद्ध रूप है, जबकि मोह एक मानसिक बंधन है। यदि हम जीवन में स्नेह को अपनाएं और मोह से बचें, तो हमारा जीवन अधिक शांतिपूर्ण और सुखद हो सकता है। तो दोस्तों, आज के चिंतन में बस इतना ही। हम फिर मिलते हैं एक नए चिंतन के साथ। बने रहे हमारे साथ पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। धन्यवाद।
1: ज्ञान चिंतन के आज के एपिसोड में बस इतना ही। प्रिय श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि आज का विषय आपके मन मस्तिष्क में नए विचारों का संचार करने में सफल रहा होगा। ज्ञान और चिंतन की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अगले कार्यक्रम में हम एक और रोचक विषय के साथ लौटेंगे। तब तक अपने विचारों को निखारते रहें और ज्ञान की इस यात्रा को आगे बढ़ाते रहें। फिर मिलेंगे ज्ञान चिंतन में एक नई सोच, एक नई दिशा के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।
2: नमस्कार, मी मनाली सवागत। तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा, ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था। तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा? इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे? किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है? हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहां और ठीक करने की उंगली भी यहां। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं, उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शरुण सरसु, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। वेलकम सिस्टर।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन।
2: थैंक यू
1: सिस्टर। आप लास्ट टाइम बात कर रहे थे अबाउट रिजेक्टेड फील करता है बच्चा, और जब बच्चा गर्भ में होता है पेरेंट्स का कैसा असर होता है। तो मैं अभी कुछ इंटरनेट देख रहा था, उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट छोटा सा आर्टिकल है।
2: श्योर।
1: थोड़े वर्ड्स इसके डिफिकल्ट हैं लेकिन मेडिकल टर्म्स हैं, फिर भी मैं पढ़ूंगा। इट सेज इम्पैक्ट ऑफ मटर्नल स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी ऑन फीटल न्यूरो बिहेवियरल डेवलपमेंट। इट सेज रिपोर्ट्स शो दैट एलिवेटेड लेवल्स ऑफ एंटीनेटल डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी आर एसोसिएटेड विद poor emotional adjustment in young children. The impact of women's anxiety or depression during pregnancy has been found to extend into childhood and adolescence.
2: Right.
1: As well as to affect the hypothalamic, pituitary, adrenal axis, short form में HPA, predicting attention deficit hyperactivity disorder, short form में ADHD, disorder symptoms in 8 to 9 years old children.
2: Such a powerful message. Maternal stress, anxiety, depression. मतलब जब आत्मा माँ के गर्भ में है, अगर माँ एंड इवन टू अ सर्टेन एक्सटेंट द फादर, लेकिन मदर ऑफ कोर्स डायरेक्टली,
1: फादर जो है मदर को कुछ भी बोले आगे

0: करेगा मेरी मदर को, इतना डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। तो उस समय ध्यान अगर हमने नहीं रखा, हमने जो रिकॉर्डिंग क्रिएट कर दी अपनी वाइब्रेशन भेजकर उस आत्मा पर, वो उस आत्मा की रिकॉर्डिंग बन जाती है और उसको पूरा जीवन और अनेक जीवन उस रिकॉर्डिंग के साथ चलना पड़ता है। अनलेस दे चेंज द रिकॉर्डिंग, दे हैव टू वर्क ऑन देमसेल्व्स। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर कि आत्मा शरीर के अंदर जब गर्भ में है, कैचिंग पावर हाईएस्ट है, पेरेंट्स को सोचकर सोचना है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, किसी चीज में नहीं अटकना, किसी से नहीं उलझना, कोई दर्द नहीं, कोई छोटी छोटी बातों में आकर तेरा मेरा इसमें नहीं जाना, अंदर बैठकर कोई सुन रहा है। अगर मदर बहुत जल्दी जल्दी ऐसे हो जाती है, सेंसिटिव है, छोटी छोटी बातों में डरती है, बच्चा भी वैसा हो जाता है। तो कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। एक्चुअली अ पेरेंट हैज द पावर टू इन्फ्लुएंस द डेस्टिनी ऑफ द चाइल्ड एट दैट टाइम। आज पेरेंट्स ये तो ध्यान रख रहे हैं कि कौन से महीने में बच्चा पैदा हो रहा है, कौन सी डेट पर है, वो मुहूर्त टाइम कितना है। पंडित जी ने कहा है अगर ये टाइम पे पैदा होगा तो बेस्ट है, उस हिसाब से कभी कभी बहुत सारी चीजें भी ऑल्टर कराने लग जाते हैं। डेस्टिनी ऑफ द चाइल्ड उसकी सोच, संस्कार और कर्म में है, और पेरेंट के पास पावर है उस संस्कारों को इन्फ्लुएंस करने की। जहां पावर है वहां यूज करनी चाहिए। हम और ही चीजों में, हम सब एक्सटर्नल चीजों में जाते हैं। ना लुक एट द सीडी, बच्चा है, एक सेट ऑफ संस्कार आत्मा पिछले जन्म से लेकर आई है, एंड ये काफी पावरफुल सेट ऑफ संस्कार से, क्योंकि ये सिर्फ पिछले जन्म के नहीं लेकिन अनेक अनेक अनेक जो जो जो जो सब रिकॉर्डिंग है वो उसके पास है। तो वन इज पास्ट बर्थ संस्कार, सेकेंड फैमिली पेरेंट्स से मिले संस्कार, वो सारी रिकॉर्डिंग है उसके ऊपर। तो ये दो सेट ऑफ संस्कार अगर हमें ध्यान रहे तो हमें बच्चों के साथ वर्क करना बहुत इजी हो जाएगा। हमें अपने बच्चे के अंदर कुछ ऐसे संस्कार दिखाई देंगे जो हमें लगेगा ये ऐसा क्यों है, ये ऐसे क्यों कर रहा है, ये इसने कहां से सीखा, ये ऐसे करेगा तो कैसे होगा आगे। तो कभी कभी हम उनके संस्कार को देखकर फियर क्रिएट कर देते हैं, एंग्जाइटी भी क्रिएट कर देते हैं, कभी कभी उसके लिए हम उनको क्रिटिसाइज भी कर देते हैं, कभी कभी हम उनको दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर भी कर देते हैं। उसको देखो वो तो ऐसा नहीं है, तुम ऐसे क्यों हो। ये सारी एनर्जी उस आत्मा के लिए डिप्लीटिंग है। इंडिविजुअल को देखना है ये आत्मा, एंड हमेशा एक बच्चे को देखकर ये कॉन्शियसनेस क्लियर, ये आत्मा पीछे से कुछ अनुभव करके यहां आई है। जो इसके संस्कार हैं अभी ब्यूटिफुल संस्कार, कुछ एक अगर हमें लगे भी कि कंफर्टेबल नहीं है, ये सब संस्कार किसी न किसी कारणवश क्रिएट हुए हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट याद रखना, ग्रूव नया बन सकता है।
1: मेरा जो ग्रैंड चाइल्ड है, मेरी बेटी का बेटा, अभी बोलना ही सीखा है, तो उसकी मदर ने शायद, मेरी डॉटर ने कुछ बोल दिया, डांट टूट दिया होगा, आके बोलता है नाना जी मुझे चोट लगी है।
0: हाँ।
1: मतलब किधर, इधर नहीं, इनसाइड,
0: इनसाइड, यस।
1: उसको ये शब्द कहाँ से आया कि मुझे अंदर चोट लगी,
0: अंदर चोट लगी है। ये भी लेकिन पॉसिबल है कि मदर भी सेंसिटिव है।
1: डेढ़ दो साल वाले बच्चे अंदर की चोट की बात कैसे,
0: एवरी चाइल्ड विल नॉट बी द सेम ना। कोई बच्चे मिलेंगे बहुत चंचल है, मस्ती वाले हैं, खेलते कूदते हैं,
1: है।
0: कोई बच्चे बहुत प्रोफाउंड बातें करते हैं।
1: हाँ, ये प्रोफाउंड भी करते हैं, मस्ती भी।
0: हाँ, बहुत प्रोफाउंड, ऐसा लगेगा नहीं कि ये दो तीन साल का बच्चा है, वो एकदम प्रोफाउंड बातें करेंगे। दी अदर डे आई मेट अ लिटिल गर्ल, चार या पांच साल की होगी, तो शी सेड आपको पता है, सेड क्या, गॉड मेरे से बातें करता है। आई सेड रियली, शी सेड हाँ, ऐसे कैसे बातें करता है, जैसे बातें करता है, वो भी मेरे से बात करता है, मैं भी उससे बात करती हूँ। तो मैंने उनके पेरेंट्स से पूछा कि कभी सिखाया ऐसे क्या आपने कि भगवान से बातें करनी है। कहता हमारे घर में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, यही गॉड से बातें कर रही थी, बाकी हमारे घर में कोई नहीं कर रहा ये कुछ भी। सो बच्चा लेकर आया है वो संस्कार।
1: मेरे बेटे का बेटा, हम लोग सब वेजिटेरियन थे, तो बाद में इन लोग नॉन वेज बन गए थे, तो बच्चे को जबरदस्त की छुपा के चावल में मिला मिला के नॉनवेज उसकी मेड खिलाती थी।
0: हाँ।
1: फिर एग्स भी,

0: तो उसने कई बार बोला नो आई डोंट लाइक नहीं चाहिए। जैसे अब थोड़ा सा बड़ा हुआ अब वो अब डालू तो थूक देता है और अभी वो प्योर वेजिटेरियन बना हुआ है, बोलता नो आई डोंट वॉन्ट इट। अब बात करने लग गए तो मुझे नहीं चाहिए, एग भी नहीं खाता है।
1: ये संस्कार उसका पास्ट का कैरी फॉरवर्ड है।
0: अच्छा,
1: अभी का नहीं है क्योंकि इतना स्ट्रांग है, क्योंकि वो अगर वो संस्कार उस बच्चे का अभी का बना होता है ना, ये एक दो साल का, वो बहुत सॉफ्ट ग्रूव होता है। इसीलिए कहते छोटे बच्चे को कैसे भी मोल्ड करना चाहो तो मोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि दे आर इन दैट स्टेज।
0: ये नॉन वेजिटेरियन का मोल्ड नहीं हो रहा है।
1: ये मोल्ड क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो ये एक दो साल का संस्कार नहीं है,
0: जन्मों का,
1: वो बहुत स्ट्रांग। अब आप सी दैट्स व्हाई वी हैव टू विजुअलाइज, इमेजिन करें कि वो आत्मा अपने पहले शरीर में स्ट्रांग वेजिटेरियन, जैसे हम देखते हैं कि सपोज जैन कम्युनिटी के कोई थे, स्ट्रांग, टच भी नहीं करेंगे, देखेंगे भी नहीं, नजदीक भी नहीं जाएंगे। कोई संत महात्मा आत्मा अगर वो है जिसने कभी ऐसी चीज को सूंघा भी ना हो और जिसका बिलीफ सिस्टम उस चीज के प्रति बहुत स्ट्रांग हो कि ये चीज नहीं, मतलब नहीं, ये पाप है, यू नो, उतना स्ट्रांग अगर बिलीफ सिस्टम है किसी आत्मा का, इतने साल वो आत्मा उस बिलीफ सिस्टम के साथ जी तो उसका वो लूप ऑटोमेटिक में है, वो ब्रेन वैसी वाली वायरिंग है।
0: आत्मा के रिकॉर्ड गाय का दूध दे दो।
1: यस, अब ये आत्मा ने शरीर छोड़ा, नया शरीर लिया। अब इस बच्चे के केस में अगर हम देखें कि जब ये माँ के गर्भ में था तब इसको नॉन वेजिटेरियन का मिला है वाइब्रेशन, क्योंकि मदर इज हैविंग, लेकिन फिर भी वो प्रभाव उसके वो वाले संस्कार को चेंज नहीं कर पाया, क्योंकि पास्ट का संस्कार बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। यू नो दैट्स व्हाई अ सोल इज अ बंडल ऑफ ऑल दीज संस्कार।
0: फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया,
1: फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है, पास्ट संस्कार बहुत स्ट्रांग है। अब उसको गर्भ में नॉनवेज का मिला भी, टेस्ट भी मिला, वाइब्रेशन भी मिली, लेकिन फिर भी
0: जब वो बोल नहीं पाता था तब वो खाया भी। हाँ। जब ठोस ठोस के उसको उनमें अंडा डाल देते थे, जो भी डाल देते थे वो खा लेता था उस टाइम।
1: राइट,
0: जैसे जैसे उसको बड़ा होने लगा है थूकने लगा,
1: नहीं खाना है। अब देखो पास्ट बर्थ का संस्कार वेजिटेरियन, गर्भ में मिला नॉन वेज, तीसरा वातावरण आसपास पेरेंट्स अभी नॉन वेज खिला रहे हैं लेकिन पास्ट बर्थ का संस्कार बहुत डोमिनेंट है।
0: देखो
1: कितना इजी है संस्कार।
0: आप जो ग्रूव की बात कर रही थी,
1: yes.
0: कितना ये सामने एग्जांपल है,
1: कितना स्ट्रांग ग्रूव है। अब आगे इस बच्चे की जर्नी को देखना है कि क्या ये आत्मा अपने उस पास्ट संस्कार को पकड़ कर रखती है या क्या ये चलते चलते परिस्थितियों में, पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस से, फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस से उस एक नए ग्रूव को बनाती है। बोथ इज पॉसिबल, बोथ इज पॉसिबल। दिस इज द जर्नी ऑफ द सोल। संस्कार लेकर आए, पेरेंट्स से कुछ संस्कार बने, एंड दैट इज द फर्स्ट सेट ऑफ बंडल दैट वी हैव। इम्पोर्टेंट इज के पेरेंट्स को रियलाइज और अंडरस्टैंड करना है कि ये बच्चा आत्मा है जो संस्कार लेकर आया है, उसकी छोटी छोटी चीजों पे क्वेश्चन मार्क नहीं उठाना। बच्चे को रिजेक्शन मिलता है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों करता है। बच्चों को इस एज में तो अपने पास्ट बर्थ की बातें भी याद होती हैं, सिर्फ वो एज होती है जहां वो उसको बहुत ज्यादा बोल नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आज इतनी स्टडीज हैं, इतने रिसर्च पेपर्स हैं जहां बच्चों ने अपने पास्ट की सारी बातें बताई हैं, पेरेंट्स उनके कौन थे, फैमिली कौन थी, घर कौन सा था, जाके उनको आइडेंटिफाई भी किया है, उन लोगों को भी पहचाना है, बताया भी है मैं इधर ये वाली चीज रख के गई थी। यू नो जैसे कई बार लेडीज घर में कुछ पैसे छुपा देती हैं, ज्वेलरी छुपाती हैं ताकि आने वाले समय में यूज होगा, और फिर अचानक शरीर छोड़ दिया, जाकर वो दिखाते हैं यहां रखा था, खोलो इसको, इसमें से निकलेगा, इतना स्ट्रांग है। तो ये सब देखने के बाद इट शुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड कि ड्रेस ही तो बदली, सिर्फ ड्रेस ही बदलती है, कुछ और नहीं बदलता। तो हम जब सोल उसको देखेंगे, आत्मा, हम उसके किसी भी संस्कार पर क्वेश्चन मार्क नहीं उठाएंगे। एक बहन हमारे पास सेंटर पर आई कुछ दिन पहले, कहती मेरे 4 साल का बच्चा है, सब कुछ बहुत अच्छा है।

0: पर हम उसको एक नया ग्रूव क्रिएट करने में मदद करेंगे, लेकिन पुराने ग्रूव को क्वेश्चन नहीं करेंगे, पुराने संस्कार के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन धीरे धीरे उसके सामने एक जना सिर्फ ताली बजाएगा, थोड़ी सी बजाएगा, जोर से नहीं होगा, ज्यादा लोग नहीं करें।
1: अब पहले से कम हो गया, वैसे
0: कम हो गया ना, ये होगा ही, ये कम होना ही है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है बच्चा, इट्स लाइक मेमोरी नो, आपको कल की बात कितनी याद है और 5 साल पहले की बात कितनी याद है, फर्क होगा। प्रकृति का नियम है, आत्मा नया शरीर लेती है, जैसे जैसे वो नया शरीर बड़ा हो रहा है, आत्मा बोलने की स्थिति में आती है, तब तक वो अपना पास्ट की बातें भूलती जाती है। ये प्रकृति का नियम है, क्योंकि पास्ट की बातें याद रखना इज नॉट अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस, वो हमारे प्रेजेंट के साथ क्लैश करेगा, हम पास्ट में भी जाएंगे, प्रेजेंट में भी आएंगे, तो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। इम्पोर्टेंट इज कि पेरेंट्स को, फैमिली को ये अंडरस्टैंड करना और उस आत्मा के हर संस्कार को एक्सेप्ट करना और साथ साथ उसको एक नया संस्कार क्रिएट करने में मदद करना। आज के समाज को देखें, कहाँ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कहाँ नेचुरल कैलामिटी हो रही है, कहाँ किसी को कैंसर है, किसी को डिप्रेशन है, ये आज का समाज है। ये ही आत्माएं तो शरीर छोड़ेंगी और हमारे घर बच्चा बनकर आएंगी ना।
1: सही बात।
0: तो वो कुछ ना कुछ ट्रॉमा हो सकता है ना, देख कर आई है, तो उसको वो ट्रॉमा के दर्द से बाहर निकलने में मदद करना ये प्रेजेंट फैमिली की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन वो तब कर पाएंगे जब उनको याद होगा आत्मा है। अगर वो कहेंगे मेरा बच्चा है, तो मेरा बच्चा ऐसा क्यों है,
1: थप्पड़ मार के पुल पे पानी में फेंक दिया,
0: वेरी डिस्टर्ब्ड, शी थॉट इट्स वेरी अननेचुरल कि वो कैसे ऐसे। एंड देन यू नो हाउ पेरेंट्स विजुअलाइज कि ये मेरा करियर है तो मेरा बच्चा भी यही बनेगा। अब बच्चा तो अपने संस्कार और अपना भाग्य लेकर आया है, लेकिन हम कहते हैं वो यही बनेगा, वो यही करेगा, तो ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत कंफ्यूजिंग और कॉन्फ्लिक्टिंग होती है। हमें उस दिन का वो आर्टिकल याद रखना है, कितना भी वो संस्कार लूप में है, वी हैव द पावर
1: टू
0: स्टॉप इट एंड स्टार्ट अ न्यू ग्रूव। टू स्टार्ट अ न्यू ग्रूव, डू नॉट फोकस ऑन द ओल्ड वन, पुराने संस्कार पे नहीं फोकस करना, ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों, सिर्फ प्यार और अटेंशन नया। आज ऐसा करें, आज पानी के थोड़ा नजदीक जाएं, आज सिर्फ टच करके देखें, आज सिर्फ पैर डालें अंदर कैसा लग रहा है, वेरी स्लोली, दैट टू वेरी स्लोली। ऐसा नहीं एक दिन टच किया, दूसरे दिन पैर डाला, 5 दिन में हो जाएगा, नहीं। ट्रॉमा खत्म करना है, दर्द खत्म करना है उसका एक्सपीरियंस। सो धीरे धीरे धीरे हम एक नया पैटर्न क्रिएट करने में आत्मा को मदद करते हैं। इसीलिए प्रेजेंट जीवन में कितना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो ट्रॉमाज होंगे, अगर उसका दर्द यहां पकड़ लिया, अनरिजॉल्व्ड इश्यूज, कॉन्फ्लिक्ट्स इन रिलेशनशिप्स, दर्द, हर्ट, रिजेंटमेंट पकड़ ली, शरीर छोड़ेंगे, बच्चा वो कैरी फॉरवर्ड करेगा, बच्चे को भी नहीं पता होगा क्यों मुझे दर्द होता है इतना, पेरेंट्स को भी नहीं पता चलता क्यों दर्द होता है इतना। यही आत्मा पिछले कॉस्ट्यूम में इसको बहुत इजीली रिजॉल्व करके आ सकती थी। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक एक रिकॉर्डिंग पर अटेंशन अटेंशन ध्यान रखें, हर थॉट, हर वर्ड, हर एक्शन रिकॉर्ड हो रहा है। तो 2 सेट ऑफ संस्कार ये हुए, पास्ट लाइफ संस्कार वेरी वेरी पावरफुल, सेकंड पेरेंट्स और फैमिली से मिले हुए संस्कार एक्सट्रीमली पावरफुल इन्फ्लुएंस।
1: थैंक यू सो मच सिस्टर।
0: ओम शांति।
1: ओम शांति। थैंक यू।
2: व्हेन द सोल इज इन द वूम्ब ऑफ द मदर, इफ द मदर हैज फ्रीक्वेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन, then these negative emotions have a deep impact on the emotional strength and the mental health of the child. While the soul is in the womb, parents have the power to influence the sanskars and thereby the destiny of the child. Parents need to protect themselves from getting into conflict, put aside the egos, forgive and forget, so that they radiate only vibrations.

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसे सरकार ने नियम बनाया कि टीचर्स स्टूडेंट्स पर हाथ नहीं उठा सकते, पहले उठा देते थे ऐसे ही, थोड़ा सा रूलर मारा, किसी ने चौक मारा, किसी ने थोड़ा, फिर लॉ बन गया कि नॉट अलाउड, उस दिन के बाद बंद हो गया। तो हम लॉ सरकार क्यों बनाए, हम अपने लिए खुद के लिए लॉ बनाएंगे ना, कि मेरे लिए और जो मेरा एनवायरमेंट है वहां पे ये चीज कितनी हानिकारक है। हम एक दर्द का एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां हीलिंग होनी चाहिए। और फिर जब एक ने दूसरे को डांटा, दूसरे ने तीसरे को डांटा, तीसरे ने चौथे को डांटा, तो फिर पांचवे ने तो इरिटेट होकर बात कर ही लेनी है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

ऐसी लंदन घुमाऊ, तुझे ब्रांडी पिलाऊ, विस्की पिलाऊ और खिलाऊ खिलाऊ मुर्गी के अंडे अंडे।

पुनेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ सभी हेल्दी वेल्दी होंगे और प्रसन्न भी होंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं, आज जैसा कि पूरे विश्व में हम देखते हैं कि क्रोध बच्चे हो या बूढ़े, सभी में एक ज्वाला की तरह प्रकट हो रही है। और ये क्रोध अग्नि इतनी भयावह, इतनी बड़ी रूप ले ली है कि आज पूरे विश्व पर क्रोध छाया हुआ है, जिसपे हमें बड़ी गंभीरता से बहुत सोच विचार करनी है और इससे बचाव के लिए भी इसके उपाय जानना बहुत जरूरी है। तो क्रोध अग्नि से इससे हमारी कैसे बचाओ, तो आज हम इसी पे चर्चा करते हैं। आज का हमारा विषय है क्रोध अग्नि से बचाओ। एक बार की बात है कि एक महिला अपने बच्चे को पढ़ाई करा रही थी, साथ में सब्जी भी काट रही थी। बच्चा पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दे रहा था और कोशिश भी नहीं कर रहा था। इस बात पर माँ को बहुत गुस्सा आया, उसे गुस्सा भी आ रहा था, उस पर चिल्ला रही थी। बच्चा फिर भी समझ नहीं रहा था। बच्चे की इस हरकत से माता का क्रोध इतना बढ़ गया कि उसने हाथ के चाकू से बच्चे को मारा और बच्चे की उसी समय मृत्यु हो गई। बच्चे को मारा और उससे उसकी मृत्यु हो गई। और वो बच्चे को मरा हुआ देखकर माँ के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। पश्चाताप की आग में वह जलने लगी, तड़पने लगी। लेकिन अब क्या हो सकता था? क्रोध का एक ऐसा क्षण जिसने पल भर में सब कुछ खत्म कर दिया। माँ जो ममता की मूरत होती है, क्रोधवश हत्यारण बन गई। वह भी अपने ही बच्चे की क्रोध की अग्नि में उसका संसार ही उसने जला डाला। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये सच बातें कई शहरों की जेलों में हमारा कई बार जाना होता है, वहां की महिलाओं से मिलना होता है। उनसे बातें करते करते ऐसी बातें पता चलती है कि सुनकर हैरान हो जाती है। एक जेल में बहुत सारी महिलाओं में एक ऐसी कम उम्र की महिला थी जो बहुत सभ्य लगती थी, ज्यादा बात नहीं करती थी। हमने अन्य एक महिला से उसके बारे में जानना चाहा तो पता ही चला

के बारे में कि उसने अपने ही बच्चे को मार डाला है, इसलिए उसे सजा हो गई है। यह सुनकर हम सन्न रह गए। हमें यह भी बताया गया कि ऐसी 3 महिलाएं यहाँ हैं जिन्होंने अपने ही बच्चों को मारा है और सजाएं काट रही है। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली बातें थी, पर सच भी थी। आजकल जो सुनते हैं, देखते हैं कि किसी ने किसी को मारा, झगड़ा हुआ, आत्महत्या कर ली, ये सब कुछ क्रोध के कारण ही हो रहा है। तो क्रोध के ऊपर हमारा नियंत्रण क्यों नहीं है, इस पे हम आगे की चर्चा जारी रखते हुए हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ। और तब तक के लिए ये सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका फिर से स्वागत करती हूँ और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हुए चलते हैं। आज का हमारा विषय है क्रोधाग्नि से बचाओ। जैसा कि हम देखते हैं आज समाज में क्रोध एक बहुत बड़ा रूप ले लिया है और ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे समाज के लिए। देखते हैं गुस्से के साथ ही क्या है, वो ईर्ष्या है, स्वार्थ है, लोभ है और दुष्टता है। क्रोधाग्नि मनुष्य को जो है बाहर से और भीतर से जला रही है। पांच विकारों का तहलका मचा हुआ है, इसमें है काम क्रोध लोभ और अहंकार। ये पांच तहलके की तरह मनुष्य के भीतर कार्य कर रही है, तहलका मचा रहा है। जब मनुष्य क्रोध करता है तो मति भ्रष्ट हो जाती है, उससे अच्छे बुरे की पहचान नहीं रहती, निर्णय गलत हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि क्रोध ने अंधा बना दिया है या पागल बना दिया है, अर्थात क्रोधी मनुष्य अंधा बन जाता है। उसे अपना पराया सही गलत कुछ दिखाई नहीं देता, उसकी हालत पागलों जैसी हो जाती है। वह खुद को भी नुकसान करता है और दूसरों को भी दुख देता रहता है। गुस्से के साथ ईर्ष्या, स्वार्थ, लोभ, दुष्टता सब कुछ आ जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि मनुष्य का स्वयं पर भी संयम नहीं है। गुस्सा करने से आंतरिक खुशी चली जाती है, चेहरे का रूप बदलकर चेहरा विकृत दिखने लगता है। क्रोध के प्रकंपन पूरे शरीर को हिला देते हैं, तन मन थरथराने लगते हैं, मन में भय, अशांति तथा असुरक्षा निर्माण होती है, आत्मविश्वास कम हो जाता है तथा एकाग्रता भंग होती है। सब कुछ जानते हुए भी आज मनुष्य का स्वयं पर वश नहीं है, अपना नुकसान तथा नाश दिखाई देने पर भी मनुष्य स्वयं पर संयम नहीं रख पा रहा है। यही जीवन का कटु सत्य है। तो आज पूरे समाज में आज क्रोध एक ज्वाला की तरह प्रकट हो चुका है। तो हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हुए देते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर से आपसे आकर मिलती हूँ। और तब तक के लिए आइए सुनते हैं।

नमस्कार दोस्तों, तो ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ और हम अपनी आगे की चर्चा जारी रखते हुए चलते हैं। आज का हमारा विषय है क्रोधाग्नि से बचाओ। जैसा कि हम देखते हैं कि आज समाज में क्रोध एक ज्वाला की तरह प्रकट हो चुका है और इससे बचाव के लिए सभी कुछ न कुछ उपाय करते रहते हैं, लेकिन यहाँ समझना ये है कि ऐसी कोई बात नहीं है जिसका उपाय न हो। कुछ लोग गुस्से को जबरदस्ती रोकने का भी प्रयत्न करते हैं, परंतु फिर भी किसी न किसी रूप में गुस्सा अपना सिर ऊपर करता ही रहता है। कुछ लोग गुस्से को रोकने के लिए 1 से 10 तक गिनती करते हैं, कुछ मुंह बंद करके चुप रहते हैं, कई किसी न किसी से किनारा कर लेते हैं और थोड़े समय के लिए उन्हें इससे सफलता मिलती है, लेकिन फिर वही स्थिति हो जाती है। फिर करें तो क्या करें? अपने को शांत तथा संतुष्ट रखने का उपाय क्या है? दुनिया में ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसका उपाय ना हो। असल की मनुष्य को का जो आलस्य या अज्ञान मनुष्य को समस्या का समाधान ढूंढने नहीं देता। यहाँ पर हम देखते हैं कि राजयोग मेडिटेशन से मन जो है वो शांत हो जाता है। अगर हम क्रोध का समाधान करना चाहते हैं तो हमें शांति का अर्थ समझना होगा। शांति

जो है आंतरिक होती है बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगी। मन को शांत रखने के लिए मेडिटेशन करना होगा। राजयोग मेडिटेशन से मन को शांत किया जा सकता है, साथ ही साथ इससे मनुष्य की संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो जाता है। राजयोग सीखने से मनुष्य की छोटी से छोटी विशेषता निखर कर हीरे की तरह चमकने लगती है। परिवार में अगर कोई एक भी राजयोग सीखता है तो पूरा परिवार सुखी हो जाता है। यह ऐसा योग है जो मनुष्य को राजा की तरह जीना सिखाता है। जीवन जीने की कला इससे सीख लेते हैं और जीवन जीने की कला इसमें समाई हुई है। हर समस्या को पार करने की विधि राजयोग से मिलती है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बहुत सारे सेवा केंद्र भारत के हर गांव शहर में स्थित है, विदेशों में भी है। कोई भी व्यक्ति छोटा बड़ा बूढ़ा सेवा केंद्र में जाकर ज्ञान ले सकता है तथा इसकी विधि को सीख सकता है, अपना जीवन सुंदर बना सकता है। इसमें देर ना करें, राजयोग सीखकर अपना जीवन हीरे तुल्य बनाए। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते भी रहिए। नमस्कार, ओम शांति।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर टुडे।

0: बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माई चेकिंग फॉर टुडे।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट दी अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 crore सेल्स है, जस्ट द ब्रेन, ओके, 10,000 crore सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 crore सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 crore सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 crore सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सिक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितनी आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: बात पुरानी बड़ी सुहानी, मनात खोलवर रुजलेल्या चित्रपट साहित्य संगीत गाणी यांच्या आठवणींचा नॉस्टैल्जिक खजिना।
3: बात पुरानी बड़ी सुहानी
2: फक्त रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM वर, संकल्पना आणि सादर करते श्री धनंजय कुलकर्णी।
4: नमस्कार, रेडिओ पुणेरी आवाज या रेडिओवर आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत, मी धनंजय कुलकर्णी। मित्रांनो, आपण गेले काही दिवस बात पुरानी बड़ी सुहानी या कार्यक्रमात वेगवेगळ्या क्षेत्रातील लोकांची मतं आपण ऐकून घेत आहोत। आता सध्या लॉकडाऊनचा काळ चालू आहे, त्यामुळे सर्वजण घरातच आहेत आणि प्रत्येकजण आपापल्या परीनं या लॉकडाऊन मधून आपलं मन कसं प्रसन्न ठेवायचं याच्यासाठी काही उपक्रम करत असतो।

0: आता हेच गाणं मी गाऊन सादर करतो.
1: हो हो हो.
0: हा.

प्याले भरे हुए मस्ती है जिस प्यार की तुम वो शराब हो।

0: की कसम लाजवाब हो, चौदहवीं का चांद।
1: क्या बात है, क्या बात है, खूब सुंदर। धन्यवाद, धन्यवाद। अपन उद्याला याद कार्यक्रमात पुन्हा भेटणार आहोत।
0: हो, धन्यवाद। जरा नजरों से कह दो जी,

0: नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अनसात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में

0: जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: धरती की पुकार, पात्र परिचय, उन्नति, आदित्य, पंकज, आदित्य प्रकाश, यश, सैंडी, वेदांत, विनोद, अंबर, लेखिका सुधापुरी।
2: आज हम और भी जल्दी आ गए हैं।
3: सुबह सुबह का वातावरण कितना ठंडा और फ्रेश होता है ना?
4: मम्मी कहती है सुबह कितना भी जल्दी उठ जाओ पर दोपहर को बाहर नहीं जाने दूंगी।
5: आज क्या करने का इरादा है सबका, क्या खेले?
3: मैं तो उस पेड़ के नीचे कल सीखा हुआ सूर्य नमस्कार करता हूँ।
4: मैं तो जॉगिंग करूँगा।
5: मैं तो अपने स्कूल में सिखाया हुआ व्यायाम करता हूँ।
6: मैं तो यहाँ बैठकर प्राणायाम करूँगा।
7: ओहो, आज सब बड़े स्वास्थ्यवर्धक मूड में हैं।
5: हाँ ठीक तो है, मैं तो जल्दी सोता हूँ और जल्दी उठता हूँ।
4: मैं भी, बस कल देर हो गई थी, टीवी पर पापा प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहे थे और मुझे भी इंटरेस्ट आ रहा था।
3: कल तो सब तरफ मंगलयान की चर्चा हो रही थी
8: और स्वच्छता अभियान की।
3: क्यों ना हो, हमारे देश के लिए कितने फक्र की बात है।
4: क्या स्वच्छता अभियान या मंगलयान?
5: अरे ये भी कोई पूछने की बात है, मंगलयान और क्या।
6: स्वच्छता तो आम बात है, हम सबको रखनी ही चाहिए।
7: बात तो ठीक ही है, स्वच्छता के लिए अभियान चलाना पड़े, ऐसी नौबत आ गई है।
5: पापा कह रहे थे भारत एशिया का पहला देश है जिसने बहुत कम पैसों में यानी कम खर्चे में मंगल ग्रह तक मंगलयान को भेजा है।
4: वो भी पहले ही शॉट में सफलता, वाह।
3: हाँ हाँ, कहते हैं ऑटो के प्रति किलोमीटर के किराए से कम में मंगलयान ने अपना सफर तय किया है। फक्र की तो बात है,
8: पूरे संसार में नाम हो रहा है।
3: बड़े बड़े उन्नत देश हमें देख कर हैरान हो रहे हैं
4: और लगता है किन्हीं को तो शायद थोड़ी जलन भी।
7: पर
5: क्या दीदी?

0: हम अपने ग्रह तक कब पहुंचेंगे?
1: मतलब
2: हम अपने ग्रह पर ही तो हैं।
3: अपनी धरती पर? हाँ हाँ, अपने प्यारे नीले ग्रह पर।
0: हाँ, पर प्रदूषण फैलाकर हम कितनी तेजी से इसके विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं, कभी सोचा भी है? वो उधर कूड़े के ढेर पर और कूड़ा डालते हुए लोग और वो तालाब उस तरफ पार्क में सरकार ने इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए लगवाया था, पर अब एक गंदा नाला बन गया है।
4: हाँ, ये तो है।
5: अरे ये क्या, मम्मी कहती है हमने अपनी पवित्र नदियों तक नहीं छोड़ा तो और किसी की क्या बात की जाए।
4: मैंने कहीं पढ़ा था जमुना जिसके किनारे विश्व प्रसिद्ध ताज है आज एक गंदा नाला बन गई है।
0: आसपास की सब फैक्ट्री अपना वेस्ट इसमें डालती हैं, वो भी बिना ट्रीट किए।
3: ऐसा लगता है जैसे किसी को कोई फिक्र ही नहीं है।
0: जैसे कि सब कुछ खत्म कर देंगे तो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या रह जाएगा।
2: दीदी, मुझे तो कोई भी देश इसकी फिक्र करता हुआ नहीं लगता।
1: कि वह किसकी मदद प्रगति कर रहा है?
2: बस अपने देश की फिक्र है। जैसे पूरी धरती खत्म हो गई तो ये अकेले रह पाएंगे क्या?
3: इट इज लाइक प्रॉफिट बिफोर पीपल।
4: ठीक कह रहे हो,
0: बल्कि आंकड़े तो यह दिखाते हैं कि जो देश जितने उन्नत हैं, वे उतनी ही तीव्रता से गंद भी फैला रहे हैं धरती पर।
5: पापा कहते हैं चीन को ही देख लो, प्रगति की होड़ में संसार का नंबर वन तो न बन सका पर प्रदूषण फैलाने में जरूर नंबर वन बन गया।
0: तुम्हारा मतलब है वो उन्हें क्या कहते हैं, कार्बन फुटप्रिंट्स?
4: कार्बन फुटप्रिंट्स मतलब?
3: मुझे पता है, मतलब किसी भी जनसंख्या द्वारा वातावरण में फैला हुए कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन गैस।
2: ये कैसे होता है?
0: ये यातायात द्वारा या वनों के नाश द्वारा या अत्यधिक वस्तुओं के उत्पादन द्वारा या सड़क या बिल्डिंगों के निर्माण द्वारा भी हो सकता है।
4: ओहो, यानी मानव की गतिविधियों द्वारा हुआ प्रदूषण।
2: ठीक समझे, और फिर तो यही सिद्ध होता है कि जितनी तरक्की उतने ही कार्बन फुटप्रिंट्स।
3: तो क्या ये हमारा ही देश है जिसने स्वच्छता को राष्ट्रीय स्तर पर लिया है?
0: अरे नहीं, कई देश इसके लिए कार्यरत हैं। जापान में, जर्मनी में और कई देशों में नदियां साफ करने में बहुत मेहनत की जा रही है।
3: हम भी तो अपने देश में बहुत सीरियस हो रहे हैं, इसे लेकर सरकार बहुत काम कर रही है।
6: पर सरकार क्या कर रही है या देश में क्या हो रहा है इस पर बाद में बात करते हैं, हम क्या कर सकते हैं इस पर सोचते हैं।
4: मैं बताऊँ, आज घर जाने से पहले इस पार्क के सारे कागज या रैपर आदि कूड़ेदान में फेंक कर जाएंगे।
3: गुड आइडिया, वैसे भी हम सबसे बाद में ही जाते हैं।
5: कल जब लोग आएंगे तो साफ पार्क देखकर हैरान हो जाएंगे।
2: यहाँ का सफाई कर्मचारी सोचेगा आसमान से कोई फरिश्ते उसकी मदद कर रहे हैं।
0: चलो फिर सोच क्या रहे हो, हो जाओ शुरू। बल्कि मैं तो कहती हूँ सफाई कर्मचारी भैया से ही पूछ लेते हैं आपकी कैसे मदद कर सकते हैं।
6: एक और बात बताऊँ, आज ऐसा करके मतलब पार्क की सफाई करके हम योग, व्यायाम, जोगिंग और ना जाने किन किन स्वास्थ्यवर्धक काम एक साथ कर लेंगे।
4: ऐसा करते हैं, हम दो दो का ग्रुप बना लेते हैं।
3: हाँ, हमसे जो हो सके पहले वो करते हैं, फिर किसी की मदद लेंगे।
2: मुझे पता है उधर एक गड्ढा बनाकर उसे कंपोस्ट पीट भी बनाया जा रहा है।
6: तो ठीक है, सब सूखे पत्ते, फूल, टहनियाँ आदि इसमें डाल देते हैं।
2: ठीक है, झुड़िया मैं बनाता हूँ।
3: नहीं, हम खुद चुन लेंगे मॉनिटर साहब।

गुलामी की जंजीरों को तोड़कर मां भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है। विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ। अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट। एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस। क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: सफर आंतरिक दिव्यता का आह्वान। जानिए कैसे देवी दुर्गा और लक्ष्मी हमारे भीतर की शक्तियों का प्रतीक है, कैसे जागरण, व्रत और दीपक जलाना हमें आत्मा चेतना की ओर ले जाते हैं, और कैसे रास गरबा हमें सिखाते हैं। जीवन में सामंजस्य और सहयोग। नवरात्रि के नौ दिन रोज सुबह 11 बजे जुड़िए आरजे संजय के साथ सिर्फ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। अंतरिक्ष दिव्यता का आह्वान, अंतरिक्ष दिव्यता का आह्वान।
1: स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: विवेकानंद थोड़े दिन बाराह नगर में बिताकर फिर भारत भ्रमण पर निकल पड़े। जाने से पहले वे श्री माँ के पास गए और उनका आशीर्वाद लिया। इस बार स्वामी अखंडानंद उनके साथ भ्रमण पर गए। जी हाँ, ये वही अखंडानंद हैं जिनका पहले नाम गंगाधर था और स्वामी जी उन्हें गैंजेस पुकारते थे। तो ये दोनों सन्यासी इस बार हिमालय भ्रमण पर निकल पड़े और जाते समय गुरु भाइयों से वे कहकर गए कि
1: देखना, इस बार स्पर्श मात्र से लोगों को रूपांतरित कर देने की क्षमता प्राप्त किए बिना नहीं लौटूंगा।
2: पर वे सीधे गंतव्य तक नहीं पहुंच पाए। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उन लोगों ने कुछ दिनों तक भागलपुर में विश्राम किया। दोपहर को वहां पहुंचकर उन लोगों ने कुमार नित्यानंद सिंह नामक एक सज्जन के मकान के समीप गंगा तट पर आश्रय लिया। वे लोग उस समय अन्यान्य साधुओं की भांति फटे पुराने कपड़े पहने हुए दंड कमंडल धारी थे। श्री नित्यानंद सिन्हा ने प्रथम दृष्टि में इन लोगों को साधारण साधु समझने पर भी बाद में समझा कि ये लोग विद्वान और बुद्धिमान हैं। विशेषकर इन लोगों में एक व्यक्ति प्रतिभावान है। वहाँ एक रात बिताने के बाद दूसरे दिन सवेरे वे लोग श्रीयुत मन्मथ चौधरी के घर पर उपस्थित हुए। उन्होंने भी स्वामी जी को नहीं पहचाना था, पर बाद में जब वे उन्हें ठीक तरह से जान सके तो लज्जित हुए। वहाँ क्या क्या घटा था ये उन्हीं की जुबानी जानिए। कहानी लंबी और दिलचस्प है।
3: सन 1990 ईस्वी के अगस्त महीने में एक सुबह सुबह स्वामी विवेकानंद स्वामी अखंडानंद के साथ अप्रत्याशित रूप से मेरे घर आ पहुंचे। उन लोगों को पहले साधारण साधु समझकर मैंने उनकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। हम लोग उस समय दोपहर का भोजन समाप्त कर एक साथ बैठे थे। उन लोगों को अशिक्षित समझकर उनसे बातें करने की भी इच्छा नहीं हो रही थी, बल्कि मैं बौद्ध धर्म संबंधी एक पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद स्वामी जी ने मुझसे पूछा कि मैं कौन सी पुस्तक पढ़ रहा हूं। उत्तर में मैंने पुस्तक का नाम बताया और जिज्ञासा की, क्या आप अंग्रेजी जानते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ थोड़ी बहुत। तदुपरांत मैंने उनके साथ बौद्ध धर्म के संबंध में चर्चा शुरू की और समझ पाया कि वे मेरी अपेक्षा हजार गुना अधिक विद्वान हैं। वे अनेक अंग्रेजी पुस्तकों से उदाहरण देने लगे और दानापुर के श्री मथुरानाथ सिंह और मैं उनकी विद्वता से विस्मित हो मुग्ध चित्त से उनके वाग वैभव का उपभोग करने लगे। एक दिन स्वामी जी ने मुझसे पूछा कि क्या मैं कोई विशेष साधना करता हूं। तब हम लोगों ने बहुत देर तक योग साधना पर बातचीत की। इससे मेरी दृढ़ धारणा हो गई कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि इन्होंने योग के संबंध में जो कुछ कहा वो मैंने स्वामी दयानंद सरस्वती से जैसा सुना था उससे हूबहू मिल गया। तदुपरांत उनके संस्कृत ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए मेरे पास उपनिषद की जितनी पुस्तकें थी उन्हें ले आया। इनमें से चुन चुनकर उनके कठिन स्थलों की

व्याख्या सुननी चाहिए। उनकी प्रांजल व्याख्या सुनकर मैं समझ गया कि शास्त्रों पर इनका असाधारण अधिकार है। इससे बढ़कर उन्होंने जिस प्रकार संतुलित कंठ से उपनिषदों के वाक्यों का पाठ किया वो वस्तुतः मनमोहक था। इस प्रकार अंग्रेजी, संस्कृत और योग के विषय में उनके समान रूप से परम आश्चर्यजनक पांडित्य का परिचय पाकर मैं उनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित हुआ। यद्यपि मेरे घर पर मात्र 7 दिन तक रहे, तथापि मैं उनका ऐसा अनुरागी हो गया कि मैंने मन ही मन तय किया कि किसी भी स्थिति में मैं उन्हें अन्यत्र नहीं जाने दूंगा। अतएव उन्हें सदैव भागलपुर में ही रह जाने के लिए जिद करने लगा। एक दिन मैंने देखा कि वे अपने आप गुनगुनाते हुए गीत गा रहे हैं।

इसी से जिज्ञासा की कि क्या वे संगीत जानते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, बहुत कम। हम लोगों के बहुत जोर देने पर वो गाने तैयार हुए। तब आश्चर्यचकित होकर मैंने देखा कि जिस प्रकार पांडित्य में उसी प्रकार संगीत में वे पारदर्शी थे। दूसरे दिन मैंने जानना चाहा कि यदि मैं कुछ गायकों और वादकों को निमंत्रित करके ले आऊं तो उन्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी। वे सहमत हुए और अनेक गायकों को मैं बुला लाया। उन गायकों में उनके उस्ताद भी थे। सोचा था कि रात के 9-10 बजे के बीच ही संगीत सभा समाप्त हो जाएगी। इधर स्वामी जी रात के 2-3 बजे तक अविराम गीत गाते रहे।

0: सबके सब संगीत में इतने उन्मत्त हो गए थे कि भूख प्यास या समय का ज्ञान ही नहीं था। किसी ने अपना स्थान नहीं छोड़ा, न किसी ने घर जाने की बात सोची। कैलाश बाबू संगत कर रहे थे, किंतु अंत में उन्हें विवश होकर रुकना पड़ा, क्योंकि उनकी उंगलियां संवेदना शून्य और जड़ हो गई थी। ऐसी अलौकिक शक्ति मैंने कभी नहीं देखी और भविष्य में भी देखने की आशा नहीं है। दूसरे दिन शाम को पूर्व रात्रि के सभी अतिथि अनामंत्रित रूप से आ पहुंचे और कई नए लोग भी आए, संगत करने वाले भी आए, किंतु स्वामी जी ने उस दिन नहीं गाया। इससे सभी अत्यधिक निराश हुए।
1: मन्मथ बाबू का संस्मरण अद्भुत है। एक दिन उन्होंने स्वामी जी से कहा कि वे उन्हें शहर के प्रतिष्ठित लोगों से परिचित करवाना चाहते हैं, पर स्वामी जी तैयार नहीं हुए और कहा,
2: देखिए मन्मथ बाबू, धनिकों के घर तक घूमने जाना सन्यासी का धर्म नहीं है। वहाँ मैं सहज नहीं हो पाता हूँ। उन लोगों के धन प्रदर्शन की प्रवृत्ति मुझे नहीं भाती, मुझे घिन आती है।
3: मन्मथ नाथ बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने कहा था,
0: उनके ज्वलंत वैराग्य ने मेरे मन पर गंभीर प्रभाव डाला था। सचमुच मैंने उनकी संगति लाभ के फल रूप ऐसा बहुत कुछ सीखा था जो मेरे आध्यात्मिक जीवन में सदा के लिए आदर्श हो गया है। बचपन से ही मुझे निर्जन में साधना करने की ओर झुकाव था। स्वामी जी से साक्षात्कार होने के उपरांत यह आकांक्षा और बलवती हो गई। मैं स्वामी जी से अक्सर कहा करता था, चलिए हम दोनों वृंदावन चले। वहां श्री गोविंद जी के मंदिर में प्रत्येक के लिए 300 रुपए जमा कर देने पर आजीवन गोविंद जी का प्रसाद पाते रहेंगे। इस प्रकार किसी पर भार स्वरूप न होकर हम लोग यमुना तट पर किसी निर्जन स्थान से दिन रात भक्ति साधना कर सकेंगे।
2: हाँ, एक विशेष स्वभाव और प्रकृति वाले व्यक्ति के लिए ऐसी व्यवस्था उत्तम है, इसमें संदेह नहीं, किंतु सबके लिए नहीं।
0: वे कहना चाहते थे कि सर्वत्यागी सन्यासी के लिए ये व्यवस्था ठीक नहीं है।
3: मन्मथ बाबू हमेशा उनके साथ रहा करते थे और हमेशा दोनों मिलकर तरह तरह की ज्ञान की बातें किया करते थे। उन्होंने आगे और भी कहा है,
0: उनके स्वतंत्र विचार मुझे बहुत अच्छे लगते थे। लीक से हटकर थी उनकी सोच। वे कहा करते थे,
2: प्राचीन आर्य

0: ज्ञान बुद्धि प्रतिभा के जो कुछ अवशेष अब भी रह गए हैं वे सब प्रायः उन्हीं स्थानों में पाए जाते हैं जो कि गंगा तट के निकट स्थित हैं। गंगा से जितनी अधिक दूर जाया जाए उतनी ही वे सब चीजें कम होती जाती हैं। इस विषय का ध्यान करने पर ही प्राचीन शास्त्रों में गंगा की महिमा का जो कीर्ति गान हुआ है उस पर विश्वास उत्पन्न होता है। निरीह इस शब्द को गाली के भारतीय रूप में नहीं ग्रहण कर इसे हम लोगों के चरित्र के महत्व का प्रकाशक तथा हम लोगों के गौरव के सूचक के रूप में ही ग्रहण करना उचित है, क्योंकि स्वार्थ सिद्धि के लिए मानव चरित्र की जो पार्श्विक शक्ति मनुष्य को अपने भ्राता के समान दूसरे मनुष्यों के सर्वनाश और हत्या के लिए प्रवृत्त करती है उससे मुक्त होने के लिए कितनी नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति आवश्यक है तथा प्रेम और करुणा का कितना उत्कर्ष आवश्यक है उसे एक बार सोचकर तो देखो।
1: स्वामी जी मन ही मन ये जानते थे कि मैं उन्हें स्वेच्छापूर्वक या सहज ही भागलपुर छोड़कर जाने ना दूंगा। अतएव एक दिन जब मैं आवश्यक कार्य से कहीं बाहर चला गया तब वे सुयोग पाकर मेरे घर के अन्य लोगों से विदा लेकर चले गए। उन्हें लौटा लाने के लिए मैंने प्राणपण से उन्हें ढूंढा किंतु वे कहां चले गए हैं इसका लेश मात्र पता नहीं चला। तथापि मैं कैसे ये सोच सका कि इस विषय में मेरी इच्छा का पूर्ण होना उचित है। जब स्वामी जी का कार्य क्षेत्र समग्र विश्व है तब वे कूप मंडूक की भांति यहां क्यों पड़े रहेंगे। उन्होंने मुझसे कहा था कि बद्रिकाश्रम जाने की इच्छा है, अतः उनके भागलपुर से चले जाने पर मैं उन्हें ढूंढने हिमालय के अल्मोड़ा तक गया था। वहां लीला बद्री शाह ने मुझे बताया कि स्वामी जी कुछ दिनों पूर्व ही अल्मोड़ा से चले गए हैं। हिसाब लगाकर देखा इतने दिनों में वे उत्तराखंड की ओर बहुत दूर चले गए होंगे। इसी से उनके पीछा करने का संकल्प छोड़ना पड़ा।
2: मन्मथ बाबू के घर एक सप्ताह रहने के समय स्वामी जी एक दिन बरारी के पवित्र चेता महात्मा पार्वती चरण मुखोपाध्याय को देखने गए। फिर एक दिन वे नाथ नगर के जैनियों का मंदिर देखाए। एक अन्य अवसर पर जैन आचार्यों से जैन धर्म के संबंध में उनकी काफी बातचीत हुई और जैन धर्म पर स्वामी जी का अधिकार देखकर आचार्यगण अत्यधिक संतुष्ट हुए। इस बातचीत के फलस्वरूप स्वामी जी ने भी जैन धर्म के संबंध में एक युक्तिपूर्ण धारणा बनाई और उन्हें ये विश्वास हुआ कि जैन धर्म हिंदू धर्म की ही एक शाखा मात्र है तथा बौद्ध धर्म के साथ उनका घनिष्ठ संबंध है।
3: मन्मथ बाबू ब्रह्म समाजी थे, परंतु स्वामी जी से परिचय होने के फलस्वरूप उन्होंने फिर से हिंदू धर्म को मानना शुरू किया, यहाँ तक कि उन्होंने राधा कृष्ण की लीला तक को स्वीकार कर लिया। स्वामी जी ने मन्मथ बाबू के घर पर आयोजित प्रथम दिन की संगीत गोष्ठी में तानपुरा लेकर गाया था।

0: भागलपुर में स्वामी जी और स्वामी अखंडानंद के साथ श्री मथुरा नाथ सिंह का भी परिचय हुआ। पटना में वकालत करके काफी ख्याति अर्जित की थी। सिंह महाशय ने पुराने दिनों की बातों का स्मरण लिखा था। उन लोगों से प्रथम भेंट में ही मैं उन लोगों के प्रति अनुरक्त हो गया। मुझे स्मरण हुआ कि मैंने उनमें से एक को कॉलेज में पढ़ने के दिनों कलकत्ते में देखा था। उन दिनों वे साधारण ब्रह्म समाज में प्रार्थना संगीत का संचालन करते थे। उन्होंने ही बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से ख्याति पाई। उनके साथ मेरी अनेक विषयों यथा साहित्य, दर्शन और धर्म, मुख्य रूप से अंतिम दो विषयों पर काफी चर्चाएं होती। मुझे लगा था ज्ञान और दर्शन जैसे उनके श्वास प्रश्वास में घुल मिल गए हैं। मैं समझ सका कि उनके उपदेशों की मूल बात थी एक गंभीर निस्वार्थ देश प्रेम, एवं उसी के मिश्रण से वे अपने कथनों को जीवंत कर देते थे। ये उनके चरित्र का एक शाश्वत रूप था। मैंने जब शिकागो की धर्म महासभा में उनकी सफलता का समाचार पढ़ा तो मुझे लगा कि अब भारत ने अपना प्रकृत नेता पाया है।
1: स्वामी अखंडानंद की इच्छा के अनुसार स्वामी जी इसके बाद बैद्यनाथ धाम गए। पता नहीं कि ये लोग रेल मार्ग से किलऊ होकर गए थे अथवा पैदल मैदानी मार्ग से गए थे। पैदल रास्ते उन दिनों भी अनेक लोग आया जाया करते, खासकर उन दिनों एवं आजकल भी उस रास्ते कई लोग बाबा बैद्यनाथ महादेव के लिए भादों की पूर्णिमा आदि पर्वों पर गंगा जल ले आते हैं। बैद्यनाथ में वे लोग एक दिन वृद्ध श्रद्धे ब्रह्म आचार्य श्री राज नारायण बसु से उनके पुराण दह स्थित आवास पर मिलने गए थे। उन दिनों स्वामी जी लोगों को साधारण साधु के रूप में ही अपना परिचय देना चाहते थे, अतः उन्होंने स्वामी अखंडानंद को पहले ही बता दिया था, जिसके कारण राजनारायण बाबू ये न समझ सकें कि वे लोग अंग्रेजी जानते हैं। बातचीत के क्रम में ऐसे अनेक विषय आ गए जिनमें अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करना आवश्यक था, जैसे जोड़ के चिन्ह, प्लस। किंतु स्वामी जी ने अपनी दोनों उंगलियों को एक के ऊपर एक चढ़ाकर जोड़ के चिन्ह की भांति बनाकर दिखाया और संकट मिटाया। वृद्ध राजनारायण बाबू ये कभी नहीं समझ सके कि ये युवक साधु अपनी मातृभाषा बंगला की भांति ही अबाध रूप से अंग्रेजी बोलने में अभ्यस्त है। बहुत दिनों के बाद जब स्वामी जी का नाम सारे भारतवर्ष में विख्यात हो गया, तब राजनारायण जी की घटना उनके स्मृति पटल पर उभर गई और उन्होंने आश्चर्य के साथ कहा, मैंने सोचा ना था कि वे अंग्रेजी नहीं जानते हैं।
0: स्वामी जी के बिहार प्रदेश में भ्रमण के समय एक मजेदार घटना घटी। बिहार के हर गांव में अनेकों आम के पेड़ थे। उन दिनों आम के पेड़ों पर कीचड़, सिंदूर और अनाज के दानों का एक एक पिंड कंडे की भांति चिपकाया हुआ देखकर सरकारी महल में एक बड़ी बेचैनी उत्पन्न हो गई। इस प्रदेश के अनेक जिलों के पेड़ों में यही देखा गया। सरकार के गुप्तचर विभाग ने ये खोज कर ली कि सिपाही विद्रोह के ठीक पहले जिस स्वदेशी चपाती का प्रचलन हुआ था, उसका इन कंडों के समान वस्तु से अद्भुत रूप से मेल है।
1: परिणाम स्वरूप अचानक ग्रामीण क्षेत्रों में सिपाही संतरियों को उपस्थित देखकर गांव के लोग डर से ये कहने लगे कि इन कीचड़ के कंडों से उनका कोई संबंध नहीं है, किसने ये कंडे लगाए हैं इसे भी वे नहीं जानते। अतः एव परिवारजक साधुओं पर ही संदेह हुआ और झुंड के झुंड साधुओं की धरपकड़ शुरू हुई। बाद में ये पता चला कि साधुगण निरापराध हैं एवं अच्छे फलों की आशा में आम के पेड़ों में ये कंडे लगाए गए हैं।
0: स्वामी जी अखंडानंद जी के साथ उन दिनों उसी इलाके में थे और पुलिस द्वारा इस सत्य का संधान कर पाने के पहले दिनों स्वामी जी बड़े सवेरे ग्रैंड ट्रंक रोड या किसी ग्रामीण पगडंडी पर तब तक चलते रहते जब तक वे थक न जाते अथवा कोई भिक्षा ग्रहण करने के लिए बुला न लेता। एक दिन चलते चलते उन्होंने सुना जैसे कोई पीछे से पुकार रहा हो। घूमकर देखा कि घोड़े पर सवार एक पुलिस अधिकारी दल के साथ उनकी ओर आ रहा है। पुलिस अधिकारी ने कठोर स्वरों में उनका परिचय पूछा तो स्वामी जी ने कहा,
2: ए, कौन हो तुम? इधर आओ।
3: हाँ साहब, आप तो देख ही रहे हैं कि मैं एक साधु हूँ।
2: मुझे पता है, सभी साधु बदमाश होते हैं। मेरे साथ चले आओ, तुम्हारे लिए जेल खाने की व्यवस्था कर देता हूँ।
3: कितने दिनों के लिए?
2: दो हफ्ते भी हो सकते हैं और एक महीना भी हो सकता है।
3: सिर्फ एक महीना? खान साहब, छह महीनों का बंदोबस्त नहीं कर सकते? कम से कम 3-4 महीनों का तो कर दीजिए।
2: अजीब साधु हो, 1 महीने से ज्यादा जेल में क्यों रहना चाहते हो?
3: कारागार का जीवन इस जीवन से बहुत सरल है। सुबह से शाम तक इस अविराम पैदल यात्रा की तुलना में जेल का परिश्रम कुछ भी नहीं है। नित्य भोजन नहीं पाता हूँ और प्रायः भूखे रहना होता है। जेल में 2 बार भरपेट खा सकूंगा। यदि आप मुझे काफी कुछ महीनों तक जेल में रखें तो सचमुच मेरा उपकरण होगा।
2: ए, चल भाग यहाँ से।
3: यदि जेल में चलते तो उपकार होता।
2: चलो, चलो, निकलो यहाँ से।
1: सुनकर खां साहब निराशा से भर गए। उन्होंने सोचा था कि एक अपराधी को पकड़ लिया है, पर ये तो पागल लग रहा है।
0: बिहार की ही एक और मजेदार घटना है। एक बार स्वामी जी ने निश्चय किया कि वे भोजन की भिक्षा नहीं मांगेंगे, अयाचित रूप से किसी के द्वारा कुछ दिए जाने पर ही केवल लेंगे। इसके फलस्वरूप बीच बीच में उन्हें भूखे रहना पड़ता था। एक बार 2 दिनों से निराहार हैं, फिर भी रास्ते

0: पर चल रहे हैं। उसी समय एक बड़े आदमी के अस्तबल की बगल से जाने पर एक सईस ने पुकार कर कहा,
1: साधु बाबा, भोजन हो गया क्या?
2: नहीं।
3: तब वो सईस उन्हें अस्तबल में ले गया और कुछ रोटियां और मिर्च की चटनी खाने को दी। स्वामी जी मिर्च खाने में काफी अभ्यस्त थे, यहाँ तक कि खाली हरी मिर्च भी चबाकर खा सकते थे, किंतु ये चटनी इतनी तीखी थी कि दो दिनों तक निराहार रहने के बाद उसे खाते ही पेट की जलन से वे छटपटाने लगे। सईस को भी तब भारी मानसिक कष्ट हुआ। उसी समय एक व्यक्ति अपने माथे पर टोकरी लेकर उसी ओर जा रहा था। चीत्कार सुनकर वो रुक गया। तब स्वामी जी ने जानना चाहा कि उसकी टोकरी में क्या है। उसने कहा, इमली। स्वामी जी ने कहा, यही तो चाहिए। उस इमली का पना पीकर उनकी जलन शांत हुई।
0: शीघ्र हिमालय पहुंचने की स्वामी जी की तीव्र इच्छा थी, किंतु स्वामी अखंडानंद जी ने पहले ही अयोध्या दर्शन कर विशेष आनंद प्राप्त किया था, अतएव स्वामी जी को भी उस आनंद का भोग कराने के लिए वे कटिबद्ध हो गए। स्वामी जी की कोई बात न सुनकर वे अयोध्या के लिए दो टिकट खरीद लाए। निरुपाय स्वामी जी भारी कदमों से चलकर गाड़ी में बैठ गए और अयोध्या स्टेशन पर गाड़ी से उतरकर मौन भाव से इक्के पर चढ़ गए, मानो केवल अखंडानंद के संतोष के लिए ही चल रहे हों।
3: अखंडानंद की इच्छा थी कि वे स्वामी जी को महंत महाराज जानकीश्वर शरण से मिलवाएंगे। वे एक भगवत भक्त और संस्कृत और फारसी भाषाओं के सुपंडित थे। वैष्णव होने पर भी उनको तिलक आदि का कोई बाहरी आडंबर नहीं था। मठ में काफी धन होने पर भी वे बहुत त्यागी थे तथा अतिथि अभ्यागतों के साथ एक पंक्ति में बैठकर सखुए के पत्ते पर भोजन किया करते थे और सहकर्मियों पर कार्यभार सौंपकर साधन भजन में समय व्यतीत किया करते थे। पहले दिन संध्या समय सरयू तीर पर लक्ष्मण घाट के निकट सीतारामा मंदिर में पहुंचकर महंत महाराज से बातचीत करने का सुयोग नहीं मिलने पर दूसरे सवेरे वे दोनों फिर से वहां उपस्थित हुए और महंत जी से त्याग, वैराग्य, भक्ति आदि विषय पर लंबी चर्चा की। इससे प्रसन्न होकर स्वामी जी ने अखंडानंद को कहा था,
4: धन्यवाद भाई, तुम जो मुझे यहाँ लाए इससे मैं बड़ा आह्लादित हुआ हूँ। मैंने आज एक सच्चे महात्मा का दर्शन किया है।
0: अयोध्या से दोनों सन्यासी नैनीताल गए और वहाँ वे दोनों 6 दिनों तक ठहरे थे। स्थानीय तालाब के ठंडे जल में स्नान करने से अखंडानंद को छाती में दर्द हो गया, किंतु उस समय बद्री नारायण के दर्शन का इतना दृढ़ संकल्प था कि इस दर्द पर किंचित ध्यान न देकर दोनों ने अल्मोड़ा के लिए प्रस्थान किया।
3: दोनों अल्मोड़ा पहुँचे। यहाँ के प्रसिद्ध व्यापारी लाला बद्री सहाय ने सन्यासियों के रहने के लिए एक सुंदर बागवाल मकान दे दिया। समाचार पाकर कुछ दिनों बाद स्वामी शारदानंद जी व कृपानंद जी भी आकर उनके साथ सम्मिलित हो गए। इस समय वाराह नगर मठ के अधिकांश सन्यासी तीर्थ भ्रमण में निकल पड़े थे। कोई ऋषिकेश, हरिद्वार इत्यादि में कुटी बनाकर अथवा पहाड़ की गुफाओं में रहकर कठोर तपश्चर्या में लगे थे।
0: अल्मोड़ा से वे कर्णप्रयाग आए। इस समय स्वामी तुरियानंद जी कर्णप्रयाग में अलकनंदा के तट पर आश्रम बनाकर तपस्या में रत थे। स्वामी जी गुरु भाइयों के साथ उनसे मिलकर बड़े आनंदित हुए। वहाँ से वे बद्री नारायण की ओर रवाना होने वाले थे, पर उसी समय स्वामी अखंडानंद के अस्वस्थ हो जाने के कारण वे बाध्य होकर उनकी चिकित्सा के लिए देहरादून लौट आए। अखंडानंद जी के स्वस्थ हो जाने पर स्वामी जी गुरु भाइयों के साथ ऋषिकेश में आकर रहने लगे। वहाँ उनके दिन वेदांत आदि शास्त्रों की चर्चा तथा ध्यान जप आदि में व्यतीत होने लगे। ऋषिकेश स्वामी जी को बहुत ही आनंददायक लगा। इस समय की सुखद स्मृति वे अपने अंतिम दिन तक भूल न सके थे। अपनी परिव्राजक नामक पुस्तक में मर्मस्पर्शी भाषा में लिख भी गए हैं।
4: ऋषिकेश की गंगा का स्मरण है ना? वो निर्मल नीला जल जिसमें 10 हाथ नीचे की मछली के पंख तक गिने जा सकती हैं, वो अपूर्व स्वादपूर्ण हिमशीतल गंगम वारी मनुहारीम और वो अद्भुत हर हर हर

0: तरंग ध्वनि, सामने पहाड़ी झरनों के हर हर की प्रतिध्वनि, वो मन में निवास मधुकरी भिक्षा, गंगा के बीच में छोटे छोटे द्वीपों की तरह है, प्रस्तर खंडों पर बैठकर भोजन करना, करपुटों से अंजुलि भर भर के जल पीना, चारों ओर खाद्य कणों की आशा में मछलियों का निर्भर विचरण, गंगा जल के प्रति वो प्रीति, गंगा जी की महिमा, गंगा जल का वो वैराग्य प्रद स्पर्श। गत बार विदेश में मैं थोड़ा सा गंगा जल ले गया था, समय पाते ही एकाध बूंद पी लेता था, पर पीने के साथ ही उस पाश्चात्य जन स्रोत के बीच में, उस सभ्यता के कोलाहल के बीच में, उन करोड़ों मनुष्यों के उन्मात प्राय द्रुतद विक्षेपों के बीच में मानो मन स्थिर हो जाया करता था। उस देश का वो जन स्रोत, रजोगुण का वो उधम, पग पग प्रतिद्वंदियों का वो संघर्ष, विकास का वो क्षेत्र, अमरावती से तुलनीय वो पेरिस, न्यूयॉर्क, बर्लिन, रोम, सभी लुप्त हो जाता था और मैं सुनता था वही हर हर ध्वनि और देखता था वही हिमालय का निर्जन अरण्य और वही कल्लोलिनी सुरंत गिनी मानो हृदय में, मस्तक में, नस नस में संचारित हो रही है और गरज गरज कर पुकार रही है, हर हर हर हर। नदी जल गंगा स्तव और हर हर महादेव की ध्वनि।
1: अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम आपसे मिलते रहेंगे अपने इस कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद में।
2: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
3: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीजें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूं, सपोज पांव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पांव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी, जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा, हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दे या भरते जाए, घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है, हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है, आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे, तुरंत क्या करेंगे, चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है लेकिन तुरंत क्या करेंगे, उठकर साफ करेंगे, ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है, क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना, कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है, अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा, दाग लग जाएगा, और यहां कुछ गिरा, यहां कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई, लास्ट कब साफ किया, और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया, कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
2: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे। अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना। दूसरा अगर चीट करता भी, किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते, मैं झूठ बोल देती, इतना ही तो चीट कर सकते हैं। सामने वाला कितना चीट करेगा, हमें क्या चीट करेगा? दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है। द पर्सन

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती

0: प्रिय किसी का मन ना तोड़ो, देखो सुनो जाने दो छोड़ो।
1: नारायण नारायण, बात हुई क्या कृष्ण मुरारी, क्यों रूठी है सुंदर नारी।
0: अच्छे समय पर आप पधारे, विपदा में है प्राण हमारे। रुक्मिणी कहे मेरे संग आओ, भामा कहे नाथ मत जाओ।
1: जिसका निमंत्रण आया पहले, भगवान जाए उसके महले।
2: नारद जी।
1: नारायण।

0: आया नहीं। क्यों बैठी हो खोई खोई, मेरे योग्य है सेवा कोई?
1: भरे नहीं अभी खाओ पुराने, फिर आए हो आग लगाने।
0: मैं सबका सेवक तुम जानो, चाहे परख लो जो ना मानो।
1: कोई उपाय आप बताएं, वो सौतन के घर ना जाए।
0: अच्छा तो एक व्रत रखोगी, अपने पति का दान करोगी?
1: वाह वाह, ढूंढा खूब उपाय, आपसे तो बस राम बचा।

0: तुम नहीं समझी कैसा खोना, उनके बराबर तोल के सोना, मोल ब्राह्मण को दे देना, मोहन को वापस ले लेना।
1: बस इतना ही, आप करें व्रत की तैयारी, भामा जीते रुक्मिणी हारी।
0: परंतु कृष्ण है भारी जितना, तेरे पास है सोना इतना।
1: वाह नारद जी, सोने के भंडार जो खोलूं, एक नहीं 100 कृष्ण मैं तोलूं।
0: नारायण नारायण।

0: कुछ धोखा है राम दुहाई, इतनी भारी नहीं कन्हाई।
1: ये तेरा सोना नकली है, मेरा मनमोहन असली है।
0: मेरे पास जो था ले आई, दे दूं मुझको कृष्ण कन्हाई।
1: दे दूं लेके जरा सा सोना, मोहन है या कोई खिलौना। चल तुझको संसार में बेचूं, दासों के बाजार में बेचूं। लो ये तंबूरा बंसी बजाइया, पकड़ो ये करताल कन्हैया।
2: भामा
0: स्वामी।
1: कैसा स्वामी, किसका स्वामी? स्वामी की होगी नीलामी।
0: नीलामी

0: अपना घर जो आप जलाए उसकी बिगड़ी कौन बनाए।
1: भूल हुई मुझसे ये भारी, जाऊं कहां विरहा की मारी।
0: रुक्मिणी से तुम बात ये पूछो, कैसे मिलेंगे नाथ ये पूछो।
1: रुक्मिणी मेरी भूल भुला दे, कोई जतन कर कृष्ण मिला दे। आ भामा मैं तुझ पे वारी, तू है मेरे कृष्ण की प्यारी। क्या ये दुख केवल तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो,

0: प्रतिज्ञा बांटो।
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।
2: दोस्तों, जीवन को चलाने के लिए आमतौर पे हमने सुना है मूलभूत तीन आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। जब बात आती है मकान की, हम किसी और के साथ रह भी सकते हैं, कपड़े हम कैसे भी मैनेज कर लेते हैं, लेकिन भूख एक ऐसी चीज है जो हमें दिन में कई बार सताती है और हर बार उसका समाधान मिलता है भोजन से। भोजन, अन्न आता कहाँ से है? धरती माँ से, लेकिन उसको उगाता कौन है? हमारे कृषक भाई बहने। तो वो जो अन्नदाता है किसान, उनके जीवन में भी कई समस्याएं चलती हैं, क्योंकि उत्पादकता, रोजगार, लाभ, ये सब के बीच में वो लड़ रहे होते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जब वो उन समस्याओं को देखता है और उसके लिए एक समाधान लेकर के आता है, और उस समाधान से न केवल किसानों का भला होता है लेकिन भोजन को ग्रहण करने वाले लोगों की सेहत में भी उसका फल दिखता है, तो उस व्यक्तित्व को पूरा देश सराहता है, उस व्यक्तित्व को पूरा देश प्रशंसा करता है, अपनाता है और उसे एक ऐसा सम्मान प्रदान करता है जिससे कि वो हम सब के लिए एक आदर्श बन जाता है। यशस्वी भारत कार्यक्रम में मैं आरजे शांतनु आज सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हर बार की तरह हमारे साथ एक और आज एक विशेष मेहमान है जिन्होंने किसानी में, खेती में एक ऐसा नयापन लाया जिसकी वजह से कई समस्याओं का समाधान हुआ और वर्ष 2020 में पद्मश्री सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया। दोस्तों, मैं आज हमारे स्टूडियो में स्वागत करता हूँ श्री चिंतला वेंकट रेड्डी जी का। रेड्डी जी, आपका हमारे रेडियो मधुबन के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार।
2: पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े। आप बिजी रहते हैं अपने काम में, अपने सेवाओं में बिजी रहते हैं, लेकिन आपने हमारे साथियों के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद।
2: ओके, आई वुड स्टार्ट नाउ द क्वेश्चन आंसर्स। वेंकट जी, आपने किसानी के लिए या कृषकों के लिए बहुत अच्छे अच्छे इनोवेशंस किए हैं, और वो इनोवेशन करने के लिए व्यक्ति को थोड़ा देर सोचना पड़ता है, बिकॉज इनोवेशन इज नॉट ईजी। कोई भी चीज जब नया करना होता है उसके पीछे थोड़ा रिसर्च होता है, थोड़ा स्टडी होता है, उसमें थोड़ा समय देना पड़ता है, और उसके बाद ही व्यक्ति कोई चीज को आगे ला पाता है, उसको निखार पाता है। आप जब इनोवेशन कर रहे थे, थोड़ा उसका आप हमें स्टोरी सुनाएं। व्हाट वाज योर स्टोरी? आपने वो थोड़ी कहानी हमको बताया कि कैसे शुरुआत किया, कैसे वो प्रोसेस रहा, और आज उस नवीनता की वजह से लोगों तक कैसे बेनिफिट पहुंच रहा है, कैसे उनका भला हो रहा है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं।
3: नमस्कार सभी भाई बहनों को, किसान साथियों को। ये मैं बचपन से, जब स्कूल जाते थे बचपन से भी ये खेती का काम में जुड़ा हुआ है। हमारा पिताजी बोलते थे स्कूल से आने के बाद फिर खेती को देखना, एक दो घंटा चक्कर लगाना वहाँ पर। हमारा पिता का ये आर्डर या कोई भी था, तो ऐसे ही हम आ रहे थे। मेरा स्कूल फाइनल पीयूसी 69 में पीयूसी प्री यूनिवर्सिटी कोर्स बाईपीसी ग्रुप, वो ट्वेल्थ क्लास बोलते हैं इधर, वो ट्वेल्थ क्लास बाईपीसी बॉटनी बायोलॉजी बाईपीसी ग्रुप, बॉटनी फिजिक्स केमिस्ट्री ये कंप्लीट करके फिर डिग्री के लिए एप्लीकेशन कर रहे थे, मगर नहीं, उसको उधर नहीं देगा वो एप्लीकेशन के लिए। फिर बाद में मेरे ये अभी तो 50, बचपन से ना, अभी मेरा उम्र 72 साल, 72 ईयर्स, मगर बचपन से स्कूल जाते थे तो वो गाय का दूध निकालते थे, 4-5 गाय थे, वो गायों का दूध निकालते थे और उसको चारा वगैरह डालते थे, देखभाल भी करते थे। बाद में ऐसा बचपन में क्या, कभी कभी अकाल आने से क्या हुआ, हमको पानी का दिक्कत हुआ था। यहाँ पर जो सिटी के एरिया से बिल्कुल बगल 6 किलोमीटर पहले गांव था हमारा, यहाँ पर दिक्कत होने से वो कुआ बोलते ही था, जब बोरवेल ट्यूबवेल नहीं था 1965-70, तब कुआ को और गहराई कूदना पड़े, वो गहराई कूदते वक्त वो मड्डी वाटर कीचड़ की पानी आते ना, उसको पंप करके

0: और खेत में सिंचाई करते थे। वो सिंचाई करने के बाद इतना फसल आता था, वो हम इस वजह आ रहे बोल के नहीं समझ में आया, और कुछ होगा बोल के। तो वो कभी अकाल पड़ता जब गहराई कुन्ना खोदना बोल तो वो खुदाई करते थे, वो मडी वाटर वो कीचड़ की पानी इसी तरह से नाले से सिंचाई करे से और उत्पादन ज्यादा आता। और वो वेजिटेबल्स सब्जी और गेहूं दान और ये क्या है अपना बाजरा भी उगाते थे उन दिनों में यहाँ पर, ये सब अच्छी फसल आ रहा था, भरपूर पोषक तत्व से आ रहा था। मगर जब पोषक तत्व को इसको टेस्टिंग नहीं कराया और ऐसे मैं ये पढ़ना छोड़ के फिर हमारा पिताजी का 74 में पिताजी का देहांत हो गया था, तब से हम तीनों भाई मिलकर इकट्ठा पिताजी का आशय क्या है वो सब निभाने के लिए, आशा निभाने के लिए हम इकट्ठा जॉइंट फैमिली में ये सब कर रहे थे। हमको भी ड्यूरिंग 84-85 1984-85 में ऐसे अकाल आया था, बहुत अकाल, और हम वही बॉडी को वो ओपन वेल को और गहराई खुदाई करना पड़ा। जब अंगूर लगाए थे, अंगूर ग्रेप्स इंग्लिश में ग्रेप्स बोलते हैं अंगूर
1: जी, आपके अंगूर की तो ये स्टोरी है कि आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 1978 में। साथियों जो भी आप सुन रहे हैं ये बड़ा ही विचित्र किस्सा आपको बताएंगे अभी चिंतला जी, क्योंकि 1978 में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, शायद 100 टन से भी ज्यादा अंगूर निकले आपके खेतों से, और वो भी बीज वाले अंगूर जो एक विशेष प्रकार के अंगूर होते हैं, प्लीज उसकी स्टोरी सुनाए।
0: वही बोल रहे ना, इससे पहले वो बॉडी खुदाने से पहले एक पेड़ को 100 किलो लगता था, फिर ये बॉडी का सिंचाई का पानी देने के बाद, ये कीचड़ की पानी देने के बाद ये 4 महीना खुदाई हुआ था, वो गहराई 4 गज का, 4 मीटर समझो, गज समझो, वो एक एक महीना एक एक गज कंप्लीट करा, वो मैनुअल आदमी से खुदवाना पड़ा। और एक एक महीना एक एक गज आने से वो पूरा पानी को कीचड़ के पानी सिंचाई के रूप में दिए थे 4 महीने तक। तब हम उन दिनों में ये 250 किलो एक पेड़ को लग गया, एक एक पेड़ को 250 किलो, 100 किलो किधर, 250 किलो, वो भी मजबूत फल, खर खर बोलते थे ऐसा खाने से, बहुत मीठा और खर खर बोल। हम समझा ये अकाल की वजह से ऐसा आया बोल के हमको महसूस हो गए, इसका हम इतना नहीं ख्याल कर रहा, ये मडी वाटर कीचड़ की पानी जाके उतना गहराई का मुरम, ये वो मिट्टी से भी इतना फसल आया बोल के हमको निर्धारण नहीं करे थे उस टाइम। बाद में हम सबसॉइल गहराई का मिट्टी का फायदा देखने के बाद ये सब मेरे याद आ गए, बचपन पे हमारा पिताजी करे सो और अबू करे सो 86-87 में, ये करे सो बाद में, ये सब याद आ गए मेरे। तब ये 2002 में याद आ गए, इतने साल गुजरने के बाद जब मैं मेरे को ये सब याद आ गए, अरे मिट्टी कितना भी गहराई जाओ वो पोषक तत्व भरपूर है धरती माँ के अंदर, ये महसूस हो, ये अगर ये अनुभव नहीं तो मैं पेंटेड नहीं करता था, ये अनुभव मेरे अच्छा एक स्ट्रांग वो पक्का यकीन हो गया, अरे यही धरती कितना गहराई जाओ वो पोषक तत्व भरपूर है बोल। तो 2003 में वो ये आइडिया आने के बाद 2008 में हम दान और एक क्यों फसल उगाए थे, ये अंगूर तो कोई सीजनल एक साल में एक बार ही आएगा, मगर रोज खाने का ये गेहूं और चावल है ना, ये स्टेपल फूड में गए, और ICR वालों को बुलाए तो भी तुम्हारा अंगूर ऐसा स्टेपल फूड नहीं होता ना, ये जब स्वामीनाथन चेयरमैन था हमारा कमिटी में, हमारा ब्योया डाटा में सब कुछ लिखा हुआ है, वो स्वामीनाथन ने जी बोला ये तो अंगूर है ना एक साल में एक बार करते, अब ये दान और गेहूं में करे तो बहुत अच्छा रहेगा बोलते। तो दान और गेहूं में करके हमारा यूनिवर्सिटी या राजेंद्र नगर इधर हैदराबाद का एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वैज्ञानिक उनको बुला के या मैं दिखाया सब हम कैसा कैसा करें, वो यूनिवर्सिटी का रिसर्च डायरेक्टर बोला रेड्डी जी ये तो बहुत बढ़िया है, आप पेपर

0: ये सात जनेवा को पेटेंट फाइल करके भेजो बोली वो सलाह भी। तो उसी प्रकार मैं ICR का वैज्ञानिकों को पकड़ के ये लिखवा कर सब अपना डाटा कैसा रहे वैसा है, मैं जो जो करा वो डाटा साइंटिफिक डाटा में फाइल करे। वो फाइल करते ही 8 महीने के अंदर पहले ये लोग इनकार करे, अरे तुम कुछ पेस्टिसाइड फंगिसाइड और फर्टिलाइजर यूज नहीं करे, वो लोग तो नहीं मानेगा इतना खर्च कर रहे बोल के ये लोग बोल रहे थे। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं डाला, ये सच है, आप लिखो ऐसे ही, तो बेकार हो तो भी परवाह नहीं मेरा, ये सच कभी मैं सच जो बोल रहे सच है उनके लिखवा है। तो 8 महीने में भी द टेक्स्ट इज अप्रूव्ड एज सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट बोल के आया मतलब से। ये तो हैरान हो गए ये साइंटिस्ट वैज्ञानिक लोग, अरे ऐसा कैसा है अप्रूव हुआ ये बिना विदाउट फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड और ये फंगिसाइड भी नहीं। इसको 18 महीने में पब्लिकेशन इंटरनेट में आ गया। इंटरनेट में आने के बाद वो अमेरिका भी एक मेंबर कंट्री है जेनीवा से, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन में अमेरिका की एक कॉपी अमेरिका गए, और वो अमेरिका के वैज्ञानिकों ने अमेरिका के राष्ट्रपति तक ये पेपर्स पहुंचा दिया। वो अमेरिका राष्ट्रपति भारत की यात्रा करके प्राइवेट विजिट में उन्हें मैं हैदराबाद जाना चाहता हूँ रेड्डी जी को मिलने के लिए, ये भारत सरकार को वो रिक्वेस्ट करें। तब मेरे पास एक डिस्ट्रिक्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आके मेरे पास आया, वो पेपर्स मेरा फॉर्म विजिट करे थे, और करने के बाद वो मेरा पेपर्स जो नेट में आता सब लेकर गया, और 1 महीने के बाद मेरे से फोन करके बोला रेड्डी जी आपसे अमेरिका की राष्ट्रपति मिलना चाहे थे, आप क्या बोलेंगे कि वजह क्या है, नहीं आपका ये पेटेंट है ना वर्ल्ड पेटेंट उसको तारीफ करने अप्रिशिएट करने के लिए आ रहे इधर हैदराबाद प्राइवेट विजिट में, कोई स्वागत तोरण कुछ भी नहीं रहेगा, फूल की हार ये कोई नहीं, सिंपल आ जाए, कोई यूनिवर्सिटी ग्राउंड्स में हेलीकॉप्टर उतरेगा वहाँ मिलेगा आपको, ठीक है आने दो मैं मिलूंगा। तो उन्हें आके आते ही बहुत ही ऐसा टेबल के ऐसा झुक के हाथ खींच लेते, मैं हैरान हो गया था, ऐसा मैं नहीं समझे थे इन्हें, मेरा हाथ खींच लेता बोले। तो बहुत बढ़िया काम किया मानव के लिए, यू हैव डन ए वेरी गुड थिंग टू मैन काइंड बोल के अप्रिशिएट करके एक 5 मिनट छोड़े न हाथ से, ऐसा मैं समझा। तब मैं समझा ये लोगों को केमिकल फूड काट इसलिए ये, मगर उसका वजह बहुत वो लोग इसको और शोध किया ये पेटेंट को। मैं जो
1: हम चाहते तो कई बार मैं इस कहानी को सुना सकता था, लेकिन आपके मुख से सुनने में एक अलग ही मजा है, क्योंकि जब आप कह रहे थे तो मेरे सामने वो सारे दृश्य उभर के आ रहे थे कि क्या हुआ होगा क्या हुआ होगा। लेकिन एक चीज यहाँ बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत खूबसूरती से आपने रखा कि सच्चाई जो है वो कायम रहती है। आपको वैज्ञानिकों ने बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है, आपके सामने प्रश्न रखे, लेकिन आपने अपनी सादगी और सच्चाई से कहा कि ये जो मैंने किया है केवल मैं उसकी बात करूंगा, और उस सच्चाई की जीत हुई और आपको पेटेंट मिला। साथियों यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगा पेटेंट क्या होता है। जब कोई व्यक्ति कोई चीज का शोध करता है, कोई अनुसंधान करता है, तो उसको वो नामांकित कराता है, एक स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है, कुछ विश्व के लोग होते हैं और वो उस चीज को मान्यता देते हैं कि हाँ ये जो चीज बताई जा रही है वो इस व्यक्ति की ही खोज है। तो जैसे वेंकट जी ने बताया कि जमीन के अंदर जितने हम गहराई में जाते हैं, एक सीमित दायरे के अंदर जो पोषक तत्व है धरती के वो कायम रहते हैं। तो वो मिट्टी को जब वो यूज करते थे तो पोषक तत्व ज्यादा होते थे उनके उत्पादन में, और उत्पादन क्षमता भी जो है जो अमाउंट था क्वांटिटी वो भी बहुत ज्यादा होता था। लेकिन ये चीज उनको समझने में कई वर्ष लगे, और उसी समझ को फिर उन्होंने शोध किया और उसका उनको पेटेंट मिला। एक और चीज जो उन्होंने बताया कि WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, तो वो क्या करता है कि हर व्यक्ति के ऐसे खोज को एक स्टैंप लगाता है, एक मुकाम देता है कि हाँ इसको मानोन्नत किया गया है। और ऐसे ही 2020 में जिसकी कहानी आगे चिंतला जी बताएंगे कि 2020 में कैसे उन्होंने एक और नया पेटेंट किया, और उसकी कहानी पर हम चलते हैं।
0: वो 2020 में नहीं, 2019 में जब ये पोषक तत्व बढ़ाने के लिए वो विटामिन डी का कमी, ये डॉक्टर मेरा डॉक्टर दोस्त मेरा दोस्त क्लासमेट्स है ना 12वीं कक्षा का, वो क्लासमेट्स में दो तीन डॉक्टर बन गए। डॉक्टर बनने के बाद वो लोग उनके साथ मीटिंग में जाते थे, मैं साथ कभी कभी ये कंपनी वाला मीटिंग रखते थे ना, वो जाते होते थे, वो लोग डिस्कशन करते थे विटामिन डी तुम्हारा लेवल कितना है, तुम्हारा बॉडी का कितना है, ये सब एक वापस में बात करते थे। मैं सुना, मेरा फ्रेंड को पूछा, अरे ये विटामिन डी का क्या काम होगा? नहीं, रोग निरोधक शक्ति, ये डिसीज रेसिस्टेंस का, ये सब के लिए ये जरूर इतना 100 mg होना चाहिए एक आदमी का खून में, ऐसा बोले तो मैं, मेरे को 2009-10 में मैं तो विटामिन ए सी तो यूरोपियन पेटेंट ऑफिस से सक्सेस पब्लिकेशन हुआ था, फिर ये आने के बाद जो डी क्यों नहीं आएगा बोल के उसको भी तरीका, वो उसको पहचान करने के लिए मेरे 8 साल लग गए थे। ये विटामिन जब फाइल करे तब आए, पर दूसरी साल नहीं आया था। फिर उसको शोध पे करने से मेरा डायरी में देख के ऐसा मैं क्या करे थे जब और क्या भूल गया बोल के ऐसा करते करते 2017-18 में ये विटामिन भरपूर विटामिन ए का भरपूर रिजल्ट आ गया, मेरे महसूस हो गए ये यहाँ इस वजह से आया। तब मैं ये ध्यान करते हुए ये डी को भी ट्राई करे तो ये डी आ गए। डी आने के बाद ये हमारा यूनिवर्सिटी में जाके वहाँ भी टेस्टिंग करे, दोबारा एक लैब का नहीं 2-3 लैब का टेस्टिंग करा, 2-3 लैब में रिजल्ट पॉजिटिव आया। फिर वो हमारा यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बोला, रेड्डी जी आप इंटरनेशनल पेटेंट करो, तब इसका अच्छा रिकग्निशन आएगा। तो तब अपना 2019 में कोविड नहीं था, 2020 में कोविड आया था, इसका पहचान सभी लोगों को मालूम पड़ा, ये विटामिन कमी होने के वजह से कोविड और सब बीमारियां फैल रहे, ये इन्फेक्शन डिसीजेस सब फैल रहे बोल के सबको सब लोगों को ध्यान में आ गए कोविड के वजह से। फिर एक कोविड के समय ये पब्लिकेशन भी हो गए, 1.5 साल हो गए, ये 11 फरवरी 2021 को ये पब्लिकेशन हो, ये पब्लिकेशन होते ही मैं यहाँ का लोकल का मिनिस्टर हमारा यहाँ केंद्र मंत्री जी किशन रेड्डी थे उसके पास जाके ये पेपर मैं नेट में जो आया पब्लिकेशन हो गए वो पेपर किशन रेड्डी जी को दे दीजा, वो किशन रेड्डी जी अपना माननीय प्रधानमंत्री तक लेकर गए, वो मन की बात में प्रधानमंत्री 28 फरवरी को रेडियो प्रसंग में मन की बात में ये प्रसारण हो गया, ये ऐसे है ये कहानी।
1: तो दोस्तों आइए सुनते हैं मोदी जी ने क्या कहा हमारे चिंतला वेंकट रेड्डी जी के बारे में।
2: कि हमारे युवा भारत के वैज्ञानिक इतिहास को, हमारे वैज्ञानिकों को जाने समझे और खूब पढ़े। साथियों जब हम साइंस की बात करते हैं तो कई बार इसे लोग फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर लैब्स तक ही सीमित कर देते हैं, लेकिन साइंस का विस्तार तो इससे कहीं ज्यादा है और आत्मनिर्भर भारत अभियान में साइंस की शक्ति का बहुत योगदान भी है। हमें साइंस को लैब टू लैंड के मंत्र के साथ आगे बढ़ाना होगा। उदाहरण के तौर पर हैदराबाद के चिंतला वेंकट रेड्डी जी हैं। रेड्डी जी के एक डॉक्टर मित्र ने उन्हें एक बार विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारियां और उसके खतरों के बारे में बताया। रेड्डी जी किसान हैं, उन्होंने सोचा कि वो इस समस्या के समाधान के लिए क्या कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने मेहनत की और गेहूं चावल की ऐसी प्रजातियों को विकसित की जो खास तौर पर विटामिन डी से युक्त है। इसी महीने उन्हें वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा से पेटेंट भी मिली है। ये हमारी सरकार का सौभाग्य है कि वेंकट रेड्डी जी को पिछले साल पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। लैब टू लैंड के मंत्र के साथ आगे।
1: तो दोस्तों जिनके बारे में देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि ये एक अपने

0: उदाहरण है कि कैसे भारत से प्रकाश जो है दुनिया के कोने कोने तक पहुंचता है और दुनिया को मजबूत बनाता है, दुनिया के बारे में सोचता है। ये जो सेवा भाव है ये भारत के हर बच्चे बच्चे में है, भारत की मिट्टी में है। और चिंतला वेंकट रेड्डी जी ने ढूंढ निकाला वो राज कि मिट्टी में पोषक तत्व विशेष रूप से विटामिन डी और B12 कैसे बढ़ाया जाए, जो कि हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मुकम्मल करता है, ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। मैंने आपने हर एक ने कई बार सुना होगा कि अरे खून की जांच कराई गई और उसमें B12 की कमी है या विटामिन डी की कमी है, तो डॉक्टर कुछ गोलियां दे देते हैं। खैर गोलियां खाना एक बात है, लेकिन नेचुरली प्राकृतिक तौर से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता पावरफुल हो उसके लिए सही भोजन करना जरूरी है। और भोजन में वो विटामिन डी और B12 हो उसके लिए मिट्टी में वो तत्व होना बहुत जरूरी है। इसलिए चिंतला वेंकट रेड्डी जी का हम सब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है कि उन्होंने ढूंढ निकाला एक ऐसा तरीका जिससे मिट्टी में वो पोषक तत्व वापस आए। तो रेड्डी जी आपसे यही बात करना था कि क्या वो कॉम्पोजिशन आप हमारे श्रोता साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं कि कैसे मिट्टी में हम इसको बढ़ाए।
1: वो पेटेंट उसमें पेपर्स में लिखा गया है, मैं जो प्रोसीजर करे सो वो बताया गया। वो ये कैरेट और शकरकंद और मक्का के आटा ये सब मिला के मिट्टी गहराई का मिट्टी में मिला के फर्टिलाइजर का रूप में पोषक तत्व रूप में दिया था। अपन जो फ्रेश खाना खाते हैं और धूप में गए तो अपना शरीर से अपना चर्म से स्किन से विटामिन डी पाया जाता ना, ऐसा ही ये क्यों नहीं लेगा बोल के मैं ये सब विटामिन ये एंटीऑक्सीडेंट रहेगा इसमें ये सब तीनों में पोषक तत्व। और ये पोषक तत्व को अपन तो ऐसा धूप में जाते हैं अपन कपड़ा पहन कर जा रहे, मगर गेहूं और धान तो बगैर कपड़ा वो नेचुरली रहेगा ना, सूर्य रश्मि से लेकर वो एंटीऑक्सीडेंट खाके सूर्य रश्मि से लेकर फिर डी विटामिन का रूप में दे दिया अपने। ये भगवान की महत ये मेरा को महसूस मैं ऐसा नहीं महसूस होगा मैं, मगर ये भगवान की कृपा से हुआ समझते मैं। ये क्यों बोले तो हम भगवान का नियमम माने अभी इसमें वो PDF में बताया गया जब उत्तरायण पुण्यकाल में बोनी करना है, दक्षिणायन पुण्यकाल किधर से बोनी करना किधर आखिरी करना, वो नियम में चले तो धरती माँ ऐसा सूरज के पूरा राउंड घूमते ना साल भर, एक साल में एक बार घूमती ना, ऐसी उसी प्रकार की धरती माँ जैसा घूमता वो सूरज का किरण उत्तर की ओर आ रहा है या दक्षिण की ओर आ रहा है वो देखकर उत्तरायण पुण्यकाल दक्षिणायन अपना बड़ा पूर्वजों ने ऐसा कह दिया, मगर उसको अपनाते हुए वो उसको। इससे पहले मैं छोटा कहानी बोलना चाहता हूँ, ये मेरा महसूस किधर कहाँ आया ये कैसे आया एक छोटा बोलना पड़ेगा, क्यों बोलते वो छोड़ के ये बोलना मेरे को ठीक नहीं लग रहा।
0: जी जी हम सब बेताब है, कहानियां सुनने में हमें बड़ा मजा आता है, प्लीज सुनाइए।
1: ये 1986 में हमारा यहाँ पर बाल आया था, गोदावरी नदी का बाल आया था। वो नदी का किनारे राम मंदिर है भद्राचलम, मेरे से यहाँ आंध्र ये हैदराबाद से 300 किलोमीटर आगे पूर्व। वो राम मंदिर में गया, वो लोग वो ब्राह्मण पुजारी लोग रहते ना वो लोग बोल रहे थे ये देखो ये पेड़ को इतना ऊंचा आया बगल ये ऊंचा तक आया पानी बाल बहुत दूर तक 3-4 किलोमीटर चले गए। मैं तो भगवान आके राम इधर भगवान के पास आया यहाँ तो डूबा रहे हमको सुखा रहे ये हमें क्या कर रहे पिता राम, ऐसे पूछा मैं ये पिता हमें आपके लिए क्या गलती कर रहे ये यहाँ तो डूबा रहे हमको सुखा रहे ये क्या है उनको ये थोड़ा मेरे समझाओ मेरे समझाए तो मैं सबको बोलूंगा मगर थोड़ा मेरे समझाओ बोल के प्रेरणा। तभी 10 मिनट में सीता माँ का आशीर्वाद आ गए थे ऐसा प्रेरणा करने के बाद तो मैं संतुष्ट हो गया तब के हाँ ये तो कुछ है इसमें कुछ आशीर्वाद तो मिल गया। वो आशीर्वाद भी मैं ये बोल इसमें बोलने के टाइम ये किसान पाठशाला CVR बोल के आप क्लिक करें तो उसमें सब कुछ है ये कैसा आशीर्वाद आया वो आप भी बिलीव कर सकते सब यकीन कर सकते ये आशीर्वाद थोड़ी ना बहुत बढ़िया आशीर्वाद ये राम।

0: और सीता माँ का, दोनों का आया।
1: तो क्या था ये आशीर्वाद?
0: आशीर्वाद में प्रेरणा कर रहे थे ना, जब ये राम जब दोनों पूजा होने के बाद दोनों पुजारी वहाँ काम फूल को ऐसा ऐसा करते थे, मैं प्रेरणा मेरे को मन में आया, राम का आपका चरणों स्पर्श करना चाहते मगर ये पुजारी नहीं आने देते, पकड़ने के नहीं देगा, मैं क्या करूँ, ऐसा ऐसा हाथ दोनों हाथ ऐसा ऐसा करते हुए सोच रहे थे, तभी आइडिया है, अरे वो राम का पुजारी बोलो तो मूर्तियों का नहीं पकड़ने देगा, वो लोगों का पकड़ने देगा, पहले राम जी का पास जो खड़ा हुआ वो पुजारी का चरण स्पर्श किया, उन्हें राम बोला, ये माता सीता माँ के बगल में ये पुजारी था, उनका भी चरण स्पर्श करते हुए उनको कुछ भी आवाज नहीं दिया, फिर यही संतुष्ट होके मैं बाहर आके एक 10 मिनट इधर घूम के मंदिर में एक राउंड घूमने के बाद जो हम दक्षिण की ओर से आए, दक्षिण की दरवाजा, एक पश्चिम की ओर है एक दक्षिण की दरवाजा है, वो दक्षिण की दरवाजा पर हमारा कार रोके, वो दक्षिण की दर तक मैं चले गए ना, वो मेरा सामने सीतामा पुजारी वहाँ आके खड़ा हुआ मेरा सामने, उनको 3 बच्ची एक ही एज वाला 16-17 एज वाला 3 बच्ची उनका सामने आ गए, वो रास्ते के सामने, तो वो लोगों को रास्ता दे ऐसा उठे सब पाओ रास्ता देने के लिए पीछे लग दिया, मेरा पाँव पर उन्हें रख दिया, अरे राम अभी आप मेरे को पुजारी का पाँव स्पर्श करके आया, सीता माल तो धरती माता हमारा माँ है ना, मैं भी उनके धरती माता सेवा कर रहा हूँ ना, ये आशीर्वाद समझ रहे बोल के ये मेरे को बहुत संतोष हो गए, खुश मन खुश, क्यों बोले तो वही समय वो पुजारी वहाँ खड़े होना, उसका पीछे मैं रहना, उनका सामने 3 बच्ची एक के बाद एक बार रास्ता नहीं पुजारी को बाहर जाने के लिए, फिर वो लोगों को रास्ता छोड़ना पड़ेगा, उन्हें फिर पीछे पांव ले लिया, वो मेरा राइट लेग।
1: ये एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है, एक बहुत भावनात्मक कहानी है जिसके पीछे बहुत सारी खूबसूरत फीलिंग जुड़ी हुई है। दोस्तों इस कहानी का अगर मैं सार ढूंढूं तो एक तो मनुष्य के मन का भावनात्मक कनेक्शन धरती के साथ होना बहुत जरूरी है। अगर कोई किसान केवल खेती करना चाहता है लेकिन उसका कोई भावनात्मक संवेदनात्मक कनेक्शन नहीं है, कोई जोड़ नहीं है अगर माँ धरती के साथ, वो धरती को केवल जमीन समझता है लेकिन माँ नहीं समझता, तो कभी भी उसके साथ उसका वो रिश्ता कायम नहीं होगा। ये जो प्रेरणा की बात कही चिंतला वेंकट रेड्डी जी ने कि ये तो उन्होंने कितनी सभ्यता के साथ, कितने प्रेम से और कितनी नम्रता से कहा कि ये मेरी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इसको ईश्वर को अर्पण करता हूँ। ईश्वर जो है, माँ धरती जो है, क्योंकि धरती माँ को जानकी से सीता जी से कनेक्ट किया जाता है कि भाई ये उनकी देन है और उन्होंने सब कुछ उनको सौंप दिया, ये अपने आप में इनकी महानता दर्शाता है। लेकिन साथ में जो चीज उन्होंने कही कि अगर ये भावना रहे हमारे अंदर कि हम धरती की सेवा कर रहे हैं, हम खेती कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, भोजन उगाने के लिए कर रहे हैं, इन सारी भावनाओं से कहीं ज्यादा ऊंची भावना है धरती की हम सेवा कर रहे हैं, तब आपके पास भी कई ऐसे ब्यूटीफुल तरीके निकल के आएंगे, आपको भी कई ऐसे आइडियाज मिलेंगे जिसको करने से आपका जो किसानी है वो बहुत खिलेगा, बहुत संवरेगा। इसी पहलू में वेंकट जी, जब आपने ये देखा कि आपके पास कुछ प्रेरणाएं आ रही हैं और उसको आप अप्लाई कर रहे हैं अपने खेती में, क्या आपके आस पड़ोस के लोगों ने कभी इसमें प्रॉब्लम क्रिएट किया, कभी उन्होंने चैलेंज किया आपको?
0: नहीं, सब लोग झूठ है, तुम क्या कर रहे हो, तुम दिमाग नहीं, ये कैसा धरती से, ये मिट्टी से क्या होने वाला है। आजकल हमारा गुरु स्कूल जाते से वक्त एक ही बोल रहा था, रामायण में जाके ये पार्ट टाइम बोलते बोलते रामायण में जाता था, राम माने कौन नहीं रे, सीता माने कौन नहीं, पहले समझो बोलते थे हम। मैं हम जो रामायण, राम तो दशरथ अयोध्या का दशरथ जी का पुत्र है, सीता माता उसका जनकश्यपुर थी, बोल मगर नहीं ऐसा नहीं होता रे, ये राम माने रवि, रवि माने सूरज, ये भगवान ईश्वर एक बजे 1 मिनट में पैदा हुआ ये धरती में, ये

0: सीता माँ धरती में से आया, ये भू माता है बोल के समझाया थे, बहुत बार समझाया, मगर हम इनको रामायण में बहुत यह है बोल के हम भी थोड़ा नजर ऐसा नहीं रखता था, ऐसा ध्यान नहीं रखता था, मगर मेरे को वही काम में आया जो पहचान के लिए राम माने।
1: ये जो पहचान है, ये जो पहचान है, ये दरअसल कई बार हम भूल जाते हैं। हम चीजों को ऊपरी तौर पे ले लेते हैं, शब्दों को ऊपरी तौर पे ले लेते हैं, उसकी भावना में नहीं जाते, उसके तह तक नहीं जाते। जैसे आपने बताया कि राम आपके लिए सूर्य के समान है और सीता आपके लिए धरती के समान है, तो इसलिए वो पात्र को समझना ये बहुत जरूरी होता है। और ये तभी होता है जब व्यक्ति आध्यात्मिक रीति बहुत सशक्त है, जब वो केवल भावनाओं में नहीं है, वो आंतरिक रीति बहुत सशक्त है, बहुत ज्ञानी है।
0: इसीलिए मैं ये भी कहता हूँ, एक मंदिर में मेरे ये आया, मंदिर का परिक्रमा कैसा करता, पहले दाहिने हाथ से कर, ये आपसे दाहिने हाथ से नहीं कर, अपोजिट मेरे कौन रहता, मेरा आत्मा में राम आ जाता उधर अपोजिट डायरेक्शन से, लेफ्ट राम का लेफ्ट सीता रहेगा बगल में। सो राम को अपन मन में लिया, ऐसा फिरे तो शिव को मन में लिया, पश्चिम की ओर फिरे तो शिव रहता, माता पार्वती रहेगा, ऐसा दोनों सीजन है अपने को, एक वर्षाकालीन है, दूसरा सीता काल। देखो ये भी मैंने कहा, नेचुरली सब लोग कहते हार है सीताकालीन, सीताकालीन तो क्या है वो, माँ सीता का दक्षिण की ओर जाना, उत्तर की ओर आ रहा
1: है। ये बहुत ब्यूटीफुल है रेड्डी जी, आपने शब्दों के बीच में से ज्ञान को ढूंढते निकाला। और दोस्तों क्या आपने गौर किया, इनका जो प्रत्येक किसानी से रिलेटेड जो भी इनकी प्रक्रिया है, वो कहीं ना कहीं इनके ट्रेडिशन से, इनकी संस्कृति से, इनकी भावनाओं से कनेक्ट होता है। कई लोग अपने कामकाज को, कारोबार को भावना, भक्ति इनसे अलग कर देते हैं, और इस वजह से कई बार हम थक जाते हैं। लेकिन इन्होंने तो अपनी भक्ति को ही अपने कर्म में ले आया, और जो हम कहते हैं वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, इन्होंने वास्तव में धरती पर खेती में ही अपनी सारी साधना की, अपना सारा पूजा किया है, और जिसका फल आज हम सबको मिल रहा है।
0: ये श्रेय भारत का ही जाएगा, क्योंकि भारत में मंदिर ये देखना है तो मंदिरों सब यही देख रहे, अपन पूजा भी यही मंदिरों में पूजा भी हो रहे, ऐसे ही पूजा वही पूजा अपना फार्म में खेती में करो। एक मंदिर हमारा तेलुगु में बोलते हैं, एक मंदिर बोल दो गुड़ी, एक पाठशाला को बड़ी बोलते, एक खेती को मड़ी बोलते, एक खेती गुड़ी मड़ी, ये बड़ी गुड़ी मड़ी बोलते, मड़ी बोलते पाठशाला, गुड़ी बोलते मंदिर, मड़ी बोले तो खेती, खेती का प्लाट, एक प्लाट को मड़ी बोलते तेलुगु में
1: जी,
0: ये चौका चौकाने वाला, चौका तरफ रहने वाला वो मड़ी क्या, स्क्वायर को मड़ी बोलते, ये तीनों को अपन याद रखे तो अपने को कभी राम का युग में हम सुने थे महीने में तीन बारिश हो रहा है, जब बारिश का क्या चिंता है, जब शिव जी गंगा को सिर का ऊपर से लाते ना
1: शिव का ये बहुत ब्यूटीफुली बताया इन्होंने कि अगर हम आज भी तीन चीजें नहीं भूले, एक तो मंदिर, दूसरा पाठशाला और तीसरा अपनी खेती, जो इन्होंने अपने तेलुगु भाषा में कहा गुड़ी मड़ी और पड़ी,
0: मड़ी
1: गुड़ी पड़ी और मड़ी, तो इसलिए मतलब ईश्वर का साथ नहीं भूले, शिक्षा को नहीं भूले, और कर्म को अर्थात जो अपना कार्य क्षेत्र है उसको पूरा सम्मान दीजिए, तो कभी भी आपको टेंशन नहीं होगा, चिंता नहीं होगी। और खेती को केवल खेती नहीं, लेकिन उसको एक पूजा के समान, एक इबादत के समान उसका सम्मान करना चाहिए। और मैं समझता हूँ वेंकट जी, आप अगर हमें ये बताएं, क्योंकि आपने बताया कि ये केवल भारत में ही होता है, भारत में ही हम कृषक को अन्नदाता का मान देते हैं, भारत को ही हम धरती को माता के रूप में मानते हैं। आज भी किसान जब अपने खेती में जाता है तो उसको प्रणाम करता है, आज भी नदियों की पूजा होती है, तो भारत में ये भावना प्रधान और प्रकृति के प्रति सम्मान बहुत स्ट्रांग है। आपने भारत के कई कोनों का भ्रमण किया है, आप बहुत जगह पे गए हैं,

0: इक्वल करना यही है सेंटर प्लेस, भगवान भी सेंटर प्लेस, जब बड़ी में टीचर भी सेंटर प्लेस में बैठ जाए तो मड़ी में भी सेंटर प्लेस जाके फिर घूम करो, फिर आके दक्षिणायन में ऐसा करो, उत्तरायण में ऐसा करो, तो तब अपन सबको एक जगह में लाया, सुख दुख दब इधर प्रेरणा भगवान को दे दिया, जो आप दिया वो ले ले, हम सरेंडर हो गए आपके सामने, है ना, मूर्ति के सामने सरेंडर हो गए, ये पूजा भी हो रही, यहाँ भी पूजा रहे, ये पूजा की तरह मन मड़ी में भी पूजा कर रहे, खेती में है, ये गुरु भी गुरु का स्थान में गुरु ही बोलेगा सब विद्यार्थियों को, एक ही पाठ बोलेगा, एक दूसरा को दूसरा नहीं बोलेगा, सबको एक ही बोलेगा, भगवान भी सबको एक ही तरह देखना है, बोलता सम्मान करो, रेस्पेक्ट मदर फादर, ये माँ बाप गुरु और भगवान, ये तीनों सीढ़ी चढ़ने के बाद ही भगवान का प्रेरणा मिलेगा आपको, ये तीन छोड़ के भगवान मालूम हो गए मेरा नहीं, वो नहीं होगा या तीनों का आशीर्वाद लिए तो ही भगवान का आशीर्वाद आएगा।
1: दैट्स गुड, दैट ये बहुत इंटरेस्टिंग बात कही आपने कि पूरे भारत को जोड़ने की जो कड़ी है, पूरे भारत को जोड़ने वाला जो सूत्र है वो कहीं ना कहीं आध्यात्म है, ईश्वर है, क्योंकि वही ईश्वर हर एक को जोड़ता है, हर एक को देता है, देने वाला भी वही है। इसलिए आपने बहुत खूबसूरती से कहा कि आपको भगवान के द्वारा ही सब में समानता नजर आती है, विच इज वेरी नाइस। लेकिन एक चीज यहाँ जो आपने बात कही कि आप अगर अपने मंदिर में परिक्रमा करते हैं, वही परिक्रमा अगर आप अपने खेती में भी करते हैं या अपने किसानी में भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भावना से जुड़ रहे हैं, आपका सम्मान बढ़ता है उसके प्रति जो काम आप कर रहे हैं। तो क्या आज आप देखते हैं किसानों में या किसानी जो कर रहे हैं उनमें ये भावना धीरे धीरे कम होती जा रही है? Have you observed it?
0: बिल्कुल नहीं, किसान नहीं, वैज्ञानिक भी भगवान को या कौन सी जगह में शुरू करना आखिरी करना नहीं देख रहे आजकल की दुनिया में, पुराने जमाने में देखते थे ये सब कुछ हो रहे थे अच्छा, मगर अब छोड़ दिया। जब धर्म को नहीं निभाते, धर्म क्या कहता, ये कृष्ण परमात्मा ने बोलेगा ना, जब युग युग में धर्म को, अगर ये अर्जुना
1: मैं आता हूँ बार बार, मैं युगो युगो में आकर के आपको मदद करता हूँ, ऐसा ईश्वर का वादा रहा है। जी
0: यही है ना, फिर अभी सभी लोग भूल गए, साइंस आने के बाद, वैज्ञानिक आने के बाद माँ बाप को भूल गए, ये लोग ओल्ड बोलते, फिर सूरज चांद बोल रहे क्या, धरती माता बोल रहे क्या
1: ये कितना अच्छा सवाल पूछा कि अगर आप अपने माँ बाप को बुजुर्ग मानते हैं, ओल्ड मानते हैं, तो क्या धरती सूर्य चांद ये हमारे माँ बाप या हमारे पालक पोषक नहीं है, तो क्या इनको भी हम ओल्ड कहते हैं? बहुत बढ़िया
0: है? गुरु गुरु तो संबोध किया तुमको पाठ्यांश, उन्हें भी पुराने बोलते हैं, अपडेटेड नहीं होता, अपडेटेड नहीं हुई है तो भी माँ बाप को ख्याल करके खाया पिया आप अच्छा रहा, आशीर्वाद लेके जाओ, वो कितना पूरा, एक डॉक्टर वैज्ञानिक होने के बाद ये लोग उनको देखने क्या क्या, वो ओल्ड डेट आउटडेटेड है, ये अगर समझ में नहीं आए, कुछ भी समझने में नहीं आए तो भी फिर उसका आशीर्वाद लेके कर खाया पिया, बल्कि घर में रखो, आजकल क्या माँ बाप को ओल्ड एज हाउस में, तेरा ये तरीका है क्या?
1: जी ये आपने बहुत कुछ गहरे प्रश्न पूछे हम सबको कि क्या माँ बाप कभी सच में बुजुर्ग या ओल्ड हो जाते हैं, ये जो ओल्ड शब्द है इसका मतलब ही होता है पुराना, तो क्या माँ बाप पुराने हो सकते हैं, क्या धरती चांद सितारे सूर्य ये पुराने हो सकते हैं? अगर हमें ये आज भी संभाल रहे हैं, चाहे धरती माँ है जो भोजन के द्वारा घर के द्वारा हर रीति से हमें संभालती है, हमारे माता पिता हैं जो अपने आशीर्वाद से, अपने गुड विशेष से, अपनी दुआओं से हमें आज भी पालना देते हैं, भले चाहे हम कितने भी आगे बढ़ जाएं, कितना भी पैसा कमाएं, कितने भी जीवन में उन्नति को पा जाएं, लेकिन

0: हर उन्नति के पीछे ये माता पिता प्रकृति परमात्मा इनका आशीर्वाद हमारे साथ होता है, जिसकी वजह से हम इन ऊंचाइयों को पाते हैं। चिंतला वेंकट रेड्डी जी ने आज के हमारे इस एपिसोड में हमें इस चीज को बहुत सिंपल तरीके से, बहुत सहज भाषा में समझाया कि व्यक्ति को कभी भी अपने आध्यात्मिक आधार को नहीं भूलना चाहिए। उसका आध्यात्मिक आधार जो है, हमें बार बार कहीं ना कहीं कोई ना कोई परिस्थिति से जूझने के लिए हमें समाधान देता रहेगा। समाधान ढूंढने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, अंदर ही वो समाधान छिपा हुआ है। और बार बार उसी समाधान में रमते हुए मन में ही शोध चलता है और उसी शोध से फिर समाधान निकल के आता है और उस समाधान को फिर पूरी दुनिया पूछती है, जानती है, प्रेरणा देती है, जैसे चिंतला वेंकट रेड्डी जी ने किया। और आज उनको पूरा देश जानता है, उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। जब पद्मश्री सम्मान से आपको सम्मानित किया गया था वेंकट जी, तब आपको कैसा लगा? मतलब डेफिनेटली आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन क्या रिएक्शन था, लोगों का रिएक्शन कैसा था?
1: देखिए, पद्मश्री से बढ़िया मेरे को राम मंदिर में जो आशीर्वाद आया तब बहुत मन पसंद आया। सबसे जिंदा ये जिंदगी में जब राम का आशीर्वाद आया, फिर सीता माँ जी के आने के बाद 4 साल के बाद राम का भी आ गए थे, फिर तो तब ये सब अपना माननीय प्रधानमंत्री भी ये पद्मश्री से सम्मानित और मन की बात में मेरा ख्याल में ये नया आविष्कार है मन की बात। क्यों बोलते, इतना प्रधानमंत्री को देखे, मैं सभी प्रधानमंत्री का देखे थे बचपन से, मगर ये प्रधानमंत्री जब भी मेरा बचपन में रेडियो माध्यम था, अभी भी है, अभी थोड़ा ज्यादा है, मगर उसका माध्यम से अरे कोने कोने देश के कोने कोने आदमी तक पहुंचना, उसका मन का बात लेना और सभी दुनिया को फैलाना, ये नया आविष्कार है प्रधानमंत्री का भी। अपन मन की बात क्यों कर रहे हैं, ये नया आविष्कार है, ये भी एक आत्मा भगवान की वो आशीर्वाद है उसका ऊपर।
0: जी बिल्कुल। और जैसे वो मन की बात करते हैं और उसमें कई बातें वो कह जाते हैं, ऐसे आज आपने भी हमारे साथ अपने मन की बात को शेयर किया और हमें ये भी बताया कि आपके लिए ईश्वर का आशीर्वाद किसी भी सम्मान से, किसी भी नाम और किसी भी प्रमाण पत्र से बढ़कर है।
1: एक बात, राम का आशीर्वाद मेरे को मंदिर में आया, फिर बाद में हमारा फार्म में आया, जब ओलावृष्टि हो रहा था, भरपूर फसल अंगूर था, वो सायंकाल में 4:30-5 बजे हो रहे इवनिंग, मैं वो बाग के अंदर से फार्म हाउस में आया घर में। वापस आने के बाद हमारा पिताजी फोटो था वहां पर, प्रेरणा करे तो एक खिड़की उत्तर की ओर है, एक पश्चिम की ओर है, पश्चिम की ओर सूरज वो 5 बजे हो रहे ना, बादलों का नीचे से सूरज भगवान आया। मैं दोनों हाथ जोड़ के आप रहने के बाद ये क्या हो रहा है, फिर प्रेरणा करे, फिर वहाँ बंद हो गए। फिर बंद होने के बाद मेरे का आपका पावर तो एक ही हो गया, हमें और क्या करना, क्या और अच्छा करना, और क्या भूल जा रहे वो समझाओ मेरे को। बोले तो एक एक ईयर, एक एक साल को तोड़ा तोड़ा 1986 से 1986 से अब तक 2023 तक देते ही एक एक साल एक बताते, ऐसा समझाते आया, अब तक पूरा थोड़ा पूरा आया, समझो 100% नहीं आया मगर 95% आया हूँ।
0: नहीं नहीं, आपके हिसाब से आप 95% है, हमारे हिसाब से तो आप 100% है, क्योंकि जो आप कर रहे हैं इससे केवल आप तक ही नहीं, ईश्वर का प्रेम, ईश्वर का आशीर्वाद हर एक किसान तक पहुंच रहा है, हमारे तक पहुंच रहा है। मैं समझता हूँ विटामिन डी और B12 ये उनका आशीर्वाद है जो आपने उन तक पहुँचाया है।

0: पहले सी आया, सबको ये कॉम्पोजिशन ऐसा लिखा है, जब लिखते वक्त पेटेंट करते वक्त कॉम्पोजिशन टू एनहांस न्यूट्रिएंट कंटेंट इन प्लांट्स, कोई भी न्यूट्रिएंट्स को कोई भी प्लांट में अपन उगा सकते, बढ़ा सकते, एनहांस बोले तो बढ़ाना, ऐसा लिख दिया ये सोच समझकर। और वो पहला पेटेंट वाला भी ए प्रोसेस टू इम्प्रूव न्यूट्रिएंट कंटेंट इन द कल्टीवेटेड लैंड, जब अपन कास करते हैं ना उसका जड़ 3 फीट तक ही जाएगा, 3 फीट गहराई, और 14 फीट से वो बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, वो अपना पैर का नीचे कितना खाना रहे तो मुंह नहीं जाता न हाथ नहीं जाता, वो ऐसा फायदा नहीं है ना।
1: बिल्कुल जी,
0: वो गहराई का मिट्टी ऊपर आ गई तो जड़ के पास आई तो अपने आप पोषक तत्व ले लेता, कोई सूखी मिट्टी है तो हो रहा। ये फल में मैं राम का नाम का याद किया, क्यों राम का नाम बहुत मीठा मीठा रहेगा, राम का नाम मीठा, वो मीठा कैसा रहेगा, ये सूखी मिट्टी में थोड़ा पानी डाले तो गर्मी में बारिश होता ना कितना खुशबू आता, वही मिट्टी को पौधे फल का पौधे को दिए तो मीठा फल नहीं आएगा। वो खुशबू वाला मिट्टी को फल का जड़ के पास, पेड़ के जड़ के पास दिए तो मीठा फल आएगा, वो कहते हैं अरे कितना मीठा, वो कितना मीठा किधर से आया, राम का नाम से आया, धूप धूप से सुखी हुआ ना।
1: मैंने देखा वेंकट जी आप जब बात करते हैं तो आप भावना, कविता, सोच और शोध हर एक चीज को मिक्स कर देते, एकदम बहुत अच्छा एक मिक्सचर क्रिएट करते, एक सैलेड तरह। लेकिन ये जो आपने बात कही कि राम का नाम जो है मीठा, जी जी
0: ये तो सच्चा है ना
1: जी,
0: ये तो गलत नहीं होता, साबित नहीं होता, सच है,
1: बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये आपका अनुभव है तो अनुभव तो हमेशा को एकदम सत्य होता है।
0: देखो अपना अरब कंट्री में 44-50 डिग्री तक वो खजूर आता, वो कितना मीठा रहता, वो धूप का वजह से ही आता, वो खजूर का मीठा कैसा रहेगा, बहुत मीठा रहेगा वो, बहुत कैसा है राम का काम।
1: तो वेंकट रेड्डी जी आपसे जब बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है हमारे किसानों को और जो भी हमारे साथी सुन रहे हैं उन तक ये संदेश पहुंच रहा है कि आस्था, विश्वास, ट्रस्ट ये बहुत जरूरी होता है, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हैं दोस्तों, ईश्वर पे आस्था, अपने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद पे आस्था और अपने कर्म पर आस्था अगर है तो आप तक सफलता जरूर पहुंचेगी। और जैसे कि चिंतला वेंकट रेड्डी जी कह रहे हैं कि कैसे ईश्वर की याद से उन्होंने अपनी खेती में पग पग पे समस्याओं का समाधान मिलता रहा है, समस्याओं से जूझने का रास्ता मिलता रहा है, ठीक ऐसे ही शाश्वत यौगिक खेती भी एक माध्यम है जहां पर किसानों को शाश्वत प्रक्रिया किसानी की क्या होती है और उसमें योग का प्रयोग कैसे किया जाता है ये सिखाया जाता है। मैं समझता हूँ जो रेडियो मधुबन के रेगुलर श्रोता हैं उनको पता ही होगा इसके बारे में कि कैसे तपोवन, जो कि हमारा शांतिवन कैंपस के बाजू में एक छोटा सा जगह है जहाँ पर यौगिक खेती की क्लासेस लगती हैं, अगर आप चाहते हैं तो आकर के कभी जुड़ करके उनका अनुभव कर सकते हैं और उसको वापस यूज करके देख सकते हैं कि वो कितने कारगर है। लेकिन कोई भी पद्धति तब कारगर होती है जब उसमें विश्वास होता है, निष्ठा होती है, प्यार होता है और लगन होता है। चिंतला जी आपसे तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा और जैसे आपने बताया कि सब कुछ ही हमको इंटरनेट पे भी अवेलेबल है और हम उसको कोशिश करेंगे कि चूंकि वो इंग्लिश में है उसको कभी हिंदी में उपलब्ध कराएं हमारे सभी साथियों के लिए। लेकिन उसके पहले आपसे हम एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलना चाहेंगे जिसमें एक एक शब्द में आपको जवाब देना होगा, क्या आप रेडी हैं?
0: बोलिए।
1: ओके, सबसे पहला सवाल, धरती क्या है?
0: धरती भूमाता है और इसमें मनुष्य मानव ही एक ही नहीं, सब पशु पक्षी पेड़ सब कुछ आ जाएगा, धरती माने समुन्दर।

0: नदी मनुष्य सब जीव अणु प्राणी कोटि धरती।
1: आपने कहा धरती माता है, भू माता है, और वो सिर्फ मनुष्य की माँ नहीं, हर प्राणी की माँ है। वेरी नाइस। वृक्ष क्या है?
0: वृक्ष माने जो पेड़, ये ऑक्सीजन आजकल की साइंस में ऑक्सीजन लेके अपन कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेके ऑक्सीजन दे रहे ना, अगर ये मनुष्य नहीं तो वृक्षों के लिए भी बारिश बरसता है। मनुष्य जब भूल जाते हैं, ये राम मंदिर में प्रेरणा करे तो वहाँ फॉरेस्ट ज्यादा था, फॉरेस्ट में खूब पानी बरसा, वहाँ पर आदमी नहीं।
1: ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि इंसान सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, वो ये नहीं सोचता कि बारिश पेड़ों के लिए भी हो रही है, बारिश सिर्फ हमारे लिए नहीं। तो वृक्ष जो है वो बारिश का एक कारण भी है। बिल्कुल। तीसरा सवाल,
0: अपन को खाना देना का वृक्ष है ना, ये पेड़ है ना
1: जी है? तो अन्न देता, वर्षा दाता, बहुत कुछ है वृक्ष। तीसरा सवाल आपसे,
0: अब आदमी नहीं है तो भी वृक्ष रहे तो भी ये सब कुछ पाया जाता है।
1: जी जी बिल्कुल। तीसरा सवाल आपसे, सेवा क्या है?
0: सेवा माने कि मन का अपना, मेरा मन से हम खिलाना बोलते, मेरा मन से खिलाए तो वो बहुत पसंद, वो पकाना वाला भी पकाते पसंद का अच्छा खाना पकाते, तो मन से देना, जो मन से दिए सो वो पकाने वाला अच्छा पका के फिर उसका टेस्ट भी स्वाद भी बहुत अच्छा रहेगा, ये है शायद के लिए
1: सेवा। तो सेवा मतलब मन से देना, चाहे आप मन से समय दे रहे हैं, चाहे आप मन से कुछ काम कर रहे हैं किसी के लिए, मन से जब आप देते हैं तो वो सेवा है। चौथा सवाल आपके लिए, सुख क्या है?
0: सुख ये टेम्पररी है, इसके साथ दुख भी रहेगा, सुख एक ही नहीं, इसके साथ दुख भी रहेगा, मगर सुख में दुख में दोनों को एक ही तरह से देखने से आदमी ये बेकार नहीं होता, वो संतुष्ट होता।
1: वेरी नाइस।
0: बहुत बढ़िया। एक ही जोड़ना चढ़ा रेस्ट के लिए
1: चढ़ा, तो आपके लिए, आपके लिए सुख मतलब संतुष्टता, जहाँ पर आप एक समान है, जहाँ स्थिरता है, जहाँ स्टेबिलिटी है। वही नहीं। पांचवा सवाल, भारत क्या है आपके लिए?
0: भारत एक महान देश है, ऐसा देश कि दुनिया के अंदर ये मूर्तियों को, ये शिव पार्वती सीता राम को मंदिर में बिठा के प्रार्थना करते, यही है माता पिता को ये बिठा के ये परिक्रमणा करते हैं ना, इधर राइट को पिताजी रहता, लेफ्ट को माताजी रहता, परिक्रमण ऐसा डाइन आता, वो पिताजी पहले आता बाद में माता आता है ना, जब पिताजी के पास एक बीज बोनी करके माताजी को लाओ, जैसा धरती माता सूरज के ऐसा लाती
1: है, चारों तरफ परिक्रमा लगाती है,
0: यही प्रक्रमण है।
1: नहीं, आपने पूरा जो ये प्रोसेस है किसानी का उसको अपने परिवार की तरह कर दिया।
0: ये दुनिया में ये माता पिता, ये ऐसा शिव पार्वती, ऐसा सीताराम को कोई भी, मैं किसी मस्जिद में ना तो चर्च में नहीं देखा, ये अपना भारत में ही देख रहा, भारत का मंदिर है तो उसमें ही देखते हैं अपन, इससे बढ़िया क्या होना भारत को।
1: बहुत सुंदर। भारत में भगवान को भी घर मिला है, भारत में भगवान को भी माता और पिता के रूप में एक दर्जा दिया गया है, और भारत में ही हम कह सकते हैं कि भारत में भगवान के पास घर भी है और परिवार भी है।
0: ऐसा परिक्रमणा भारत में ही है, ये मंदिर में ही है, दूसरी जगह नहीं रहेगा परिक्रमणा
1: जी।
0: मैं एक अमृतसर में भी देखा, वहाँ भी परिक्रमणा देखा, मगर ऐसा सीता माता, ऐसा शिव पार्वती ऐसा नहीं देखा।
1: जी तो दोस्तों, आपने सुना जैसे चिंतला वेंकट रेड्डी जी ने बहुत हंसते हंसते कह दिया कि भाई भारत वो जगह है जहाँ भगवान का घर भी है और भगवान

0: परिवार हम सब सुन रहे हैं बैठकर के उनके बारे में। चिंतला जी, लास्ट क्वेश्चन आपसे, हु इज चिंतला वेंकट रेड्डी? चिंतला वेंकट रेड्डी कौन है?
1: मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, ये जन्म दिया ये धरती में साधारण व्यक्ति का रूप में धर्म ले। आप पहचाना, मैं कौन हूँ आप पहचाना, मैं कैसा बोलूं?
0: बहुत अच्छा सवाल कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, मेरी साधारणता ही मेरी महानता है, लेकिन मेरी महानता आपने पहचानी, ऐसा चिंतला वेंकट रेड्डी जी का कहना है। लेकिन साथियों, हम सब जानते हैं और दिल से मानते हैं कि चिंतला वेंकट रेड्डी परमात्मा का वो हथियार कहें या हाथ कहें, राइट हैंड है, जिन्होंने हम सबके सेहत के लिए, धरती माँ के सेहत के लिए अपने जीवन को समर्पित किया हुआ है। तो साथियों, चिंतला वेंकट रेड्डी जी का ये मैसेज था कि आप कुछ भी किसानी करने के पूर्व पहले प्रकृति को समझे जरूर, थोड़ा समय दे, थोड़ा समझे, ऋतु चक्र को समझे, दिन में सूर्य के चक्र को समझे, और उस समझ के आधार पर अपने पूर्वजों के द्वारा जो बहुमूल्य ज्ञान हमारे पास रखा है, उस धरोहर को इस्तेमाल करते हुए किसानी करेंगे तो आपको फायदा तो होगा ही, लेकिन साथ साथ धरती का नुकसान भी नहीं होगा। अंधाधुन खेती आज धरती के लिए एक अभिशाप बन चुका है। आइए उसको हम समझ करके करें ताकि धरती के साथ कोई बुरा बर्ताव न हो। यशस्वी भारत कार्यक्रम में सुन रहे थे आप साथियों, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में थे श्री चिंतला वेंकट रेड्डी जी, जिन्हें भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, जिन्होंने कई अपने बेहतरीन शोध के द्वारा उर्वरक शक्ति धरती में बढ़ाने के लिए, साथ ही पेड़ पौधों के द्वारा या उपज के द्वारा मनुष्यों तक विटामिन डी, B12 जैसे बहुमूल्य पोषक तत्व पहुंचाने के लिए कई अच्छे अच्छे शोध किए, जिनका डंका न केवल भारत में लेकिन पूरे देश विदेश में भी बजता है। कई कहानियां हैं इनके बारे में जो आप पता लगा सकते हैं, इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं, लेकिन आज ये हमारा सौभाग्य था कि आज उन्होंने समय दिया और 90.4 FM रेडियो मधुबन के स्टूडियो में वो जुड़े हमारे साथ। यशस्वी भारत कार्यक्रम यूं ही आपके बीच में इस प्रकार के बहुत ही हमारे भारत के यशस्वी रत्नों को लेकर के आता रहेगा। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, सुनते रहिएगा और मुस्कुराते रहिएगा रेडियो मधुबन। जय हिंद, जय भारत।

बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं, अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं।

0: बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं, हर बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं
1: नहीं, नहीं।

0: क्या होना, क्यों सताते हो, होगा हो।
1: कंप्यूटर से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। अगर देखने का समय नहीं है तो सुन ही लीजिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: and she said ke my parents go through a lot of pain jab bhi mujhse koi galti hoti hai, ke they feel ke unki upbringing achhi nahi hai, but ye bhi hai hurt, lekin usne kaha ke they go through so much pain ke now I feel like committing suicide. Ab suicide tak aapki thought aa gayi hai, and we just asked her one thing, have you talked to your parents about this?
1: She said no.
0: This is a sign ke our communication is, मतलब मैं सुसाइड करने तक का सोच लिया
1: क्योंकि मेरे पेरेंट्स हर्ट हो रहे हैं
0: लेकिन
1: मेरी वजह से,
0: लेकिन आई हैव नॉट गॉन एंड टॉक.
1: दिस इज व्हाट डिस्कनेक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट. एक्चुअली मेरे रॉन्ग टेक खड़े हो गए बिकॉज दिस इज व्हाट वी आर ऑल गोइंग थ्रू.
0: एंड अंदर ही अंदर उसके साथ हम जूझ रहे हैं, हम उसको ठीक भी करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा क्या करना है, लेकिन वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट, वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट बिकॉज वी हैव क्रिएटेड सो मच पेन. सो दैट्स व्हाई अगेन इट विल कम बैक टू आवर बॉटम लाइन. जब तक हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे वी विल नॉट बी एबल टू हैव दैट गुड रिलेशनशिप. तो पास्ट का जो हर्ट है वो भी हमारे एनर्जी फ्लो को ब्लॉक करता है. दूसरा है प्रेजेंट. प्रेजेंट बिहेवियर आपका कैसा है? एज आई एम ग्रोइंग अप एज अ चाइल्ड आई सी माई पेरेंट्स एंड टीचर्स बींग वेरी जजमेंटल. यू नो मैं सीखती हूँ कि अच्छा ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ठीक नहीं है, ये गलत है. वेरी जजमेंटल. हम बहुत इजीली औरों के प्रति अपनी जजमेंट्स पास करते हैं. और जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स भी बनती जा रही हैं. आई लाइक
1: और क्लियर होती जा रही हैं हमारी.
0: वेरी क्लियर. आई एम वेरी क्लियर मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नहीं पसंद है. एक तरफ है जजमेंट्स देना और दूसरी तरफ है मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है. दोनों चीजें ठीक है, लेकिन दोनों चीजें जब मिक्स हो जाते हैं, माई लाइक्स एंड डिसलाइक्स गेट मिक्स्ड विद जजमेंटल. तो जो जो चीजें मैं डिसलाइक करती हूँ उसके प्रति मैं बहुत इजिली एक जजमेंट दे देती हूँ कि ये है ही गलत.
1: खराब.
0: यू नो लाइक फॉर एग्जाम्पल यू आर वेयरिंग, इफ यू आर वेयरिंग ब्लैक कलर, आई डोंट लाइक ब्लैक कलर. लेट्स से इट्स ओके, आई डोंट लाइक ब्लैक कलर. बट मैंने अपने डिसलाइक को अगर जजमेंटल बना दिया तो मैंने कहा ब्लैक कलर ही अच्छा
1: खराब है.
0: तब वो एक अलग पर्सपेक्टिव ले लेती है.
1: यस, यू नो द टू डिफरेंट थिंग्स. आई डोंट लाइक ब्लैक कलर बट ब्लैक कलर ही खराब है.
0: दोनों में बहुत अंतर है. दोनों में बहुत अंतर है. लेकिन हम जाकर
1: आई डोंट लाइक योर फ्रेंड बट योर फ्रेंड इज बैड.
0: यस.
1: ओ यस.
0: See, they're two different things. Each one will have their likes and dislikes. That's a part of the journey. लेकिन उसके ऊपर जब हम अपनी नेगेटिविटी प्रोजेक्ट करके उस पर जजमेंटल हो जाते हैं, ये है ही खराब. जैसे आपके अंदर कोई संस्कार हो सकता है जो मुझे पसंद नहीं, लेकिन अगर मैंने कह दिया ये है ही खराब, तो मैंने क्या कर दिया, उतनी अपनी एक डिसलाइक की वजह से मैंने जजमेंट पास कर दी. एंड नाउ वंस आई हैव लेबल्ड यू लाइक दिस, now which energy will flow.
1: Yeah, this will be total disconnect. Yeah. You will not right. accept.
0: तो मैं बहुत easily judgmental होके लोगों के प्रति labels लगा देती हूँ. ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही है. और जैसे ही हमने एक negativity का label अगर किसी के प्रति लगाया and हम justified feel करते हैं, मेरा label right है, वो तो है ही ऐसे, एनर्जी कौन सी फ्लो करेगी?
1: कम्प्लीट डिस्कनेक्ट की.
0: अब जब भी हम मिलेंगे हम उनको उस लेबल के थ्रू देखेंगे. वो जो है जैसे हैं वो नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि मैंने लेबल कर दिया, मैंने जजमेंट कर दी कि आप तो है ही. देर आर सो मेनी लेबल्स. ये तो है ही मैनिपुलेटिव, ये तो है ही श्रूड, ये तो है ही चलाक, ये तो है ही धोखे. यू नो सो मेनी थिंग्स, सो मेनी थिंग्स ये जजमेंट्स पास कर दी.
1: और हम अपनी पूरी जिंदगी उस पर ओ यस यू नो हम अगर और अपने अपने क्लोज रिश्तों में भी, इनफैक्ट हम अपने क्लोज रिश्तों में जितने जजमेंटल होते हैं ना उतने शायद बाहर कहीं नहीं होते हैं. और उनके साथ हम जीवन भी जी रहे हैं.
0: लेकिन जितना जितना हम जजमेंट्स पास करेंगे उतना एनर्जी फ्लो करना बंद हो जाएगी. देयर विल बी अ ब्लॉक नाउ बिकॉज मैंने जजमेंट ही पास कर दी. नाउ आई विल सी यू थ्रू दैट जजमेंट. तो क्वालिटी ऑफ एनर्जी कौन सी होगी? फ्री फ्लोइंग तो होगी ही नहीं, वो ब्लॉक हो जाएगी. तो एक है पास्ट हर्ट, एक है प्रेजेंट आपका कोई बिहेवियर.
1: और इसमें बहुत आई थिंक इट्स लाइक अमेजिंगली क्लियर नाउ कि स्पेशली अगर हम देखें सिस्टर इन लॉज, मदर इन लॉज और ये जो रिश्ते थे मामी चाची, ये जो सारे रिश्ते वो सारे ही क्लोज रिलेशन है. मुझे उनकी कोई एक चीज अच्छी नहीं लगी, मतलब कुछ एक बिहेवियर अच्छा नहीं लगा,
0: कोई ना कोई संस्कार
1: नहीं अच्छा लगा.

0: लेकिन मैंने कहा कि नहीं वो वही है,
1: ये हो गया।
0: हाँ।
1: तो हमने अपने डिसलाइक पर एक जजमेंट पास
0: और कर। फिर मैं अच्छा देखने को तैयार ही नहीं हूँ, मैं अपनी आंखों से वो पत्ती हटाना ही नहीं चाहती बिकॉज आई फील सो स्ट्रांगली अबाउट माई डिसलाइक, यू नो दैट माई डिसलाइक इज राइट,
1: इज राइट, इट्स राइट, इट्स जस्टिफाइड, ये लेबल करेक्ट है जो मैंने लगाया है आपके,
0: लेकिन उसमें कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, कोई दूसरा अच्छा दिखाना भी चाहेगा, आई डोंट वॉन्ट हियर दैट।
1: अब एनर्जी कैसे फ्लो करे?
0: ओ यस, ब्लॉक, टोटल ब्लॉक।
1: So we're talking about relationships, matlab free flowing energy. So that will not happen. So one is past hurt, dusra hai vartaman samay aapka vyavahar, aur teesra hai future threat. Aapse mujhe kuch ek feeling aati hai of insecurity. To kya hota, main ek barrier create kar leti hu, main pehle hi jaise ek deewar create kar leti hu taki main aapko chance hi nahi do
0: ki aap mere nazdeek aaoge.
1: Yes, so I will either overpower you or I will withdraw from you. कई बार तो हम डिफेंसिव मैकेनिज्म पर अग्रेसिव भी हो जाते हैं कि मुझे अपने आप को बचाने के लिए मैं आपके ऊपर ही गुस्सा करने लग जाती हूँ. दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ थ्रेट कि कहीं ना कहीं आप मेरी पोजिशन या मेरी जो पावर या पर्सनैलिटी है इसको कहीं आप ले ना जाएं. दिस कैन हैपन इन एन ऑफिस, इट हैपन्स वेरी ऑफन इन एन ऑफिस, it happens in a mother and daughter relationship.
0: Yes.
1: Yeah, it happens very often there ki ek future threat hai ki kahin na kahin ye hi na pure ghar ke upar ya pure parivar ke upar ya mere bete ke upar, you know, whatever. To wo jab pehle se hi humne ek jo hua bhi nahi hai abhi kuch aisa hua hi nahi hai lekin maine already wo kahani पहले से ही क्रिएट कर दी, और जैसी कहानी फिर क्रिएट करेंगे तो एनर्जी फ्लो कैसा होगा?
0: वो होने लगते हैं फिर चीजें,
1: क्योंकि फिर थॉट्स लीड टू डेस्टिनी.
0: इवन रिलेशनशिप में, मतलब इवन हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में भी, अगर वाइफ पहले से ही सोच ले कि मैंने ये काम किया है या ओके मैंने ये साड़ी खरीद ली है बिना अपने हस्बैंड को बताए हुए, वो आएंगे और वो कुछ कुछ कुछ कुछ बोलेंगे एंड इनवेरिएबली इट स्टार्ट्स हैपनिंग कि वो वैसा ही बोलते हैं.
1: लेकिन अभी तो उन्होंने ऐसा बोला ना, कई बार आप देखो क्योंकि मैं पहले से ही वो आइडिया कंसीव कर लेती हूँ कि दूसरा ऐसा बोलेगा, तो उसके बोलने से पहले ही मैं कुछ और जोर जोर से बोल देती हूँ ताकि मैं आपको बोलने का चांस ही नहीं दूँ, क्योंकि मैंने पहले से सोच लिया था कि आप ऐसा कुछ बोलेंगे. सो दिस वॉज समथिंग आई कॉन्सेप्चुलाइज पहले से ही, और मैं डर गई और इसलिए मैं पहले से ही बोल. एक बच्चे के साथ ऐसा होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, अगर उनसे कुछ टूट गया या कुछ, अब उनको पता है एक फ्यूचर उन्होंने ऑलरेडी कंसीव कर लिया कि मुझे डांट पड़ने वाली है, डिफेंस मैकेनिज्म वो पहले से ही जोर से रोते
0: लग जाते.
1: नाउ दिस इज अ संस्कार जो हमारे साथ बिल्डअप होता है, और हम बड़े होकर भी सेम चीज करते हैं कि आप मुझे क्या बोलोगे, मैं उसे पहले ही इतना जोर से बोलने लग जाती हूँ कि आपके पास बोलने का कोई चांस ही नहीं रहता. तो ये फिर भी हम एक बैरियर बना लेते हैं कि इनसे मुझे सिक्योरिटी नहीं है. सो अगेन आई क्रिएट अ बैरियर बिकॉज ऑफ विच द फ्लो ऑफ एनर्जी डजंट टेक प्लेस. सो ये तीन फैक्टर्स समय को लेकर होते, पास्ट हर्ट कोई बात पकड़ी हुई है, वर्तमान समय आपका व्यवहार, या भविष्य में आपसे कोई इनसिक्योरिटी. इन तीन कारणों के वजह से हमारा जो एनर्जी ब्लॉकेज है वो हो जाता एंड रिलेशनशिप इज नॉट फ्री फ्लोइंग.
0: बट एक्चुअली हमारा जो सवाल है वो यही है कि इनको बैरियर्स को तोड़ें कैसे.
1: राइट, फर्स्ट थिंग बैरियर्स को पहचान लें, और फिर सेकेंडली समझ लें कि बैरियर क्रिएट किसने किया, मैंने क्रिएट किया. फिर थर्ड स्टेज ऑटोमेटिकली आ जाएगी कि बैरियर तोड़ना किसने है, मैंने ही तोड़ना है.
0: वंडरफुल, इनफैक्ट दैट्स अ लॉ, दिस इज प्रोसेस
1: एंड वी विल सी देन हाउ टू डू दैट
0: बिकॉज इट्स अ प्रोसेस. बट फर्स्ट थिंग इज वी हैव आइडेंटिफाइड, हमने वो आइडेंटिफाई किए बैरियर्स कि हम जो रिश्तों में डिस्कनेक्ट फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो कमी, वो ऐसा लगता है कि खालीपन है, वो सब कुछ मेरे द्वारा ही क्रिएट किया हुआ है. और जैसे कि आपने कहा कि पास्ट हर्ट को लेके या प्रेजेंट सिचुएशंस में लेकर कि कौन किस पर हावी होगा, और फ्यूचर कि मुझ पे कोई हावी हो जाए उससे पहले ही मैं हावी हो जाता हूं. तो दैट इज एक्चुअली इट्स अमेजिंग, यू नो, हमारा माइंड कैसे वर्क कर रहा होता है, और हम अपने आप को कैसे, अब सपोजिटली हम अपने आप को सिक्योर कर रहे होते हैं,
1: लेकिन एक्चुअली हम कितना हर्ट क्रिएट कर रहे हैं,
0: और हम अपने आप को हर्ट से सिक्योर कर रहे होते हैं
1: लेकिन हर्ट क्रिएट कर रहे होते
0: हैं, पहले ही कर लेते हैं हम वो क्रिएट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी दीज बैरियर्स. थैंक यू सो मच सिस्टर शिवानी
1: शांति.
0: अब अगर हमारे

तो ये भी एक बैरियर हो सकता है जो मेरे रिश्ते में रुकावट डाल रहा है। तो इन बैरियर्स को आइडेंटिफाई करना है, सिर्फ आज का काम इतना है। आगे हम बात करते रहेंगे कि इन बैरियर्स को तोड़ना कैसा है, ये जो हमारे आगे दीवार आ गई है उसे कैसे तोड़ना है। कोई सवाल, और हम कहेंगे कि आप हमारे अपने अनुभव भी जरूर हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि आप ही के सवाल, आप ही के अनुभव इस प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं। तो सेल्फ मैनेजमेंट में बहुत बड़ी बात है रिश्ते, तो आपका हम स्वागत करेंगे। आप हमें फोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0999-344-555, 0999-344-666, 0987-366-555, 0999-744-555। हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org। अब एक मिनट ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही, लेकिन आपसे हम यही गुजारिश करेंगे जो आज बात हमें समझ में आई है उसको अपने साथ रिवाइंड करें, रिव्यू करें, उन बैरियर्स को तलाशें और उनको आइडेंटिफाई करके रखें। तोड़ना कैसे है ये हम आगे प्रयास करेंगे। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे जब किसी ने इस तरह से गलती की है, तब वो सच बोलेंगे। हम झूठ तभी बोलते हैं जब हमें सच बोलने का डर है, और डर ये है कि सच बोलेंगे तो कोई एक्शन लिया जाएगा। इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मैं आपको सच बता दूंगी। लेकिन इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको सच बताने के बाद मुझे डांट पड़ेगी, तो इजियर चॉइस फॉर मी इज झूठ बोलो और निकल जाओ। सो इट्स ऑल अबाउट आई नो व्हाट योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी। ट्रस्ट आ जाता है ना उसमें, आपको पता है कि दूसरा आपको समझेगा कि आपने जो गलती की, नेवर माइंड, ही विल एक्सेप्ट यू। आप सच बोलेंगे, देर इज नो रीजन, कोई झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि खुद को बहुत गिल्टी लगता है उसके बाद।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8।

मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

नटखट बंटी। पात्र परिचय। पापा के रूप में सैंडी, मम्मी के रूप में कृष्णा, बंटी के रूप में आदित्य और नरेटर शशिकांत। बंटी के

0: और घर के फिजूल खर्चों से बहुत परेशान थे।
1: बिजली का बिल, फोन का बिल, केबल का बिल, पेपर का बिल, ओ मेरी तो पूरी तनख्वाह इन बिलों में चली जाती है।
2: हाँ पापा, और मेरी स्कूल की फीस में भी तो काफी खर्चा होता है।
1: हाँ बेटा, कल्चर एक्टिविटी चार्ज, स्कूल यूनिफॉर्म, स्पोर्ट्स, ना जाने क्या क्या चार्ज देने पड़ते हैं।
2: पापा, एक आइडिया है खर्च बचाने का।
1: वो क्या है?
2: पापा, मैं अपने स्कूल से नाम कटवा लेता हूँ, काफी खर्च बच जाएगा।
1: चुप रहो शरारती बंटी, जब देखो तो पढ़ाई से बचने का तरकीब सोचते रहते हो।
2: सॉरी पापा, मैं कोई दूसरी तरकीब सोचता हूँ खर्च कम करने की।
1: ये हुई ना बात, खर्च बचाना ही है तो फिजूल खर्च बचाओ, ना कि जरूर की चीजों की कटौती करके स्कूल जाना ही छोड़ दो।
2: पापा, ये फिजूल खर्च क्या होता है?
1: फिजूल खर्च मतलब बेवजह के खर्च, जैसे बगैर जरूरत के सामान खरीदना, टीवी फालतू चलाना, थोड़ी थोड़ी दूर के लिए गाड़ी की सवारी और मुफ्त में पेट्रोल को बेकार जलाना।
2: पापा बस, मैं समझ गया, आज से इस घर में फिजूल खर्च बंद।
3: वाह बंटी, बहुत समझदार हो गए हो। मैंने गलती से गैस खुला छोड़ दिया था, तुमने फौरन बंद कर दिया।
2: हाँ मम्मी, आखिर फिजूल खर्च बचाना है।
1: बंटी, जाओ गोपाल के साथ मेरे स्कूटर पर और लॉटरी से मेरे कपड़े प्रेस करा लाओ।
2: नहीं पापा, स्कूटर से पेट्रोल जलेगा और लॉन्ड्री में प्रेस कराने से खर्च बढ़ेगा, मैं घर पर ही आपके कपड़े प्रेस कर देता हूँ।
0: पापा ऑफिस जाते वक्त अपना नया शर्ट पहन रहे थे, तभी चीख उठे।
1: ओ नो, ये मेरे नए शर्ट रोशनदार कैसे बन गए?
2: सॉरी पापा, प्रेस करते वक्त प्रेस जड़ा ज्यादा गर्म हो गई थी।
1: भाई बंटी, खर्च बचाने की तुम चिंता ना करो, वो तुम्हारा काम नहीं है, इस तरह तो तुम और भी मुसीबत बढ़ा दोगे।
3: बंटी जरा देख कर आना, काम वाली बाई क्यों नहीं आ रही है, कहीं बीमार तो नहीं है?
2: नहीं मम्मी, बाई को तो मैंने मना किया है, वो क्या है कि फिजूल खर्च बचाना है।
3: ओ नो, फिजूल खर्चे के चक्कर में ये लड़का जीना ही हराम कर देगा। बंटी आज से तुम खुद की फिजूल खर्चों पर कंट्रोल करो, ना कि घर बार को डिस्टर्ब करो।
0: रात को बंटी महाराज अंधेरे में बैठकर टीवी का प्रोग्राम देख रहे थे।
3: अरे शरारती बंटी, क्या तुमने होमवर्क कर लिया और ये अंधेरे करके टीवी क्यों देख रहे हो?
2: ओ मम्मी, आपने ही तो कहा था कि खुद की फिजूल खर्चे पर कंट्रोल करो, इसलिए अंधेरा करके बिजली का बिल बचा रहा हूँ।
0: मम्मी ने समझाया कि अंधेरे में टीवी देखने से आंखें खराब होती है, और इस तरह बंटी को फिजूल खर्च क्या है ये समझाने में मम्मी पापा को काफी मेहनत लगी।
4: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
5: छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई एनर्जी लाइक दिस। माई एनर्जी इज फॉर अ पर्पज ऑफ हीलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। एंड जब हम उस इंटेंशन से अपनी एनर्जी को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद। हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, लेकिन हिले बिना। इट्स ओनली अ लाइफस्टाइल चेंज, दीज आर लाइफस्टाइल चेंजेस। एनर्जी लाइफ है, ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है।
4: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां।

भारत में राजनीतिक उथल पुथल कुछ अलग रंग जमाए हुए थी। अधिकांश बड़े राजा और जमींदार अंग्रेजों से मैत्री बनाए हुए थे। अंग्रेजों को अपने दरबार में बड़े पद भी दे रखे थे। ये सैन्य सलाहकार, सेनापति और विशेष सलाहकार भी थे। अपने खर्चे पूरा करने के लिए राजाओं द्वारा गरीब जनता पर भारी कर लगाए जाते थे। गांवों से संपत्ति लूटी जाती थी या फिर उनसे वसूली जाती थी। इस मनमानी के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता था। अंग्रेज सरकार अपने खर्चे पूरे करने, युद्ध के लिए पैसा जुटाने का काम इन राजाओं को धमकाकर पूरा करती थी। युद्ध के लिए कर्ज भी राजाओं और नवाबों से लिया जाता था। पर इस भीषण संतरास के बीच ऐसे अनेक उदाहरण सामने आए कि समाज के संपन्न वर्ग के लोगों ने, छोटे छोटे जमींदारों ने अपनी सेना और धन खुशी खुशी 1857 के समय युद्धरत क्रांतिकारी सेना नायकों को सौंपा। ऐसे ही एक भामा शाह थे, दिल्ली के रामजी दास गुड़वाला, और उनसे भी आगे ग्वालियर के अमरचंद बाठिया। अमरचंद बाठिया के पूर्वज बाठिया गोत्र के आदि पुरुष श्री जगदेव पवार ने जैनाचार्य भावदेव सूरी से प्रबोध पाकर जैन धर्म अंगीकार किया था। कुछ इतिहासकार विक्रम की 12वीं शताब्दी में रणथंभौर के राजा लाल सिंह पवार के पुत्रों द्वारा जैनाचार्य विजय वल्लभ सूरी से प्रतिबोध पाकर जैन धर्म अंगीकार कर लेने के उनके ज्येष्ठ पुत्र बंट से बाठिया गोत्र की उत्पत्ति मानते हैं। कुछ इतिहासकार माधव देव द्वारा दानवीरता की अनुकरणीय परंपरा का श्री गणेश करने के कारण बाटिया अर्थात बाठिया उपनाम की प्रसिद्धि मानते हैं। स्पष्ट है कि अमरचंद जी को दानवीरता का गुण जन्मजात ही मिला था। अमरचंद बाठिया का परिवार व्यापार हेतु सन 1835 में फलौदी में भूमि से प्रकट हुई चिंतामणि पार्श्वनाथ की प्रतिमा के चल समारोह में अनेक संघपतियों के परिवार के साथ बीकानेर से ग्वालियर आया और यहीं बस गया। प्रतिमा की प्रतिष्ठा ग्वालियर के हृदय स्थल सर्राफा बाजार के शिखरबंद जिनालय में संवत 1893 में हुई थी। अमरचंद के दादा का नाम खुशाल चंद और पिता का नाम अबीर चंद था। अमरचंद अपने 7 भाइयों में सबसे छोटे थे। अमरचंद बाठिया में धर्मनिष्ठा, दानशीलता, सेवा भावना, ईमानदारी, कर्तव्य परायणता आदि गुण जन्मजात थे। यही कारण था कि सिंधिया राज्य के पोद्दार श्री वृद्धिचंद संचेती ने अमरचंद को ग्वालियर राज्य के प्रधान राजकोष गंगाजली के कोषालय पर सदर मुनीम बनवा दिया। उस समय सिंधिया नरेश मोती वाले राजा के नाम से जाने जाते थे। गंगाजली में अटूट धन संचय था, जिसका अनुमान स्वयं सिंधिया नरेशों को भी नहीं था। विपुल धनराशि से भरे इस खजाने पर 24 घंटे सशस्त्र पुलिस बल का कड़ा पहरा रहा करता था। कहा जाता है कि उन दिनों पीढ़ियों से ये आन चली आ रही थी कि न तो कोई राजा अपने राजकोष की संपत्ति को देख ही सकता था और न ही उसमें से कुछ निकाल ही सकता था। इसलिए गंगाजली की सदैव वृद्धि होती रहती थी। इस अकूत धन संचय को कोषाध्यक्ष के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता था। अमरचंद बाठिया इस खजाने के रक्षक ही नहीं, ज्ञाता भी थे। वे चाहते तो अपने लिए मनचाही रत्न राशियां निकालकर कभी भी धन कुबेर बन सकते थे। पर बाठिया जी तो धर्म के पक्के अनुयायी थे, जो राजकोष का एक भी पैसा अपने उपयोग में लाना घोर पाप समझते थे। ईमान और कर्तव्य ही उनके लिए सर्वोपरि था।

बाठिया जी की दैनिक चर्या बड़ी ही नियमित थी। प्रातः उठकर जिनेन्द्र देव की अर्चना और यदि कोई मुनि या साधक विराजमान हो तो उनके उपदेश सुनना, समय पर कोषालय जाना, सूर्यास्त से पूर्व भोजन और रात्रि 9 बजे तक शयन उनके यांत्रिक जीवन के अंग थे। गंगा जली के खजांची पद को सुशोभित करने के कारण बाठिया जी का आत्मीय परिचय बड़े बड़े राज्याधिकारियों से हो जाना स्वाभाविक ही था। सेना के अनेक अधिकारियों का आवागमन कोषालय में प्रायः होता रहता था। बाठिया जी के सरल स्वभाव और सादगी ने सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। चर्चा प्रचर्चा में अंग्रेजों द्वारा भारतवासियों पर किए जा रहे अत्याचारों की भी चर्चा अक्सर होती थी। एक दिन एक सेनाधिकारी ने कहा, आपको भी मां को दासता से मुक्त कराने के लिए अब मुझे लगता है कि हथियार उठा लेना चाहिए। बाठिया जी ने कहा, भाई अपनी शारीरिक विषमताओं के कारण मैं हथियार तो नहीं उठा सकता, पर समय आने पर ऐसा काम करूंगा जिससे क्रांति के पुजारियों को शक्ति मिलेगी और उनके हौसले बुलंद हो जाएंगे। जैसा कि सबको मालूम ही है कि अंग्रेजों के विरुद्ध जहां कहीं भी युद्ध छिड़ता था वे भारतीय सैनिकों को ही सबसे पहले युद्ध की आग में झोंक देते थे। एक वयोवृद्ध सन्यासी ने अमरचंद बाठिया से चर्चा में 1857 के पूर्व की एक घटना सुनाते हुए कहा, 700 बंगाली सैनिकों की एक रेजिमेंट को अंग्रेज अफसरों ने इसलिए गोलियों से भून दिया था कि उन्होंने बैलों पर चढ़कर जाने से मना कर दिया था। ज्ञातव्य है कि भारतीय संस्कृति में गाय हमारी माता है और उसके पुत्र बैल पर चढ़कर जाना पाप माना जाता है। सैनिकों ने इसी कारण बैल की पीठ पर बैठने से मना कर दिया था कि गाय बैल की चर्बी लगे कारतूस को मुंह से खोलने के लिए मना करने पर हजारों निरापद सैनिकों को अंग्रेज अधिकारियों द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाता था। ऐसी ही अनेक घटनाओं को सुन सुनकर बाठिया जी का हृदय भी देश की आजादी के लिए तड़पने लगा था। उधर मुनिराज के प्रवचन में भी उन्होंने एक दिन सुना कि जो दूसरों के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दें उसी का जन्म सार्थक है, वो मरणोपरांत अमर रह सकता है। ये सुनकर बाठिया जी का निश्चय बिल्कुल दृढ़ हो गया। उन्होंने तय किया कि मातृभूमि की रक्षा के लिए मुझे जो भी समर्पित करना पड़े मैं करूंगा, और ये अवसर शीघ्र ही सामने भी आ गया।

1857 की क्रांति के समय महारानी लक्ष्मीबाई, उनके सेना नायक राव साहेब और तात्या टोपे आदि क्रांतिवीर ग्वालियर के रणक्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध डटे हुए थे, परंतु रानी लक्ष्मीबाई के सैनिकों और ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों को कई महीने से वेतन नहीं मिला था और न ही राशन पानी का समुचित प्रबंध ही हो सका था। तब बांटिया जी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए क्रांतिकारियों की मदद की। 2 जून 1858 को राव साहब ने अमरचंद बांटिया से कहा कि उन्हें सैनिकों का वेतन आदि भुगतान करना है, क्या वे इसमें सहयोग करेंगे। तत्कालीन परिस्थितियों में राजकीय कोषागार के अध्यक्ष अमरचंद बांटिया का निर्णय एक महत्वपूर्ण निर्णय था। उन्होंने वीरांगना लक्ष्मीबाई की क्रांतिकारी सेनाओं के सहायतार्थ एक ऐसा साहसिक निर्णय लिया जिसका सीधा सा अर्थ उनके अपने जीवन की आहुति था। अमरचंद बांटिया ने राव साहब के साथ स्वेच्छापूर्वक सहयोग किया तथा राव साहब प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ग्वालियर के राजकीय कोषागार से समूची धनराशि प्राप्त करने में सफल हो सके। 5 जून 1858 के दिन राव साहेब राजमहल गए तथा अमरचंद बांटिया से गंगाजली कोष की चाबियां लेकर उनका दृश्यावलोकन किया। तत्पश्चात दूसरे दिन जब राव साहब बड़े सवेरे ही राजमहल पहुंचे तो अमरचंद बांटिया उनकी आगवानी के लिए मौजूद थे। गंगाजली कोष से धनराशि लेकर क्रांतिकारी सैनिकों को 5-5 माह का वेतन वितरित किया गया। महारानी बैजाबाई की सेनाओं के संदर्भ में भी एक ऐसा ही विवरण मिलता है। जब नरबर में बैजाबाई की फौज संकट की स्थिति में थी तब उनके फौजी भी ग्वालियर आकर अपने अपने घोड़े तथा 5 महीने की पगार लेकर लौटे थे। इस प्रकार बांटिया जी के सहयोग से संकटग्रस्त फौजों ने राहत की सांस ली। अमरचंद बांटिया से प्राप्त धनराशि से बाकी सैनिकों को भी उनका वेतन दे दिया गया। ये स्पष्ट है कि 1857 की क्रांति के समय अगर अमरचंद बांटिया ने क्रांतिवीरों की इस प्रकार आर्थिक सहायता न की होती तो उन वीरों के सामने कैसी स्थिति उत्पन्न होती, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। क्रांतिकारी सेनाओं को काफी समय से वेतन नहीं मिला था, उनके राशन पानी की भी व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। इस कारण निश्चय ही क्रांतिकारियों के संघर्ष में क्षमता, साहस और उत्साह की कमी आती और लक्ष्मीबाई, राव साहब और तात्या टोपे को संघर्ष जारी रखना कठिन पड़ जाता। यद्यपि बांटिया जी के साहसिक निर्णय के पीछे उनकी अदम्य देशभक्ति की भावना छुपी हुई थी, लेकिन अंग्रेजी शब्दकोश में तो इसका अर्थ था देशद्रोह या राजद्रोह, और इसका प्रतिफल था सजाए मौत। अमरचंद बांटिया से प्राप्त इस सहायता से क्रांतिकारियों के हौसले बुलंद हो गए थे। उन्होंने अंग्रेजी सेनाओं के दांत खट्टे कर दिए और ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। बौखलाए हुए ह्यूरोज ने चारों ओर से ग्वालियर पर आक्रमण की योजना बनाई। योजना के अनुसार ह्यूरोज ने 16 जून को मोरार छावनी पर पूरी शक्ति से आक्रमण किया। 17 जून को ब्रिगेडियर स्मिथ से राव साहेब और तात्या टोपे का कड़ा मुकाबला हुआ। लक्ष्मीबाई इस समय आगरा की तरफ से आए सैनिकों से मोर्चा ले रही थीं। दूसरे दिन स्मिथ ने पूरी तैयारी से फिर आक्रमण किया। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी 2 सहायक सहेलियों के साथ पुरुषों की वेशभूषा में आकर सेना की कमान संभाली। ये युद्ध निर्णायक हुआ जिसमें रानी को संगीन और गोली तथा तलवार के घाव लगे। उनकी सहेली की भी गोली से मृत्यु हो गई। हालांकि आक्रमणकर्ताओं को भी रानी के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया, किंतु घावों से वो मूर्छित हो गई थीं। साथियों द्वारा उन्हें पास ही बाबा गंगादास के बगीचे में ले जाया गया जहां वे वीर गति को प्राप्त हुईं। लक्ष्मीबाई के इस ऐतिहासिक बलिदान के मात्र 4 दिन बाद ही 22 जून 1858 को ग्वालियर में ही राजद्रोह के अपराध में न्याय का ढोंग रचा गया। न्याय के इस नाटक में अमरचंद बांटिया से पूछा गया कि आपने किस दबाव में राजकीय कोष गंगाजली की धनराशि क्रांतिकारियों को सौंप दी। अमरचंद बांटिया ने उत्तर दिया कि जिस समय ये धनराशि मैंने रानी लक्ष्मीबाई और राव साहब के हवाले की उस समय यहां उनका अधिकार था, वे ही मेरे स्वामी और इस कोष के अधिकारी थे, इसलिए देश और स्वामी भक्ति की भावना के वशीभूत हो मैंने विवेकपूर्ण निर्णय ही लिया। वस्तुतः गंगाजली कोष का धन जनता का ही था और जनक्रांति में इसका इससे अच्छा क्या उपयोग हो सकता था।
मातृभूमि के लिए मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं। उनके इस बयान के बाद लश्कर के एक भीड़ भरे सर्राफा बाजार में 22 जून 1858 को ब्रिगेडियर नेपियर द्वारा नीम के पेड़ से लटकाकर अमरचंद बाठिया को फांसी की सजा दे दी गई। भारत माता के ऐसे महान सपूत को हमारा शत शत नमन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया श्री राजेश प्रसाद मिश्र ने, समन्वय किया संजय यादव ने, इसे प्रस्तुत किया सुनीता सिंह।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: साल मुबारक साहिब जी,
1: साल मुबारक साहिब जी।
0: आज पियो हंस के दो घूंट सोम रस के,
1: लो आज पियो हंस के दो घूंट सोम रस के, साल भर इसका नशा।

0: साल मुबारक पापा जी,
1: साल मुबारक काका जी।
2: लो लो आज पियो हके, दो घूंट सोम रखे, ये साल भर इसका नशा रहेगा।
1: और जो आज हंसे हंसे, जो आज

ख्वाब और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आप सबका स्वागत। लाइफ स्किल्स इस श्रृंखला में हम और आप साथ साथ चल रहे हैं, बहुत कुछ समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। अगर याद हो पिछली कड़ी में हमने बात की थी कि जो गुजर गया, जो बीत गया, उसे छोड़ना जरूरी है अपनी हीलिंग के लिए, अपनी खुशी के लिए, और माफ करना जरूरी है। जिस दिन मैं माफ करना सीख जाऊंगी, क्योंकि जब हमने बात की थी तो समझ में आया था कि हम क्यों नहीं माफ करना चाहते, क्योंकि हमें लगता है कि हम सही हैं, लेकिन अपने आप को कितना दर्द दे रहे हैं, कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, ये समझे तो माफ करना आसान हुआ।

0: कि अगर नहीं मांग सके माफी तो ये समझना चाहिए कि अगर मेरे पर बोझ है, रियलाइजेशन ऑलरेडी हो गया है, फिर भी मैं माफी नहीं मांग सकता हूं तो ये मेरा ईगो है। बस ये समझ ले कि ये मेरा अहंकार है कि मैं माफी नहीं मांग पा रहा हूं, और उस अहंकार को मुझे खत्म कर देना।
1: Why do I feel guilty? See, उस वक्त जब मैंने किया था मैं सही थी, और उसके बाद क्योंकि मैं अपने आप को गलत नहीं मानना चाहती, मैं अपने आप को बहुत सारे वो देती जाती हूँ लॉजिक कि मैंने इसलिए किया था, ये हुआ, इसलिए हुआ था, इसलिए मैंने ऐसे बिहेव किया था, इसलिए मैंने ऐसे रिएक्ट किया था, उस वक्त रिएक्ट करना जरूरी था या ये जरूरी था ऐसा। लेकिन अब जब अवेयर हो रहे हैं तो समझ में भी आ रहा है कि यही वो चीज है शायद कि जो मैंने क्रिएट की, सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थी। अब ये गिल्ट है, कैसे जाऊं मैं, नहीं जा पा रहे।
2: देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस। कुछ एक परिस्थितियां ऐसे होती हैं जहां मुझे उस समय लगता है कि जो मैंने किया वो सही है। इनफैक्ट हमेशा ही हमें लगता है कि जो हमने किया वो सही है, लेकिन थोड़े समय के बाद हमें लगता कि नहीं, मेरा वो कर्म, मेरा वो एक्शन सही नहीं था। दैट इज वन प्लेस वेर आई कुड फील गिल्टी एंड मैं सॉरी कहता हूं। लेकिन कुछ एक सिचुएशंस ऐसी भी होती है जहां मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। ओके, अभी भी, उस दिन भी, आज भी और शायद हमेशा मेरा वो बहुत एक्यूरेट बिलीफ सिस्टम है कि नहीं, जो मैंने किया वो सही था। लेकिन कई बार मेरा कुछ सही भी उस बात की वजह से किसी और के अंदर दर्द चल रहा है। भले हमें ये समझ में आ रहा है कि उनका हर्ट वो खुद क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। One thing I've understood is that I am not creating somebody else's hurt. No one can hurt me. I can't hurt someone. Lekin someone can use what I have done to hurt themselves. To bhi kahin na kahin mera karam stimulus to bana na. Wo karam mere liye sahi tha. Suppose maine aapko kuch keh diya aisa. Mere hisab se maine sahi kaha. Lekin aap us baat ko lekar agar hurt ho rahe hain, to jitni der aap hurt hain, वो आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी किसकी तरह ट्रैवल होगी? मेरी तरफ ट्रैवल होगी। अब मैं सही हूं, फिर भी क्या मैं सॉरी कह सकती हूं? और क्या मुझे सॉरी कहना चाहिए? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सही हूं, जो मैंने कहा वो सही है, क्या मुझे सॉरी कहना चाहिए? दिस इज वेरी
1: इंपॉर्टेंट। बिकॉज वी से कि मैं तो सही हूं।
2: अब क्या होगा अगर हम नहीं सॉरी कहते हैं? सिर्फ कहने की बात नहीं है, जो एनर्जी हम एक्सचेंज करते हैं उनसे कॉन्स्टेंटली वो एनर्जी हमें मिलती जाएगी, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम गलत थे, हम सोचते हैं कि हम सही हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी अलग अलग सिचुएशंस आती हैं और ये सॉरी अपॉलोजी इसीलिए अटक जाती है बीच में बात, कौन सही है कौन गलत है, सॉरी कहूं या नहीं कहूं, सॉरी कहूं तो वो ऊपर से कैसे रिएक्ट करेंगे, सॉरी कहूं तो क्या वो मुझे कमजोर तो नहीं फील करेंगे, सॉरी कहूं तो क्या वो फॉरगिव करेंगे। कईयों के अंदर ये बहुत डर है, चलो मैं तो सॉरी कह दूं लेकिन क्या वो फॉरगिव करेंगे, मैं उन्हें सॉरी कहने जाऊं वो वापस मुझसे कैसे बात करेंगे। तो ये सारे डाउट्स जब मन में चलते हैं देन वी स्टॉप आवर सेल्फ फ्रॉम फिनिशिंग दैट नेगेटिव कार्मिक अकाउंट। ये एक नेगेटिव एनर्जी एक्सचेंज है, ब्लॉकेज है जिसको हमें स्मूथ करना है। नीड टू थिंक अबाउट दिस। बट
1: अगर ये नहीं हुआ, अगर सॉरी नहीं हुआ, चाहे मैं गलत हूं या नहीं हूं, ये रियलाइजेशन है मुझे दोनों बातों में, अगर मैं सही हूं तब तो मैं कई बार कहता हूं कि सवाल ही नहीं उठता कि मैं सॉरी कहूंगा। लेकिन अगर मैं गलत हूं तब भी मैं सॉरी नहीं कह पा रहा, इसी कारण से कि वो मुझे माफ करेंगे या नहीं करेंगे, या उनका अपर हैंड हो जाएगा, यू नो, वो मुझे दबा पाएंगे। तो ये जो गिल्ट है या ये जो है, ये मेरे को क्या तंग कर रहा है?
0: ये बात भी जो शिवानी बहन ने कही वो अच्छे से समझनी चाहिए कि चाहे मैं ये समझ रहा हूं कि मैं सही हूं, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को हर्ट हुआ है, तो मैं समझ लू उनको हर्ट तो हुआ, मैं सही सिर्फ मेरे नजरिए से था, उसके नजरिए से तो मैं गलत था। तो अगर मैं वहां पर आई पुट माई फुट इन शूज एंड देन सी कि भी कहां हर्ट हो रहा है, तब मुझे रियलाइज होगा कि भी हर्ट तो हो रहा है, और मुझे माफी मांगने से अगर वो हर्ट दूर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात कि अगर मैं नहीं मांगता हूं तो उनसे नेगेटिव वाइब्रेशन मुझे कंटिन्यूअस मिल रहे हैं, वो मेरे बारे में नेगेटिव सोच रहा है, और इससे भी मुझे हार्म होगी अल्टीमेटली, क्योंकि वो ऑरा मेरे तक पहुंचता है और मुझे उसका नुकसान होगा, इसलिए भी मुझे माफी मांगनी है।

0: और ये छोटी सी बात है वास्तव में तो।
1: लेकिन मैं गलती नहीं,
2: जब आपको अपोलोजाइज करना है, ये नहीं कि ऊपर ऊपर से कर दूं, ये नहीं है, दिस इज नो चीटिंग ईच अदर। मैं किस बात के लिए अपोलोजाइज कर रही हूं? मैं अपोलोजाइज जो मैंने किया उसके लिए नहीं कर रही हूं, मैं अपोलोजाइज इस बात के लिए कर रही हूं कि आप हर्ट हैं। टू थिंग्स आर डिफरेंट। आप दर्द में हैं, उस बात के लिए मैं आपको सॉरी कहती हूं। नॉट जो, लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैंने कुछ किया, ये कांच टूट गया इतना बड़ा, ये टेबल आपके लिए बहुत वैल्यूएबल थी, लेकिन मेरी गलती से टूटी, आई डिडंट डू इट डेलिबरेटली, सो बट यू आर नाउ सो मच इन पेन, सो आई अंडरस्टैंड दिस कि मेरे किसी एक्शन ने आपके अंदर ये दर्द क्रिएट किया, तो आई एम सॉरी नॉट फॉर ब्रेकिंग द टेबल, बट आई एम सॉरी फॉर हैविंग बिकम एन इंस्ट्रूमेंट फॉर यू टू एक्सपीरियंस सो मच पेन। वो तो सत्य है ना, वो तो झूठ नहीं है ना। हाँ ये ठीक है, ये मेरी गलती नहीं थी, ये हो गया, या मेरे को लगता है ये सही था, वट एवर, लेकिन आप दर्द में हैं, इज दिस अ फैक्ट, सो आई एम सॉरी फॉर यू हैविंग टू गो थ्रू सो मच पेन, दिस कैन बी से सॉरी टू इच अदर। भले आई वॉज राइट, बट यू हैव इन, यू आर इन पेन, आई एम सॉरी फॉर दैट।
1: लेकिन वहां से फिर रिजल्ट नहीं आता है?
0: नहीं, रिजल्ट आएगा। देखो कभी करके देखिए, जब हम सॉरी कहते हैं तब आप देखेंगे कि जो वंडरफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। सबसे पहले तो कई बार ये होता है, सामने वाले व्यक्ति कहेगा नहीं नहीं आपकी तो गलती थी नहीं, तो सारी चीज रिजोल्व हो गई, आप ही उस बोझ को लेकर के घूम रहे थे। दूसरी बात कि वो व्यक्ति रोने लगेगा, तो भी हुआ कि उन्होंने माफ कर दिया, हो सकता है कि अभी हंसने भी लगे, और चलो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। आप कहेंगे कि भाई उसने माफ नहीं किया, लेकिन आपने तो माफी मांग ली, आप तो हल्के हो गए, वो भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है।
1: अगर नहीं मांगी माफी, अगर गिल्ट में हूं मैं, या ये सब कुछ चल रहा है, व्हाट इज हैपनिंग टू मी, व्हाई आई नीड टू डू दिस,
0: तो अंदर तो आपके वो ब्लॉक्स क्रिएट हो रहे हैं ना, सूक्ष्म में इफेक्ट हो रही है, जिससे टॉक्सिक इमोशंस का काबल उससे थोड़ी कम, परंतु वो इफेक्ट हो रही है, और वो इफेक्ट सारे बॉडी ऑर्गन्स पर हो सकती है, क्योंकि अंदर में आप बोझ को लेकर के घूम रहे हैं, खुशी का अनुभव नहीं करेंगे।
1: डॉक्टर, अभी आपने कहा कि आप उस कर्म के लिए सॉरी नहीं हो अगर, लेकिन उस इमोशन को आपके अंदर क्रिएट करने का जो इंस्ट्रूमेंट आप बने हैं, उसके लिए सॉरी हो सकते हैं। तो जो, जैसे मैं माफी मांग रही हूं, वो तो उम्मीद करता है कि आप उस कर्म के लिए आई शुड फील सॉरी।
2: लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोग्रामिंग। अपने आप को थोड़े समय पहले देखते हैं, जब हमें ये नहीं समझ में आया था कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई थॉट्स, तब हम ये फील करते थे कि उन्होंने जो कहा उससे मेरा हर्ट क्रिएट हुआ। नेक्स्ट प्रोग्रामिंग ये हुआ करती थी कि वो सॉरी कहेंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा, होता था ना, इसी प्रोग्रामिंग के साथ हम चल रहे थे कि मैं बुरा भी तब फील करता हूं जब कोई कुछ कहता है, अच्छा भी तब फील करता हूं जब कोई उसको चेंज करता है। दैट्स द पावर ऑफ सॉरी। पीपल आर एक्चुअली वेटिंग टू हियर दैट सॉरी। उनकी कोडिंग अंदर ये हुई हुई है कि जैसे ही ये सॉरी कहेंगे आई विल फील फाइन। ये बहुत डेफिनेट है, डेफिनेट कोडिंग हमारी हुई हुई है। वो ये नहीं रियलाइज कर रहे कि पहले उनके सेंटेंस को मैंने लिया हर्ट क्रिएट करने के लिए, अब उनके सॉरी को मैं लेता हूं अपने आप को बेटर फील कराने के लिए। सॉरी इज वर्क्स एज अ स्टिम्यूलेंट, प्रोवाइडेड यू आर नॉट जस्ट सेइंग इट ऊपर से, यू आर रियली फीलिंग इट। कई बार आप कुछ लोगों के साथ देखेंगे, आप उनको सॉरी कहें, वो कहेंगे नहीं मुझे नहीं लगता आपने रियलाइज किया है। आप कहेंगे रियली आई एम रियली सॉरी फॉर व्हाट हैज हैपेंड। नो आई डोंट थिंक, मेरे को लगता है आप ऊपर ऊपर से कह रहे हैं। यू नो व्हाई? अभी उनका दर्द नहीं गया। जब तक उनका दर्द नहीं जाएगा आपका सॉरी सच्चा नहीं था। आप चार बार, पांच बार, दो महीने के बाद फिर से, छह महीने के बाद फिर से कहो, द डे दे आर हील्ड दे विल से नाउ यू हैव रियलाइज्ड बिकॉज नाउ आई एम हील्ड।
1: अच्छा, इट डजंट मैटर कि सामने वाला
2: शायद छह महीने पहले ही रियलाइज कर चुका था कि वो सॉरी है, लेकिन मेरी हीलिंग नम जब तक नहीं होती ना, मुझे लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। इतना डीप मेरी प्रोग्रामिंग ये है कि जिस दिन वो रियलाइज कर लेगा मेरा दर्द ठीक हो जाएगा, बिकॉज मैंने ये कभी नहीं समझा था कि मेरा दर्द मैं खुद ठीक करती हूँ। वी कीप ऑन, देर आर टाइम्स वेन वी कीप ऑन डिमांडिंग सॉरीज फ्रॉम पीपल। सॉरी बोलो, सॉरी बोलो फॉर व्हाट यू हैव डन। व्हाई? आप सॉरी बोलेंगे आई विल फील बेटर। दिस इज अ वेरी सटल वे कि जिससे हम अपने आप को ठीक कर पाते हैं। अब वो अपने को कैसे ठीक कर रहे हैं, वी डोंट नीड टू अंडरस्टैंड। वी नीड टू अंडरस्टैंड हम कैसे हेल्प कर सकते हैं अपने को भी फ्री करने में और सामने वाले को भी।

0: प्रे करने।
1: नो बट दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वेट करते हैं, हम भी तो वेट कर रहे होते हैं,
0: हम तो वेट
1: कि वो सॉरी कहे।
0: yes.
1: और एक्चुअली हम कई बार वेट करते हैं कि उसको रियलाइजेशन भी तो हो।
0: हाँ, तो रियलाइजेशन कब? जिस दिन मेरा दर्द खत्म हो गया उस दिन आपको रियलाइजेशन हो गया। दिस इज हाउ द प्रोग्राम इज मिस गोइंग। हाउ डू आई कम टू नो कि आपके अंदर रियलाइजेशन हुआ है कि नहीं, कैसे पता चलेगा मुझे?
1: सी वंस यू रियलाइज, अगेन सॉरी कोई ऐसे नहीं कह देता, मुझे लगा कि मैंने कुछ गलत किया, तो देन आई कम एंड हैव अ टॉक विद यू मे बी कि वाई आई डिड दिस, और या ऐसे मैंने किया था तो ये सही नहीं था, आई शुडंट हैव डन दिस।
0: नेक्स्ट मंथ यू माइट डू इट अगेन। आपने रियलाइज किया? नहीं। आप फील कर रहे हो कि हाँ आई एम सॉरी, नेक्स्ट मंथ यू माइट रिपीट द सेम थिंग एब्सोल्यूटली ऑल ओवर अगेन, क्योंकि आपके हिसाब से वो गलत था ही नहीं, वो आपके हिसाब से गलत नहीं था, या वो आपकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है, वो आपकी you know, संस्कार बना हुआ है। रियलाइजेशन मीन्स स्टॉप चेक चेंज गॉन। कितनी चीजें हम इतनी जल्दी चेंज कर पाते हैं? नहीं, हम रियलाइज कर सकते हैं लेकिन उसको जब तक ट्रांसफॉर्म नहीं किया इट्स नॉट अ रियलाइजेशन। लेकिन आपका वो एक सॉरी मुझे हेल्प कर देता है टू फ्री माई सेल्फ ऑफ अ लॉट ऑफ पेन।
1: एंड इज इट देन यूजुअली वी आर सेइंग सॉरी जस्ट बिकॉज सॉरी फॉर क्रिएटिंग हर्ट टू यू, नॉट बिकॉज आई एम रॉन्ग?
0: या मोस्ट ऑफ द टाइम आई वुड फील, बट वी आर नॉट अवेयर कि दिस इज वॉट वी आर डूइंग। आप एक बच्चे को देखो, बच्चे ने कोई गलती कर दी, मदर गुस्सा होकर बैठ गई या मदर रोने लग गई, बच्चे अपने गलती के लिए नहीं सॉरी कह रहा होता, बच्चा अपनी मदर को ऐसे देख रहा होता है ना कि मेरी मदर मेरी ये बात की वजह से मेरी मदर रो रही है, वो अपनी मदर को चुप कराना चाहता है। बच्चा कई बार रो रहा होता है, मदर चाहती है कि बच्चा चुप कर जाए, मदर बच्चे को कहती है बच्चे आई एम सॉरी मैंने तुमको ऐसा, व्हाई शी वॉन्ट्स दैट द चाइल्ड शुड गेट हील्ड, द चाइल्ड वॉन्ट्स दैट द मदर शुड गेट हील्ड। सो वॉट इज इट, वॉट आर वी डूइंग विद ईच अदर? हम एक दूसरे को दर्द से बाहर निकालना चाहते हैं। कर्म के बारे में तो एक्चुअली हम बहुत ज्यादा सोच भी नहीं रहे होते,
1: लेकिन अगली बार हमारे सामने वो कर्म आते हैं हम दो बार सोचते हैं, बिकॉज इट्स गोइंग टू हर्ट माई मॉम।
0: या बिकॉज इट्स गोइंग टू हर्ट माई मॉम, नॉट बिकॉज द कर्म इज राइट और रॉन्ग। से दैट इज द थिंग। आप अपने बच्चे को कुछ एक चीज, उसको सपोज आपने अपने बच्चे को कहा कि स्कूल बंक करके नहीं जाना चाहिए, ही माइट स्टिल लाइक दैट थिंग, उसको अभी भी अच्छा लग रहा है वो आइडिया, लेकिन इट माइट हर्ट माई मॉम, दैट इज वाई आई विल नॉट डू इट। इक्वेशन इज वेरी डिफरेंट। आई हैव नॉट रियलाइज दैट द एक्शन इज रॉन्ग, मेरा उस पर नहीं है रियलाइजेशन। अभी मेरे को सिर्फ टेम्पररी, क्योंकि कुछ एक दिन पहले ही ये हुआ था, थोड़े दिन के बाद जब मुझे वो हर्ट वाला सीन भूल जाएगा आई विल स्टिल थिंक ऑफ बंकिंग स्कूल एंड गोइंग। तो मेरी रियलाइजेशन एक्शन के बारे में नहीं, मेरी रियलाइजेशन कि आपको दर्द हुआ, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती इसलिए सॉरी। दो बातों में काफी फर्क है।
2: पहली बात अगर हो जाए, मुझे रियलाइज हो कि मेरी एक्शन गलत थी एंड आई एम सॉरी फॉर दैट, तो सुपीरियर है, तो सदा के लिए खत्म हो जाएगा।
0: देन इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन ना, देन इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, लेकिन हम जो यू नो, रो देते हैं एक दूसरे को इमोशनली यू नो, गिल्ट में फील, बच्चे ने गलती की, पेरेंट्स क्या करते हैं, बात करना बंद कर देंगे। दिस इज अ वे ऑफ पनिशिंग द चाइल्ड कि मैं नहीं बात करूंगा। बच्चे के लिए पेरेंट सबसे इम्पोर्टेंट है, मेरे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट, स्पेशली जब बहुत छोटे, मेरे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति मेरे से नाराज है, वो गोल गोल गोल गोल घूमता रहेगा सॉरी सॉरी सॉरी कहते हुए। वट आर वी ट्राइंग टू डू? वी ट्राइंग टू टीच हिम अ लेसन, बट दिस इज नॉट द वे। वी आर टीचिंग हिम द रॉन्ग इक्वेशंस इन लाइफ एक्चुअली। उसको उस एक्शन के प्रति लेके जाने की बजाय, उस कर्म में क्या गलती हुई, उसका क्या रीजन था, वी जस्ट शोड हिम आई एम हर्ट एंड यू हैव टू से सॉरी। आपका सॉरी बोलने से आई विल बिकम बेटर, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इवन आफ्टर वी ग्रो अप। द इक्वेशंस जस्ट गो ऑन टू बीइंग द सेम थिंग। हम एक दूसरे को हर्ट देखते हैं, फटाफट सॉरी बोलते हैं ताकि आपका मूड ठीक हो जाए, भले मैं गलत था या नहीं था, मैं सॉरी बोल दिया ताकि आप ठीक हो जाओ, मतलब आप अपसेट नहीं हो इतना। That's all that we're doing. But we need to understand कि this does make a difference to other people. And most important, मेरे लिए बहुत useful है वो, provided I'm feeling it from inside. Feel करके करे। आजकल कई बार हम सिर्फ ऐसे ही sorry बोल देते हैं ताकि आप ठीक हो जाओ, then it won't work.
1: नहीं तो feel करके हम क्या कर्म पे काम करेंगे फिर भी?
0: दोनों बातें हैं ना, अगर कर्म आपको लगा कि गलत है तो आप कर्म पे काम करेंगे, या ये आपको लगा कि कौन सा कर्म से किसको दर्द क्रिएट होता है तो आप उस बात पर काम करेंगे, लेकिन कुछ तो काम करेंगे ना, कहीं तो अटेंशन रखकर अपने अंदर परिवर्तन लेंगे।

0: सॉरी को सिर्फ एक शब्द की तरह यूज करके रिश्तों में एक्सप्लॉइट तो नहीं करेंगे ना. यू विल रियली वर्क ऑन व्हाट यू आर सेइंग टू ईच अदर. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कई भाई बहने ऐसे मिलते हैं, दे आर गिल्टी कि उन्होंने कोई अपने पेरेंट के साथ या कोई भाई बहन के साथ कुछ ऐसा किया था एंड देव लेफ्ट द बॉडी. कहते कुछ ऐसा करवा दो जिससे हम एक बार उनको सॉरी कह सके. यू नो इतना गिल्ट दे कैन कैरी एंड उससे उनकी पूरी प्रेजेंट एंड फ्यूचर अफेक्ट हो सकता है जस्ट बिकॉज टाइम रहते हमने वो सॉरी नहीं कहा था. वो गिल्ट इतना बर्डन आपके साथ चल सकता है. सो इट कैन बी वेरी डैमेजिंग टू द एंटायर पर्सनैलिटी.
1: वही पूछा जा रहा है कि जो अब ये जो सारी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, चाहे वो गिल्ट की है, हर्ट की है, ये अगर हम कैरी करते जाते हैं, अगर लेट को नहीं किया है, सो वेयर डज इट लीड फिजिकली ऑल्सो?
2: फिजिकली ऑल्सो इट विल हैव द सिमिलर. जो भी ऑर्गन वीक है उस पर उसकी नेगेटिव इफेक्ट होगी, या स्पेसिफिक जो ऑर्गन पर उसकी इफेक्ट होनी है वो स्पेसिफिक ऑर्गन पर भी होगी. जैसे गिल्ट की जो फीलिंग है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर हो सकती है. इवन नो गिल्ट कैन अफेक्ट योर एंडोक्राइन सिस्टम एज वेल, क्योंकि उसके साथ इमोशंस जुड़े हुए हैं, तो उस प्रकार की बीमारियां आपको होगी.
1: सप्रेस्ड फीलिंग्स या गिल्ट जो है, ये एक जो हम चुप हो जाते हैं, यू नो हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि, और ये जो एक डर कि मुझे माफ करेगा कि नहीं करेगा, तब हम शायद चुप रहते हैं, नहीं बोल पाते हैं, उसको कैसे ओवरकम करें?
2: लेकिन हमने तो बोल दिया, एटलीस्ट हम तो हल्के हो गए. अगर वो व्यक्ति माफ नहीं करता है फिर भी भले हमें नेगेटिव इफेक्ट होगी क्योंकि नेगेटिव एनर्जी हमारे पास आएगी, परंतु हमारी ओर से तो हम हल्के हो गए. एटलीस्ट 50% बेनिफिट हुआ. अब 50% उस व्यक्ति की गलती है, नहीं कर रहा है बोले फिर से भी कहो.
1: पश्चाताप की जो बात है सचिव वाली, पश्चाताप में जो रोना और पश्चाताप में जो हम अपने आप को वन गिल्ट में रख के बहुत सारी चीजें ऐसे करते हैं, वो बहुत डैमेजिंग कई बार होता है, क्योंकि उसमें हम बहुत अपना लो सेल्फ एस्टीम में भी जाते हैं.
0: दो बार गलती हो रही है ना. एक बार जब मैंने वो किया तब गलत एनर्जी क्रिएट की. सपोज मैंने आपको गुस्सा कर दिया, बहुत जोर से अभी आपको कुछ कह दिया, तो अभी गलती हो गई. अब उसके बारे में मैं चार दिन गिल्ट में रहूं, हाँ मैंने इस तरह से बात कर दी, मैंने उस तरह से बात कर दी, तो वो गलती एक बार नहीं हुई, कितनी बार हो गई. सो गिल्ट इज वेरी वेरी डैमेजिंग. और आज हम बहुत सारी बातों की वजह से गिल्ट में हैं. गिल्ट इज नॉट द सोल्यूशन. पश्चाताप इज नॉट द सोल्यूशन. ट्रांसफॉर्मेशन इज द सोल्यूशन. हाँ मैंने पिछली बार ऐसे बात की, ये गलत थी, अब चाहे कुछ भी हो जाए, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट अगेन. मेजोरिटी टाइम वी सी कि सपोज मैंने आज आपसे गुस्सा किया, जोर से किया, कई दिनों तक मैं गिल्ट में भी रही, बुरा भी लगा, लेकिन अगली बार मेरे मुख से फिर उस तरह से बात निकल जाती है. क्यों? क्योंकि जितनी देर मैं पश्चाताप में भी रही, मैं एनर्जी कौन सी क्रिएट कर रही थी? नेगेटिव. तो आत्मा की शक्ति और भी कम होती जा रही थी. जैसे ही स्टिम्यूलस फिर से आया, मुझे फिर गुस्सा आ गया, फिर मैं अगले कुछ दिन फिर पश्चाताप में रही. आई हैव सीन सो मेनी पीपल जो कहते हैं, जैसे हस्बैंड का वाइफ पर हाथ उठ जाता है, हम नहीं करना चाहते, हम बिल्कुल नहीं करना चाहते. बहन आपको नहीं पता, जब हम करते हैं हमें इतना बुरा लगता है, हम पक्का करते हैं, हम नहीं, फिर अगली बार फिर वही होता है. क्यों? क्योंकि हमने अपने थॉट्स को ट्रांसफॉर्म नहीं किया. नेक्स्ट टाइम वो नहीं हो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? ताकत चाहिए. ये सारी नेगेटिव थिंकिंग तो मेरी ताकत को और भी कम कर देती है. मेरी गलती बार बार रिपीट हो रही है. पश्चाताप मीन्स जो गलती मैंने की उसको मैंने अब रिपीट नहीं करना है, फुल स्टॉप. उसके बारे में सोचना सोचना सोचना इज एक्चुअली उस गलती को बार बार रिपीट करना. जितनी बार मैं उसके बारे में सोचूंगी, मैं वही नेगेटिव एनर्जी खुद को भी और आपको भी भेज रही हूं. सो इट्स जस्ट वन थॉट कि आई विल नॉट डू इट अगेन, चेंज माई थिंकिंग. फिर आप स्टिम्यूलस चाहे कुछ भी दो.
1: बट वी ऑलवेज से विल नॉट डू इट अगेन.
0: हाँ,
1: नॉट टू इवन अदर्स,
0: टू योर सेल्फ, टू योर.
1: अपने आप को भी कहते हैं कि हम नहीं करेंगे.
2: पश्चाताप करना अच्छा है, लेकिन एक ही बार करो और टोटल
1: चेंज. मतलब इट हैज टू फिनिश. वो कैसे करें? नहीं हो पाता ना,
0: क्योंकि हमने अपने थॉट को नहीं चेंज किया.
1: क्योंकि वही बात है ना कि कर्म को चेंज करना तो चाहा हमने कि हम हाथ नहीं उठाएंगे, हम गंदा नहीं बोलेंगे, हम गुस्सा नहीं करेंगे, हाथ नहीं उठाएंगे, लेकिन वो हुआ नहीं, हो नहीं पाता.
0: कहीं ना कहीं हम अभी तक जस्टिफाइड है अपने उस कर्म के लिए. सी दैट्स वाई इट्स कमिंग डाउन अगेन टू द सेम थिंग. मैं चाहती हूँ ये रिश्ता ठीक हो जाए, लेकिन उस समय जब मुझे गुस्सा आया था, मेरे अंदर एक और थॉट है जो कहता है लेकिन मुझे गुस्सा तो इस

0: ये आया था ना क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा था, तो एक्चुअली तो मेरा गुस्सा जस्टिफाइड था, तो मैंने अपने बिलीफ को नहीं बदला, थॉट नहीं बदली, मैंने सिर्फ अपने आप को कहा अगली बार मैं ऐसा नहीं करूंगी, लेकिन बिलीफ सिस्टम, थॉट्स, फीलिंग, एटीट्यूड, एक्शन नहीं बदला, वो एक्शन में फिर से आ जाएगा।
1: स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन नहीं किया।
0: बिलीफ सिस्टम ये कि उन्होंने भले कहा गुस्सा मैंने किया था, आई हैव अ चॉइस कि आई कैन चेंज माई रिस्पॉन्स टू एनी सिचुएशन।
2: ये गुस्सा करना मेरे लिए अच्छा नहीं है।
0: नहीं, बट माई चॉइस ऑफ क्रिएटिंग द रिस्पॉन्स इज टोटली इन माई हैंड, इंडिपेंडेंट ऑफ द सिचुएशन। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, मेरा रिस्पॉन्स मैं क्रिएट करती हूँ। ये प्रोग्रामिंग मुझे बार बार अगर मैं करूँ, नेक्स्ट टाइम मेरा रिस्पॉन्स मेरे कंट्रोल में होगा, तब मैं अपने आप को कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ ये बात अब फिर से नहीं होगी।
1: उन्होंने गलती की, लेकिन मैं गुस्सा करके दूसरी गलती कर रहा हूँ ना,
2: क्योंकि मैं क्रिएट कर रहा हूँ।
1: हाँ, मैंने क्रिएट भी किया और दूसरी गलती, एटलीस्ट मुझे तो गलती नहीं करनी चाहिए, इसलिए भी मुझे गुस्सा नहीं करना, इसलिए मैं सही बात को चूज करूँ।
2: डॉक्टर साहब, ये तो बात रही कि हमने खुद ये रिस्पॉन्स क्रिएट किया, अगर हम चाहते हैं तो उस बिलीफ सिस्टम पर जाना पड़ेगा। और कौन से ऐसे इमोशंस हैं जो हमारे को आगे बढ़ने में रोकते हैं?
1: नहीं, वास्तव में तो जो भी आज हम हैं, हम सब में कुछ अच्छाई भी है, कुछ बुराई भी है, उन सब को अगर हम देखें तो उसके रूट में कुछ बिलीफ सिस्टम होती है, एक भी हो सकती है, शायद दो तीन भी हो सकती है। एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, अगर सभी करें तो हम टोटली रूट को अच्छे से समझ सकते हैं, कि एक झाड़ का चित्र बनाएं और फिर आज हमारे में जो भी चीजें हैं कि कुछ अच्छा ही है, जैसे भी मेरे में नम्रता है, एकाग्रता अच्छी है, मैं हार्ड वर्किंग हूं, ये अच्छी बातें। कुछ बुराइयां भी हो सकती कि मेरे में आलस है, गुस्सा है, गिल्ट फीलिंग है, वो पूरी लिखे और फिर ये ढूंढे कि इन सब के रूट में एक या दो कोई बातें हैं। देखो, एक दो उदाहरण के द्वारा मैं स्पष्ट करता हूं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उनको डिप्रेशन लगता था, या तो मैं अच्छे से काम नहीं कर पा रहा हूं। वो एक बैंक में थे, लेकिन मुझे प्रोजेक्ट देते हैं तो ज्यादा टाइम लगता है, और लोग तो जल्दी कर लेते हैं। रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, वाइफ वॉज वेरी गुड, स्टिल ही फेल्ट कि भी मैं उनकी संभाल ठीक से कर नहीं पा रहा हूं। एक बेटी थी, उसका ध्यान नहीं रख रहा हूं। ऐसे सारे उसके सिम्टम्स लिखे। जब फादर की डेथ हुई तो ब्रह्मा कुमारी बहनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो मैंने कहा देखो सारा ये परिवार है वह भी आपके साथ है और सब लोग आपको इतना सहयोग दे रहे हैं। जब यह बात क्लियर हो गई कि मैं अकेला नहीं हूं तो एकदम ठीक हो गए। उनकी दवाइयां भी चल रही थी, छूट गई तीन चार महीने। तो ऐसे एक बार वो रूट को अगर हम समझ ले तो सब कुछ दूर हो सकता है।
0: इमोशनल ब्लॉक्स,
1: जैसे
0: हार्ट में ब्लॉक्स, वैसे
1: इमोशन ब्लॉक्स है।
2: तो इमोशन ब्लॉक्स को समझा अगर, देखा, तो फिर उसको ठीक भी अपने आप कर पाएंगे क्या?
1: हाँ बिल्कुल, फिर से आत्मा के साथ ही काम करना है।
2: अपने आप को पॉजिटिव दिखाना है,
0: डिटैच होकर जैसे औरों को बताते हैं अपने को बताना है। अगर ये किसी के साथ भी और होता, कोई भी व्यक्ति उनको ये बता सकता, देखो आपकी वाइफ कितनी अच्छी है, यू हैव टू जस्ट बी एबल टू से इट टू योर सेल्फ। लेकिन उसके लिए अपने दर्द से डिटैच होना पड़ता है, दैट इज वाई सोल कॉन्शियसनेस हेल्प्स। ये सारी चीजें हम बहुत इजीली कर पाएंगे जब हम अपनी परिस्थितियों से डिटैच हो पाएंगे। हमें परिस्थिति ऐसे दिखाई देगी जैसे वो किसी और की परिस्थिति है, विल बी एबल टू गिव द राइट थॉट्स टू अवर सेल्फ। लेकिन इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है वी स्पेंड सम टाइम विद आवर सेल्फ। हमारा क्या हो रहा है, दर्द है, ब्लॉकेज है, नुकसान हो रहे हैं, हम चल रहे हैं, चलते जाओ, बहुत हमें लगता है ये नेचुरल है मुझे, मैं ऐसा ही हूं करके। वर्क ऑन योर सेल्फ, राइट इट डाउन, फाइंड योर ब्लॉक, क्लीन योर ब्लॉक, दोनों काम हमें ही करने हैं।
2: रिजोल्व करने की जो बात है कि जब तक रिजोल्व नहीं करेंगे तब तक वो क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं आ पाएगी।
1: कि आपको समझ में आ जाए तो भी वो रिमूव हो जाए।
2: तो ये रियलाइजेशन हमें अपने आप ही अपने आप को देखते देखते होगा। देखने की आदत तो होती जा रही है, समझ भी रहे हैं तरीका, सिर्फ ये नहीं पता था कि ये ब्लॉक्स जो हैं ना सिर्फ जीवन के हर सुख से, अगर शरीर के सुख देखें उससे भी हमें दूर कर रहे थे। सिस्टर शिवानी, डॉक्टर पटेल, थैंक यू सो मच। कोई बात मन में है आप हमें ईमेल या फोन पर संपर्क करें। हमारे फोन नंबर हैं 9999344555, 9999344666, 9873666555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। अवेटिंग द ब्रह्मा कुमारी।

मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पर रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आपने ऐकत आहे रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
2: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। वेलकम सिस्टर।
3: ओम शांति।
2: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन।
3: थैंक यू।
2: बीइंग डिवाइन में हम संस्कारों की बात कर रहे थे। पिछले जन्मों के गर्भ में बच्चा लेकर आता है, पेरेंट्स के, स्कूल के, टीचर के। कल मैं ये सोच रहा था कि इतनी संस्कारों की

0: ओके,
1: विच मीन्स के हम पहले तीन फोल्डर में चाहे कोई भी संस्कार लाए हो, वो कितना भी कड़क हो, कितना भी पुराना हो, हम अपनी विल पावर से एक और संस्कार क्रिएट करके इस संस्कार को ओवर पावर कर सकते हैं।
0: किताबों में भी लिखा है सिस्टर के कि जो पुराने संस्कार जो आपके दिए हुए हैं और पिछले जन्मों से आप लाते हैं वो बूढ़े हैं।
1: हाँ।
0: और जो आप नया बनाते हैं उसके अंदर जवानी ज्यादा स्ट्रेंथ है।
1: यस,
0: एंड दोज आर वीकर एंड दीज आर स्ट्रॉन्गर।
1: यस, व्हाई? बिकॉज दोज वर डन बिफोर, दिस वी आर डूइंग नाउ, नाउ इज द पावर। क्योंकि अगर हमें इस क्षण की पावर नहीं पता होगी, अपना इसके अंदर पोटेंशियल नहीं पता होगा, तो हम जीवन भर कहेंगे ये तो मेरी आदत है, ये तो मुझे मिली, ये तो मेरी फैमिली में है संस्कार।
0: क्या कर सकता हूँ मैं? यू नो दैट
1: देन दैट्स अ विक्टिम वे ऑफ लिविंग, अ ब्लेम गेम वे ऑफ लिविंग। लेकिन जैसा लोहे लोहे को काटता है, संस्कार संस्कार को काटेगा। एक संस्कार को काटने के लिए एक संस्कार ही क्रिएट करना पड़ेगा।
0: मतलब नहीं समझा?
1: मतलब कोई पुराना संस्कार है जो राइट नहीं है। सपोज किसी के अंदर झूठ बोलने का संस्कार है, उसने इस जीवन में नहीं क्रिएट किया, नहीं क्रिएट किया, उसको मालूम भी नहीं, अवेयर भी नहीं है कि कब क्रिएट हुआ था ये, क्योंकि या तो वो पास्ट से कैरी फॉरवर्ड कर रहा है या उसको पेरेंटल इन्फ्लुएंस से वो संस्कार मिल चुका है। तो वो बच्चा जब से अवेयर हुआ, 3-4 साल का हुआ, 5 साल का हुआ, झूठ बोलना उसके लिए बहुत ईजी था। तो हम कहेंगे इसके अंदर झूठ बोलने का संस्कार है। अब वो बहुत साल उस झूठ बोलने के संस्कार के साथ चल रहा है और वो कहता है ये तो मेरी आदत है, छोटी छोटी बात पे झूठ, बात पे झूठ, ऐसे कोई बात नहीं, कुछ नहीं, लेकिन झूठ। आज अगर वो आत्मा रियलाइज करे कि दिस संस्कार नॉट गुड फॉर मी, दिस संस्कार नॉट हेल्दी फॉर मी, क्रिएटेड लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट इन माई लाइफ, आज से I have to create a new संस्कार of honesty. हो सकता है?
0: हो सकता है?
1: हो सकता है, मतलब क्या किया हमने? चौथे फोल्डर में एक नई फाइल डाली,
0: इसको डिलीट करके नया नहीं डाला। अच्छा, एक नई नई फाइल डाली।
1: ये जो नई फाइल हम डालेंगे विल पावर के फोल्डर में और इसको यूज करेंगे, तो जो पहला झूठ बोलने का संस्कार कहीं पड़ा है, या तो पेरेंट्स से, पासवर्ड से, दोस्तों से, तीनों में से कोई भी फोल्डर में अगर पड़ा है, वो पड़ा रह जाएगा एंड इट विल नेवर कम आउट। तो ये विल पावर से क्रिएट किया हुआ संस्कार इसको ओवर पावर कर देगा। कुछ समय के बाद हमें याद भी नहीं होगा कि ये संस्कार हमारे अंदर था। ना हमें याद रहेगा, ना किसी और को याद रहेगा, विच मीन्स इट्स एज गुड एज
0: नॉट देयर,
1: इट्स नॉट देयर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू रिमेम्बर कि थोड़े समय के अभ्यास के बाद दैट संस्कार इज एज गुड एज नॉट देयर। आज अगर हम अपने आप को भी देखें तो हमारे अंदर कई संस्कार थे जो अब इमर्ज नहीं होते हैं, इट्स नॉट देयर। फोल्डर है लेकिन हमने नए संस्कार क्रिएट किए हैं।
0: तो हम ये अच्छी बातों के लिए भी तो कह सकते हैं, कुछ अच्छे संस्कार मुझ में हैं और मैं कभी यूज ही नहीं किया।
1: yes.
0: तो एज गुड एज नॉट बीइंग देयर।
1: यस, इवन कुछ संस्कार हम पास्ट बर्थ से लाए होंगे जो बहुत सुंदर हैं।
0: हाँ,
1: सपोज आप पास्ट बर्थ से ऑनेस्टी का संस्कार लेकर आए
0: एंड
1: वो कुछ सालों तक आपके साथ है, बहुत स्ट्रांग, मतलब बच्चा अभी भी बहुत ऑनेस्ट है। ठीक है, क्योंकि वो ऑनेस्टी का संस्कार लेकर आया है। लेकिन कहीं संघ में आकर, दोस्तों के साथ, कहते हैं ना गलत संघ में जाकर बदल गया, तो दोस्तों के साथ कभी इधर झूठ बोला, कभी उधर झूठ बोला, तो झूठ बोलने का संस्कार बन गया। फोल्डर में ऑनेस्टी का संस्कार ऑलरेडी है, पास्ट लाइफ के फोल्डर में है ऑनेस्टी का संस्कार, एनवायरमेंट के फोल्डर में क्रिएट हो गया झूठ बोलने का संस्कार, दोनों हैं, दोनों हैं। लेकिन हम अभी ज्यादा कौन सा यूज कर रहे हैं? अगर झूठ बोलने वाला, मतलब हम वो वाला ग्रुप ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो हमारे लिए वो ऑनेस्टी का संस्कार एज गुड एज नहीं है अभी। लेकिन इट्स देयर, इट्स देयर, वी कैन ओपन दैट फाइल एनी टाइम। तो कुछ संस्कार हमारे अंदर थे अच्छे, हम उनको यूज नहीं कर रहे हैं।

0: कुछ संस्कार नहीं थे लेकिन आज हम क्रिएट कर सकते हैं अपनी विल पावर से। कोई भी ऐसी नेचर नहीं है जिसको काउंटर करने के लिए हम अलग संस्कार नहीं क्रिएट कर सकते। किसी के अंदर इन्फीरियर फील करने का संस्कार है, किसी के अंदर दूसरे को नीचा गिराने का संस्कार है, किसी के अंदर दूसरों को क्रिटिसाइज करने का संस्कार है, किसी को बातों को घुमा फिरा के बोलने का संस्कार है। तो संस्कार तो कितनी लंबी लिस्ट है। किसी को आधी बात बोलने का संस्कार है, बहुत सारे संस्कार है। ये गुस्सा ईर्ष्या ये तो मोटा मोटा है ना, ये तो दिख रहा सारा दिन।
1: और हर एक के लिए एक रीजन है। मैं इसलिए झूठ बोलता हूँ क्योंकि मुझे अपनी बातों को सीक्रेट रखना है।
0: हाँ,
1: बस तो नहीं बताने।
0: कोई भी संस्कार के साथ आपके पास जस्टिफिकेशन भी होगा। किसी के अंदर वहम करने का संस्कार है, किसी के अंदर डाउट करने का संस्कार है। स्पिरिचुअलिटी मीन्स सूक्ष्म चेकिंग, बहुत सूक्ष्म चेकिंग। दैट्स व्हाई मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि थोड़ी देर भी साइलेंस में अगर बैठे, चेक चेक कहाँ सफाई नहीं है, कहाँ अंदर जितना क्लीन हो सकता है वो क्यों नहीं है, किस बात के लिए मैं ये कर रहा हूँ तरीका, ये वाला यूज कर रहा हूँ, क्यों आधी बात, क्यों घुमा फिरा के बात, दिस इज नॉट क्लीनलीनेस, क्यों एग्जैजरेशन, क्यों क्रिटिसिज्म, क्यों कंपैरिजन, दिस इज नॉट क्रिएटिंग अ गुड ग्रूव। क्योंकि कोई भी ऐसी थॉट, वर्ड और बिहेवियर जो इम्प्योर है, वो मुझ आत्मा की प्योरिटी को कम करता है। सो व्हाई आई कैन चेंज।
1: प्रभावित होके भी हम लोग बहुत कुछ सीख लेते हैं, मतलब कर लेते हैं या संस्कार बन जाते हैं।
0: सिर्फ दूसरे की बातें सुनकर प्रभाव पड़ जाता है। अपनी सोच बदल जाती है, अपना व्यवहार बदल जाता है, अपनी इंटेग्रिटी भूल जाती है।
1: जैसे मेरे बच्चे बोलते थे मुझे, आपकी उस दिन वाली बात ने मेरी लाइफ चेंज कर दी, मुझे वो मैं फॉलो करता हूँ, और कई लाइफ खराब भी कर सकती है एक बात।
0: तो विच मीन्स किसी से राय लेने, किसी की बात सुननी, ये लेना है, लेकिन ये लेने के बाद डायरेक्टली नहीं जा सकता कर्म में। ये लेने के बाद देर हैज टू बी अ पॉज, देर हैज टू बी अ पॉज टू रिफ्लेक्ट कि ये बात उन्होंने तो कही, ये उनके लिए तो सही थी, ये उनके नजरिए से तो राइट थी, क्या ये मेरे लिए सही है।
1: छोटे बच्चे कहाँ सोचते इतना सब।
0: तो छोटे बच्चे तो इन्फ्लुएंस होने की स्टेज में है ना, हम क्या कर रहे हैं अभी। इसीलिए तो छोटे बच्चों के ऊपर पेरेंट्स का, फैमिली का और संघ का रंग इतनी जल्दी लगेगा। लेकिन अब तो हम उस स्टेज पे नहीं है। छोटे बच्चे कंज्यूम कर लेते हैं डायरेक्टली। हमें क्या करना है, हमें लेना है, पहले पॉज करके चेक करना है। आज इस समय में हर एक कुछ ना कुछ हमें जो राय देगा, उसके अंदर पहले उसकी बॉडी कॉन्शियसनेस है, ये वी हैव टू रिमेम्बर। उसका कोई ना कोई संस्कार है, उसके थ्रू वो राय दे रहा है, राइट भी हो सकती है राय।
1: लेकिन प्यार में इतनी स्ट्रेंथ रहती है ना, प्यार से जिसको आप प्यार करते हैं, दोस्त हो, फ्रेंड हो, पति हो, पत्नी हो, माँ हो और बाप हो, उनका तो एक तो आदमी मंत्र जैसे मान लेता है, राय ऐसे ले लेता है, विश्वास से ले लेता है। इसने कहा
0: राय विश्वास से लेनी है, सामने वाले ने दी भी राइट बात है,
1: अपने हिसाब से अपने पॉइंट ऑफ व्यू,
0: बिल्कुल राइट है ना। सी, आप अगर अभी मुझे कोई राय दें, वो बिल्कुल राइट है, लेकिन वो आपके संस्कार के थ्रू राइट है। बट व्हेन आई स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इट, मुझे पहले उसको अपने संस्कार के साथ तो मैच करना पड़ेगा।
1: सही बात है। जैसे उस दिन हमारे घर में एक बार एक बहुत बड़ी पार्टी हो रही थी, फंक्शन, तो किसी आदमी ने, एक रिलेटिव ने आके कुछ बहुत कुछ बोल दिया मुझे। मैं सिर्फ देखता रहा उसको। और मैंने उसको बोला, देखो ये जगह सही नहीं है, रिश्ता ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इस तरह की बातें करते तो आपका मेरा रिश्ता भी खराब हो जाएगा। तो एंड आई एम कीपिंग क्वाइट बिकॉज आई रिस्पेक्ट द रिलेशन मोर। मैं भी जवाब दे सकता हूँ, मैं भी हंगामा कर सकता हूँ, अच्छी बात नहीं है। तो कितने मतलब बाकी के लोग आके बोले, सुरेश भाई आप तो चुप रह जाते हैं ऐसी बड़ी बड़ी बात में, यू शुड नॉट फियर, यू शुड हैव डन दिस, आपको तो ये कर देना चाहिए। कितने लोगों ने आके बोला, आप सुना दो, आप बोल दो, अगले दिन कर दो, लिख दो। मैंने कहा नहीं, मैं इनकी राय नहीं लूंगा।
0: ये क्या हुआ, हम प्रभाव में नहीं आए।

0: अगर प्रभाव में आ जाते उस दिन, डेस्टिनी बदल जाती। डेस्टिनी बदल जाती ना। कई बार हम राइट संस्कार के थ्रू चल रहे हैं, लेकिन सामने से राय अलग मिलती है, हम प्रभाव में आकर इमिजिएटली वो करने लगते हैं, हमारा भाग्य बदल जाएगा। उस दिन आपने डिसाइड किया कि नहीं बोलना, चुप रहना है, रिश्ता इम्पोर्टेंट है। उस दिन चुप रहने से मन की शांति बची, शरीर की हेल्थ बची, रिश्ते बचे,
1: विल पावर बढ़ा और मुझे अच्छा लगा,
0: क्योंकि संस्कार अपने संस्कार पर भी ओवरकम किया।
1: मैं तो इसकी एक बात नहीं सुनने वाला। इतनी सुन के मतलब मुझे लगा कि वाह, ये तो कुछ।
0: अब इसमें दो स्टेजेस हुई। पहले जब वो बात आई तब स्टेबल रहे, और अपने नॉर्मल जो संस्कार था रिएक्ट करने का वो नहीं आया सामने, एक न्यू संस्कार आया, स्टेबिलिटी, प्योरिटी। इट वॉज प्योरिटी एट दैट मोमेंट कि इस क्षण राइट क्या है। आत्मा ने सही परखा, सही निर्णय लिया और सही कर्म हुआ, ये तो उस क्षण हो गया। अब उसके बाद लोगों ने राय दी,
1: अब तो करो।
0: हाँ, पहली बात लोगों ने ये भी कहा कि चुप क्यों रहे थे,
1: उस टाइम पे भी बोला बोल दो आप क्यों चुप हो।
0: ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस टाइम। दिस वन इंसिडेंट इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू टेक राइट नाउ। हम एक ऐसे समय में चल रहे हैं जहां ऑलमोस्ट सभी आत्माएं बॉडी कॉन्शियस स्थिति में हैं। हर आत्मा के अंदर अहंकार है, किसी में कम
1: किसी
0: में ज्यादा अहंकार है। बॉडी कॉन्शियस है, 100% सोल कॉन्शियस नहीं है इस टाइम। अब अगर बॉडी कॉन्शियस है तो किसी के अंदर अहंकार है, किसी के अंदर ईर्ष्या है, किसी के अंदर नफरत है, किसी के अंदर, ये सब संस्कार हैं। अब नाउ लुक एट दीज सोल्स, एट दैट टाइम वी शुड नॉट लुक एट देम एज फैमिली एंड रिलेटिव्स, वी शुड लुक एट देम एज सोल्स कि ये इतनी सारी आत्माएं, इन सब के अपने अपने संस्कार। अब अगर उसके अंदर कोई एक आत्मा है जिसके अंदर अहंकार का संस्कार बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, उस आत्मा के सामने अगर ये रिश्तेदार ने ऐसे जाकर बोला होता तो वो रिएक्ट कर जाते तुरंत। वो चुप ना रहते, क्योंकि उनके हिसाब से वो राइट है। क्यों राइट है कि चुप नहीं रहना? क्योंकि उनका अहंकार का संस्कार है। तो जब उन्होंने आपको देखा कि आप चुप रहे, उन्होंने आपको कहना है कि जो आपने किया वो रॉन्ग था।
1: सही है।
0: और उन्होंने ये तक कहना है कि ये तो कमजोरी है।
1: हाँ, किसी ने मेरी बेटी के थ्रू मैसेज भी भेजा, उसके एक फ्रेंड ने, लगे टेल योर डैड के रिश्तेदारी में, रिलेशन में इतना नहीं डरना चाहिए, डरते क्यों?
0: जिसके अंदर अहंकार का संस्कार होगा उसको ह्यूमिलिटी का संस्कार गलत लगेगा। इस समय अपने आप को प्रोटेक्ट रहना कितना इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सपोज आपको देखें उस सिचुएशन में, आपके अंदर भी वो अहंकार संस्कार तो एग्जिस्टिंग है,
1: है ना?
0: है। लेकिन उस दिन आपने अपने उस संस्कार को क्या किया था?
1: हमने दूसरा फोल्डर खोला।
0: दूसरा फोल्डर खोला,
1: जो नया वाला।
0: वेरी गुड।
1: पुराने फोल्डर को मैंने बोला तुम बैठे रहो,
0: बैठे
1: मेरे पास नया जो फोल्डर है दैट इज स्ट्रॉन्गर।
0: लेकिन इम्पोर्टेंट इज पुराना फोल्डर तो है। सो देर आर बिग चांसेस कि कोई आएगा और राय देगा जो हमारे पुराने संस्कार को खोलने को टेम्पटेशन हो गई है। जैसे हमने अगर सिगरेट, अल्कोहल, चाय, कॉफी कुछ छोड़ी और फिर हम सबके साथ बैठे, और सब ले रहे हैं और हमें भी कहा क्या होता है एक लेने से, तो हमारा लेने का चांस हो जाता है। सिमिलर विल हैपन विद दिस, कि अहंकार का संस्कार है, शायद उस दिन ये करने के बाद थोड़ा मन ने एक आधी बार बोला भी होगा, इतना चुप रह गया, मतलब बिल्कुल ही नहीं बोला, कैसे? एक बार मन जरूर कहा होगा थोड़ा
1: नहीं, जब इन्होंने बोला कि इतनी कमजोरी क्या है, तो
0: उससे पहले भी रिफ्लेक्ट करना है, उससे पहले भी। ये बहुत सूक्ष्म,
1: अंदर सटल एक बात आई थी कि डिड आई डू राइट, मेरा चुप रहना अच्छा होता था, ये बोल देना अच्छा था।
0: दिस इज ब्यूटिफुल।
1: घर मेरा, पार्टी मेरी, तुम बाहर वाले।
0: ये देखिए ये कैसे इनर वर्क चलता है, इट्स सच अ
1: ब्यूटिफुल।
0: ये थोड़ा थॉट क्यों आया? क्योंकि वो वाला संस्कार फोल्डर है, तो वो थॉट आएगा ही, क्योंकि वो संस्कार भी तो ट्रिगर करेगा ना एक इमोशन, तो इसलिए वो आया. नाउ सी व्हाई इट्स सो रिस्की, क्योंकि वो संस्कार है, वो थॉट ट्रिगर हुआ है, सामने से जैसे कोई वो वाली बात ही कहेगा कि ऐसे ही चुप रह गए, और ऊपर से ये भी कह देगा ये तो कमजोरी है, यू फेल्ड टुडे, इज दिस द वे टू बिहेव, पीपल कैन जस्ट ट्रैम्पल ओवर यू एंड वॉक अवे, पीपल कैन एक्सप्लॉइट यू. नाउ अगर ये थॉट हमारे ऊपर हावी हो गया तो हम कहेंगे हम उनके प्रभाव में आ गए. और फिर कई बार एक नहीं होता ना, 5-6 लोग होते हैं सेम राय देते हुए. जब इतने लोग वो ही राय देंगे, मतलब वो ही वाला फोल्डर खोलेंगे, और हमारे पास भी वो फोल्डर है, तो वो फोल्डर खुलने के चांसेस बढ़ जाते हैं. लेकिन उस दिन आपने क्या किया, अपनी एनर्जी को इस सब एनर्जी के प्रभाव से बचाया. दिस इज सो इम्पोर्टेंट इन टूडेज टाइम, दिस इज सो इम्पोर्टेंट कि हरेक जो राय दे रहा है वो किस संस्कार से दे रहा है, किस नजरिए से दे रहा है, क्या ये राय मेरे लिए सही है. एंड मेरे लिए सही है कि एक ही चेकिंग है, क्या ये आत्मा की प्योरिटी को बढ़ाएगा, शरीर के लिए मेरे हेल्दी है, और मेरे रिश्तों को पहले से और अच्छा बनाएगा, तो ये राय सही है. अगर ये तीनों में कहीं भी कुछ और करेगा तो ये राय मेरे लिए सही नहीं है, चाहे पूरी दुनिया वो ही राय दे रही है. इवन इफ द होल वर्ल्ड इज डूइंग इट, वॉट विल मेक मी फील लाइट, बॉडी हेल्दी, रिलेशनशिप्स ब्यूटिफुल, ये क्राइटेरिया हमेशा रखना है. उस दिन अगर रिएक्ट किया होता, कितना समय मन अशांत रहता उसके बाद. अगर आप रिएक्ट करते वो सामने से तो और रिएक्शन आता, फिर कोई और दो लोग साथ में और रिएक्ट करते, स्टोरी कुछ थी बन कुछ और जाती, मन कितने दिन परेशान रहता, शरीर पे इफेक्ट होता, रिश्ते तो ऊपर नीचे हो जाते, एक रिकॉर्डिंग भी बन जाती अंदर, जब भी वो सामने फिर मिलते वो रिकॉर्डिंग खुलती, अगली बार शायद हम फिर रिएक्ट कर देते, डेस्टिनी वुड हैव गॉन ऑन टू अ कम्प्लीटली डिफरेंट पाथ. कम्प्लीटली वन कर्मा कैन टेक आर डेस्टिनी इधर हियर और हियर. दैट्स वाई इट्स सो पावरफुल टू वॉक वेरी केयरफुली. इसीलिए कहते हैं वो जो दिया है उसकी जो लॉ है ना, उसको हमेशा संभाल के चलना पड़ता है, क्योंकि आज के समय में बहुत लोग हैं जो उस लॉ को फूक भी मारेंगे. एंड वो लॉ क्या है, हमारी सोल कॉन्शियस स्थिति, हमारी प्योरिटी, हमारी डिग्निटी. वो खुद भी फ्लिकर करेगी क्योंकि परिस्थितियां आएंगी, दूसरे लोग भी उसको पानी डालेंगे या फूक मारेंगे क्योंकि उनकी लॉ उतनी अच्छी नहीं चल रही है. लेकिन हमेशा ऐसे, इसीलिए कहते हैं दिया अगर बुझा तो अब शकुन है. अगर दिया बुझने भी लगता है ना, फटाफट भागते हैं उसको संभालने के लिए. इसीलिए कहते हैं कि अगर दिया बुझा तो अब शकुन है, और किस लिए अब शकुन होगा.
1: मैं तो समझा नहीं था अभी.
0: आप सोचो अगर सिर्फ वो एक फिजिकल दिए की बात होती है ना, फिजिकल दिया होता, आपके घर में लगा चल रहा है, मंदिर में है, बहुत सुंदर दिया जल रहा है, लेकिन हवा आई, पंखा चल गया, कुछ हो गया, दिया बुझ गया, तो उसमें अपशकुन क्या हुआ, जाके फिर से जला लेंगे उसको. अपशकुन क्या है,
1: यहाँ ज्ञान का दिया बुझ गया.
0: यह सोल कॉन्शियस स्थिति अगर थोड़ी देर के लिए भी बुझी तो कुछ ना कुछ अशुभ हो जाता है. इसलिए कहते दिया बुझा कुछ अशुभ होने वाला है.
1: बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन है इसका.
0: अशुभ हो जाएगा ना उस क्षण, अगर आप रिएक्ट कर देते तो बहुत कुछ अशुभ हो जाता. लेकिन उस क्षण आपने क्या कर दिया, उस दिए को होल्ड,
1: चारों तरफ से
0: जोर जोर से तूफान आया चारों तरफ से. अगर हम तूफान पर फोकस करते दिया बुझ जाता.
1: बुरा भला करके फिर अपने आप को जस्टिफाई भी करता, और मैं करता भी क्या, भरी महफिल में ऐसा बोल दिया, सबके सामने ये कर
0: लेकिन
1: दिया.
0: उतनी देर में दिया तो बुझ गया.
1: बुझ गया बात, साथ में फिर आगे भी दिया का तेल वेल गिर के तो दोबारा जलाने के काबिल भी नहीं रहता दिया.
0: इसीलिए जितना ध्यान उस दिए का रखते हैं, जोर से भाग कर आते हैं कि दिया बुझने से पहले उसको क्या कर ले, संभाल ले. जितना ध्यान उस दिए का रखते हैं, उससे कई कई कई कई कई गुना ज्यादा ध्यान इस दिए का रखना है. कभी कुछ आए भी ऐसी थॉट्स एंड फीलिंग्स, जल्दी से ज्ञान का ग्रिप भी डालें,

0: ज्ञान का उस समय सुन ले, पढ़ ले, दिया ठीक होने लगता है, लौ फिर जलने लगती है, क्योंकि वो जो नेगेटिव थॉट है उसको कुछ और ज्ञान मिलता है। तूफान है, अपना हाथ पकड़ ले, एंड लाइफ विच हैज कम आउट वेरी ब्यूटिफुल हियर। प्रभाव में नहीं आना किसी की बात के, सिर्फ राय दे रहे हैं, दोस्त है, परिवार है, रिश्तेदार है, इज नॉट नेसेसरी।
1: अगला आदमी गुस्सा कर रहा है तो और मैं भी करूँ, वो भी तो प्रभाव में आना ही हुआ ना।
0: वो तो एनर्जी के प्रभाव में आ गए, ये हम कह रहे हैं किसी की बात के प्रभाव में आ गए।
1: उसके बाद तो वो जब लोग बोलते हैं आपको, आपने आप वीक हैं, आप ये हैं,
0: दूसरे आपका एडवांटेज लेंगे, ये तो फिर ऐसा करेंगे, आप ही हर टाइम झुकेंगे क्या, कितना आप झुकेंगे, लोग आपको एक्सप्लॉइट करेंगे इस तरह से। दिस राय डज नॉट वर्क फॉर मी। तो ये प्रभाव में नहीं आने से वो जो तीसरा फोल्डर था कि एनवायरमेंट के संग से जो रंग बन जाता है उसमें हम बच जाएंगे और हम अपने संस्कार को जो हमारे लिए हेल्दी है उसको पकड़ के चलते जाएंगे, वो रीइन्फोर्स होता जाएगा फिर। तो चार फोल्डर हमने देख लिया, अब पास्ट बर्थ से कैरी फॉरवर्ड संस्कार, फैमिली से मिले संस्कार, एनवायरमेंट संग से क्रिएट हुए संस्कार, और अपनी इच्छा शक्ति, अपनी विल पावर से क्रिएट हुए संस्कार। चार फोल्डर यहाँ पर है।
1: थैंक यू सो मच।
0: ओम शांति।
1: ओम शांति। ओम शांति।
2: इन वन डे वी रिसीव सो मच इन्फॉर्मेशन, क्रॉस so many situations, create varied experiences, and all this gets recorded on the soul. Imagine the recordings created in one lifetime, and then imagine the recordings created in many lifetimes. A soul is a collection of all these recordings. Like we have folders on the computer, similarly, look at the folders of sanskars on the soul. One folder has many sanskars created in past births. Second folder has sanskars which were created because of the influence of sanskars of parents and immediate family. Third folder of sanskars we create due to influence of environment, influence of country, caste and culture in which we were born, influence of school, workplace, friends and people we meet on the journey of this life. The advice that family and friends will give us will be through their acquired sanskars. It will be based on how they would respond in that situation. We need to check whether that advice is right for us and our karmic accounts. Otherwise, we need to protect ourselves from their influence.
3: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Rajyoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099 99 559 660.

0: जो स्टाइल है उसको लाइफ स्टाइल कहते हैं.
1: लाइफ स्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट वॉट वी आर ईटिंग ड्रिंकिंग वेयरिंग. लाइफ स्टाइल इज अबाउट वॉट वी आर थिंकिंग स्पीकिंग बिहेविंग. दैट्स माई लाइफ स्टाइल.
2: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।

नमस्कार, मैं हूं महेश। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: लिए सिविल इंजीनियरिंग में कैसे करियर बन सकता है और क्या क्या बेनिफिट है और कैसे हम लोग एक्सेल करके आज के समय में सोसाइटी को, समाज को भी हेल्प कर सकते हैं और अपना करियर भी अच्छा बना सकते हैं, इस विषय को लेकर बात करने वाले हैं। तो आप सभी की तरफ से महेश जी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू रमेश जी।
0: जी जी जी नमस्कार महेश जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बहुत बढ़िया।
0: मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आपकी पढ़ाई वगैरह कहाँ पर हुआ?
1: एक्चुअली रमेश जी, इसमें शुरुआत कैसे हुई मैं आपको बताता हूँ।
0: जी,
1: मैंने
0: जी,
1: सिविल इंजीनियरिंग क्यों सिलेक्ट किया?
0: हाँ,
1: तो मेरे पिताजी एक्चुअली अभी गवर्नमेंट सर्वेंट है, मेरे पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट है और उन्होंने पहले बिजनेस किया है और वो बहुत बिजनेस माइंडेड आदमी है।
0: अच्छा।
1: तो उन्होंने हमेशा से मुझे ऐसी पालना दी है कि तुम्हें बिजनेस ही करना है, तुम्हें जॉब करना ही नहीं है।
0: अच्छा।
1: तुम बिजनेस ही करोगे। तो मैंने आज तक जॉब नहीं की है, ये मैं आपको बता देता हूँ।
0: ओके।
1: बीच में थोड़े सेटबैक्स आए थे तो ऐसे ही कभी होती थी इच्छा कि जॉब करूंगा, क्या करूंगा, क्या करूं, क्योंकि एक्चुअली मेरे करियर की शुरुआत ही कोरोना में हुई। तो बहुत दिक्कत हुआ था, तो वो बिजनेस माइंडेड सोच की वजह से फिर मैंने एक सिविल इंजीनियरिंग सिलेक्ट किया, क्योंकि हमें सिविल साइड आगे बढ़ने में शौक था मेरे पिताजी को। तो बस यही है कि इसलिए मैंने सिविल इंजीनियरिंग प्रिफर किया।
0: तो आपने पढ़ाई वगैरह कहाँ से?
1: मैंने पढ़ाई की महसाना गुजरात से।
0: अच्छा,
1: वहाँ
0: अच्छा,
1: गणपति यूनिवर्सिटी करके है, वहाँ मैंने पढ़ाई पूरी की। और हमारा बीटेक का प्रोग्राम होता है, वो 4 साल का प्रोग्राम होता है।
0: अच्छा अच्छा।
1: हाँ, फिर जैसे 12th खत्म हुआ तो मैंने किसी और फील्ड में अप्लाई नहीं किया, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, जैसे इंजीनियरिंग में काफी फील्ड्स होती है, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल, कंप्यूटर, किसी में मैंने अप्लाई नहीं किया। मैंने सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग सिलेक्ट किया, सारी कॉलेजेस डाली, सिविल इंजीनियरिंग सिलेक्ट किया और उसमें फिर हमें एडमिशन मिला महसाना गणपति यूनिवर्सिटी में।
0: बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मैं चाहूंगा कि कुछ स्कूल की आपकी बचपन की यादें हमें ताजा कराइए, टीचर्स वगैरह का कभी कुछ आपको बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिला हो किसी चीज को लेकर और किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा आपको डांट पड़ी हो।
1: एक्चुअली मेरा एक फेज रहा है कि मैं बचपन में बहुत शैतान था, फिर बड़े होते होते सुधरता गया।
0: अच्छा।
1: अभी एकदम ही सुधरा हुआ आदमी हूँ।
0: तो स्कूल में कुछ ऐसे इंसिडेंट याद हो?
1: स्कूल में बचपन में तो बहुत शैतानी की थी, तो ऐसे मार भी बहुत पड़ी है।
0: अरे बाप रे।
1: तो उसमें तो बहुत ऐसे रहा है, लेकिन ऐसे एक इंस्टेंट ऐसे मैं अचानक अभी नहीं बोल पा रहा हूँ।
0: जी, जी जी।
1: लेकिन ऐसे काफी अच्छे दोस्त बने, बहुत ऐसा घूमने फिरने का शौक रहा है, तो अच्छा माहौल था और हम एक सीधे साधे लोग थे, लेकिन मस्ती करना ये सब हम प्रेफर करते थे, हमको अच्छा लगता था दोस्त।
0: अच्छा, कोई अपने स्कूल टाइम में पिकनिक गया हो तो उसकी यादें अगर हो तो?
1: पिकनिक अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे पिकनिक जाना स्कूल में बहुत साल में एक बार जाते थे, बहुत बड़ी बात होती थी बच्चों के लिए।
0: जी, जी, जी।
1: तो हमें बहुत खुशी होती थी पिकनिक जाते थे। तो एक जैसे दूर लेके जाना पिकनिक ये हमारे स्कूल में प्रिफर नहीं होता था।
0: अच्छा, अच्छा।
1: लेकिन एक हमारी बैच थी जो हम 11th में आए, तो हमको जैसे मैं हमारा रेसिडेंस है सूरत से नजदीक है
0: जी,
1: तो हमें वो मुंबई लेके गए थे एसएल वर्ल्ड।
0: अच्छा, अच्छा, अच्छा।
1: तो वो हमारा सबसे यादगार पिकनिक था, बाकी हमको आजू बाजू लेके जाते थे, लेकिन ऐसी पूरी स्कूल में एक ही बैच था जिसे एसएल वर्ल्ड लेके गए, तो वो बहुत हमें खुशी हुई थी उस टाइम में।
0: फर्स्ट टाइम
1: एक्सपीरियंस था, काफी खुशी हुई।
0: बहुत बढ़िया। तो अभी वापस स्कूल में जब पिकनिक के साथ में आप गए, उसके बाद फिर से वापस कभी गए हैं आप एक्सेल वर्ल्ड में?
1: नहीं, एक्सेल वर्ल्ड हम खाली बाहर से देख के आ गए थे, काफी भीड़ देख के।
0: अच्छा।
1: ये बहुत भीड़ है तो चलो रहने दो, वो माता पिता के साथ गए थे।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: तो
0: फिर से वापस नहीं?
1: फिर नहीं, खाली बाहर से फिर निकल गया, बहुत भीड़ है देख के।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उधर क्या क्या चीजें हैं कुछ बताइए?
1: वहाँ पे कैसा है कि काफी ऐसे वर्ल्ड क्लास राइड्स है जो बहुत एंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। एक वाटर पार्क है, वाटर पार्क फिलहाल मैं नहीं गया हूँ, लेकिन वो राइड्स में मैंने बहुत एंजॉय किया। मतलब एक फ्यूचरिस्टिक राइड्स है वो, जैसे यहाँ नॉर्मल कभी कभी गांव में साल में एक बार जैसे मेले लगते हैं, वैसी राइड्स नहीं है, बहुत फ्यूचरिस्टिक राइड्स है। तो जो भी ये सुन रहा है वो एसएल वर्ल्ड हो गया, इमेजिका हो गया, उनको जाना चाहिए।
0: सही बात है,
1: साल में एक बार जाइए, लाइफ में एक बार तो जाइए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, कुछ हटके चीजें होती हैं।
1: अच्छा,
0: जब गांव के साइड में अगर आपको लेके जाते पिकनिक में नजदीक में, तो वहां पर कुछ यूनिक चीजें कभी आपको देखने को मिला हो, कुछ खास लेक्चर वगैरह हुआ हो या

0: ऐसी चीजें दिखाने के लिए लेके गया हो वो कुछ याद है तो?
1: यूनिक चीजें एक्चुअली वहाँ ज्यादातर गांव में कैसे मेले लगते हैं कि वहाँ पे खाने पीने के स्टॉल्स होते हैं, फिर एक वो जैसे छोटी छोटी वो खेल होते हैं जैसे गन से बलून्स को फोड़ना, फिर वो रिंग्स वो जाल के वो गिफ्ट लेना
0: जी, जी,
1: तो वो सब होता था। तो वो सब ऐसे कभी कभी ऐसे मजा आता है अभी
0: जी, जी,
1: जैसे अभी भी होता है तो हम खेलते हैं, बचपन की यादें ताजा
0: करते हैं। एक और बात पूछना चाहूंगा, जैसे कि बचपन में हम लोग पढ़ाई करते हैं, हिस्ट्री हम लोग के बीच में आ जाती है तो कहीं ना कहीं हमें कोई एक बंदा जो है, एक जन की स्टोरी हमें पसंद आ जाती है। बहुत सारे लीडर्स हैं, सबकी स्टोरी तो सर को बताना है लेसन के अनुसार, लेकिन फिर भी किसी एक बंदे का जो है लीडर का, वो हमारे मन में ऐसे छाप छोड़ जाता है। तो ऐसे कौन है और थोड़ा सा उनके बारे में बताइए।
1: वैसे हमें शिवाजी
0: जी जी जी
1: और पृथ्वीराज चौहान इनसे बहुत इंस्पिरेशन मिला है।
0: अरे वाह।
1: तो वो हमें शिवाजी पृथ्वीराज चौहान सर के पास मतलब उनके उनके बारे में मैं ज्यादा सुन नहीं पाया हूँ, लेकिन शिवाजी हमारे यहाँ के एक जैसे मैं हमारा जो घर है वो महाराष्ट्र बॉर्डर की तरफ लगता है, वैसे हम गुजरात से ही हैं लेकिन महाराष्ट्र बॉर्डर की तरफ, तो वहां पे शिवाजी का बहुत क्रेज है। वो ऐसे लीडर हैं जिन्होंने अभी भी आज की डेट में कोई भी मराठी गिनेंगे 90% ऑफ मराठीज हैव देयर फ्लैग्स, वो शिवाजी का गाड़ी पे पोस्टर लगाएंगे, मतलब उन्होंने इतना इंस्पायर किया लोगों को कि आज की डेट में भी उनकी पूजा होती है।
0: बिल्कुल।
1: तो वैसे लीडर्स काफी कम हुए इंडिया में, तो उनको बहुत बहुत सैल्यूट।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया और शिवाजी महाराज को आपने याद किया, और एक ऐसा बंदा है जिन्होंने स्वराज्य स्थापन करने के लिए काफी मेहनत भी किया और पूरे भारत में वो जो है घूमकर जो है लोगों को जागरूक करता और स्वराज्य के लिए, स्वराज्य स्थापन करने के लिए उन्होंने काफी काम किया। इसीलिए महाराष्ट्र में उनको आराध्य देवता के रूप में आज भी याद करते हैं और उनकी गौरव गाथा जो है बच्चों को भी सुनाते हैं। तो आइए एक और बात मैं पूछना चाहूंगा, स्कूल में एग्जाम फियर वगैरह रहा क्या आपको भी?
1: एक्चुअली एग्जाम फियर तो कभी नहीं रहा, और सच बोलूं तो मैं तो एक मैंने आज तक मुझे याद नहीं है कि मैंने बहुत पहले से पढ़ाई की हो, आखिरी आखिरी कुछ दिनों में ही मैंने पढ़ाई की है।
0: अच्छा।
1: तो उस टाइम पे एक स्ट्रेस तो डेवलप होता ही है, लेकिन एग्जाम से डरते नहीं थे, कि एग्जाम से कभी डर नहीं लगा, पास तो हम हो ही जाते थे, उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं, और अच्छे मार्क्स से पास होते थे, लेकिन आखिरी टाइम पे पढ़ना एक हमारी बुरी आदत रही है। तो जो भी है सुन रहा है, आखिरी टाइम पे मत पढ़िए, थोड़ा पहले से पढ़ाई करते रहिए, थोड़ा बीच बीच में मतलब अगर इंटरेस्ट नहीं भी है तो भी स्टार्टिंग से ही पढ़ाई करिए, भले आधा घंटा दीजिए एक घंटा दीजिए, लेकिन स्टार्टिंग से पढ़िए, तो एक वो स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा और पढ़ाई के प्रति आपको वो घृणा नहीं आएगी, मतलब एक
0: बिल्कुल
1: अच्छा लगेगा आपको कि चलो हम अच्छे तरीके से पढ़ पा रहे हैं।
0: जी जी जी, ये महेश जी आपने बहुत ही अच्छी बात बताया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि भाई एग्जाम के पहले हम लोग पढ़ लेंगे, और मोस्टली ऐसा 80-90% बच्चों का ये ख्याल रहता है, तो ये ख्याल न रहे, इसके लिए हमें जो है थोड़ा सा ध्यान देना है और बहुत ही अच्छी तरह से अपनी जो है रेगुलर पढ़ाई करनी है, ताकि हम अपने एग्जाम के पहले हमें कोई बहुत ज्यादा मेहनत करने या रात भर जाग के पढ़ने की जरूरत ना पड़े और आराम से लाइटली अपने एग्जाम को दे और अच्छे मार्क्स से हम पास हो जाए। तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर महेश जी से बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और हमारे साथ महेश जी हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं। और महेश जी ने अपना बचपन की स्कूली जीवन की यादें बहुत अच्छी तरह से ताजा कराई हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को फिर से महेश जी के साथ जोड़ना चाहूंगा। महेश जी बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया रमेश जी।
0: तो चलिए मैं चाहूंगा कि आपकी पढ़ाई पूरी होने के बाद फिर आपने कुछ सोचा नहीं, क्योंकि आपने पहले ही बताया कि मुझे बिजनेस ही करना है, तो ऐसा नहीं हुआ कि डिग्री आया तो नौकरी भी करके एक बार एक्सपीरियंस ले लेते फिर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, या क्या हुआ उसके बाद वो बताइए।
1: एक्चुअली जैसे मैंने सिविल इंजीनियरिंग शुरू किया था
0: जी जी जी,
1: तब मैं साथ ही साथ उसके कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ एक साइट विजिट करता था और अनुभव लेता था, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था, पूरा इंटरेस्ट था। तो मैंने पहले दो साल तो ठीक है, मतलब कम गया, लेकिन आखिरी के दो साल में बहुत गया उनके साथ। अच्छा। तो मुझे एक अनुभव होता गया और मुझे अच्छा अनुभव हुआ उनके साथ। जैसे ही फिर पढ़ाई खत्म की तो अभी उसके बाद तो मैं थोड़ा डाइवर्ट भी हुआ, क्योंकि कोरोना टाइम पे सब प्रॉब्लम्स आ गए थे।
0: बिल्कुल।
1: तो फिर उसी बीच फिर मैंने एक एक्सपोर्ट बिजनेस का भी सोचा।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो काफी कुछ ऐसा हुआ, तो वो अभी ये रेडियो के माध्यम से इतना ज्यादा मैं एक टाइम में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन
0: बिल्कुल,
1: काफी
0: जी जी। अच्छा, सिविल इंजीनियरिंग में हमें क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, किस तरह से हम, अगर समझो गांव के साइड का बच्चा है और वो सिविल इंजीनियरिंग कर लेता है, तो वो चलिए एक बार साइट विजिट जैसे आपने कहा ये तो जरूरी है, क्योंकि बिना साइट पे गए तो सीख नहीं पाएंगे प्रैक्टिकल नॉलेज, क्योंकि पढ़ाई में तो हम लोग किताबी नॉलेज हमारे पास आ जाता है और कैसे एक चीजें मिक्स करना है या कौन कौन सी चीजें कितनी काम की है वो सारी चीजें हम पढ़ लेते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में हम जब चीजें को देखते हैं हमारे सामने हो वो हमारे हाथों से वो चीजें होनी शुरू हो जाती है, तो उसका एक बेनिफिट तो हमें मिलता ही है। लेकिन सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद हमें नौकरी करने से फायदा है या फिर बिजनेस करने से फायदा है, ये थोड़ा सा आप अगर अपने मन की बातें शेयर करेंगे तो अच्छा है।
1: एक्चुअली सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसी फील्ड है कि गांव के बच्चे भी उसमें बहुत एक्सेल कर सकते हैं।
0: अच्छा।
1: आपको उसमें एक अनुभव तो लेना ही है, ये एक पक्की बात है। कि आपको या तो आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ अनुभव लीजिए, या पढ़ाई के बाद कम से कम एक साल का किसी एक्सपीरियंस पर्सन के साथ काम करिए। तो आपको कैसे लेबर हैंडल करना है, कैसे, जैसे उसमें एक बोलते हैं सिविल इंजीनियरिंग में लाइन लेवल, प्रॉपर एक बिल्डिंग लाइन लेवल में बनती जाए, प्रॉपर एक नॉलेज हो, बेसिक नॉलेज

0: क्लियर होना चाहिए,
1: बिल्कुल
0: बेसिक से लेकर एडवांस नॉलेज सब क्लियर होना चाहिए। तो आप इसमें, ये ऐसी फील्ड है कि लेबर इंटेंसिव फील्ड है, तो इसमें काफी लोग आपको उल्लू बनाएंगे कि ये काम हो गया है लेकिन वो अच्छे से हुआ है नहीं है। आपको एज अ सिविल इंजीनियर उनके स्पेसिफिकेशन सब पता होने चाहिए, तो उसके लिए आपको एक मिनिमम एक साल का अनुभव तो लेना ही चाहिए, एक साल से ज्यादा का मतलब एक लेना चाहिए, लेकिन मिनिमम आप एक साल लीजिए।
1: तो
0: फिर आप अगर आप गांव के हैं तो आप बहुत एक्सेल कर सकते हैं अगर आप बिजनेस करेंगे तो उसमें।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: ये बहुत अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे जो विद्यार्थी मित्र हमें सुन रहे हैं, तो आप चाहे गांव से हो शहर से हो इसके लिए कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर आप गांव से हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। और क्या हम लोग इसके साथ में बिजनेस या फिर नौकरी करना अच्छा है, ये थोड़ा सा बताइए।
0: एक्चुअली इसमें जैसे नौकरी करना तो अच्छा ही है अगर हमें एक कोई ऐसा पैकेज मिले तो, लेकिन बिजनेस गांव की साइड ज्यादा, क्योंकि अभी जैसे जो गवर्नमेंट अभी आई है वो काफी सपोर्ट कर रही है कि स्टार्टअप्स को और डेवलपमेंट पे बहुत ध्यान दे रही है, और आज के टाइम पे लोगों को अपना घर चाहिए, लोग ऐसे भाड़े पे नहीं रहना चाहते।
1: जी, जी, जी, जी।
0: तो वो एक थिंकिंग अभी इंडिया में डेवलप हो गई है, जैसे ये अभी जो कोरोना हो गया उसके बाद काफी लोगों में ऐसा विचार आ गया है। तो और आजकल होम लोन्स भी मिलना बहुत इजी है।
2: बिल्कुल, बिल्कुल,
0: हाँ,
2: बिल्कुल।
0: तो आप इसमें बिजनेस करेंगे तो जैसे आप एज ए कॉन्ट्रैक्टर भी बिजनेस कर सकते हैं, तो इसमें काफी लोग आपको सीधा कॉन्ट्रैक्ट देंगे, आपको उसमें उतना कुछ इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, आपको लोगों का पैसा लेना है उसी पैसे से बिल्डिंग बनाना है, खाली आपको एक अनुभव चाहिए, पक्का अनुभव जो आपको बाकियों से थोड़ा हटके रखे। और हर गांव-गांव में आजकल सिविल इंजीनियर की एक डिमांड है, तो आजकल लोग अनपढ़ कॉन्ट्रैक्टर को ना प्रीफर करके पढ़े लिखे कॉन्ट्रैक्टर को प्रीफर करेंगे।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो आप इसमें कोई भी जो आदमी इंटरेस्ट लेके काम करेगा वो बिल्कुल आगे बढ़ सकता है।
2: सही बात है महेश जी, काफी अच्छी बात आपने बताया और हमारे विद्यार्थी मित्र जो सुन रहे हैं, दोनों तरफ से आपको जो है बेनिफिट है, आप बिजनेस भी कर सकते हैं नौकरी भी कर सकते हैं, बस इतना है कि नौकरी करते वक्त अच्छी पैकेज आपको मिल रही है और आप उसमें, एक तो दो चीजें हैं, पहले शुरुआत में मुझे लगता है कि नौकरी कर लेना चाहिए ताकि आपको जो है एक अनुभव भी आ जाता है, और प्लस क्या है मार्केटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, तो जिस कंपनी में आप रहेंगे उसमें मार्केटिंग का भी एक पहलू रहता है, आप भले मार्केटिंग में ना हो लेकिन आप जो भी काम करेंगे तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से आपकी जो है संपर्क भी हो सकता है और किस तरह से मार्केटिंग होता है ये आपको पता चल जाएगा, तो ये आपको बाद में बिजनेस करने के लिए काफी हेल्प करता है, क्योंकि एक बार आप बिजनेस शुरू कर देते हो तो क्या हो जाता है कि आपका सेल बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर सेल नहीं कर पाते हैं तो फिर सारी चीजें गड़बड़ हो जाती हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट रूल है कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग करते हैं तो 2 साल 3 साल आराम से आप जो है कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी में कम पैसे में भी आप नौकरी करना, ज्यादा एक्सपीरियंस इम्पोर्टेंट है ना, तो एक्सपीरियंस आपको वहां से मिलेगा और वो एक्सपीरियंस आपको एक्सेल करेगा, आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और आजकल तो कंस्ट्रक्शन ऐसा है कि गांव में भी लोग जो है बिल्डिंग में रहना पसंद कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपके लिए स्काई इज द लिमिट है, जितना आप करेंगे उतना आप कर सकते हैं, बस इतना ही कि कोई चीज ओवरलोडेड भी नहीं हो, आप अपने जीवन को देखते हुए प्रॉपरली आप एक स्ट्रेटजी बना के आप शुरू कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये बिजनेस करने में कोई ज्यादा फाइनेंस की जरूरत नहीं पड़ती होगी।
0: फाइनेंस जैसे इसमें कैसा है कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, कि अगर आपको खुद का डेवलपमेंट करना है, जैसे खुद का प्रॉपर्टी डेवलप करना है या एज अ बिल्डर बनना है, तो ये बहुत फाइनेंस की इंटेंसिटी थोड़ी ज्यादा लगती है इसमें।
2: अच्छा,
0: लेकिन अगर आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं तो आपको जैसे आपका जो आप उसमें भी काफी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो आप पे है, अगर आपको पूरा अपना जो जैसे मटेरियल होता है इसमें शटरिंग वर्क होता है, प्रॉप वर्क्स होते हैं और जो भी इसमें सामान चाहिए कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, तो वो सब भी एक इन्वेस्टमेंट ही है, लेकिन वो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप वो रेंटल पे भी ले सकते हैं, उसमें आपका प्रॉफिट कम होगा लेकिन एज आपका एक काम शुरू होगा, और जैसे जैसे आपका काम शुरू होगा आपने अर्निंग्स कर ली तो वो आप अपना खुद का भी ले सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर से चालू करना बहुत अच्छा है, और अगर आप एक ऑलरेडी आपका बैकग्राउंड अच्छा है, आपके पास पैसे हैं, आपको इन्वेस्ट करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप एज ए बिल्डर भी काम कर सकते हैं।

0: बहुत ही अच्छी बात आपने बताया महेश जी, और आशा करूंगा हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को भी अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं एक और बात आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कि एकदम से अगर हम लोग कोई नई जगह पे जाते हैं या कोई नई कंपनी में लगते हैं, तो वहां पर हमें जो है किस किस टाइप के जो है चीजों का ध्यान रखना है।
1: पहले तो मैं और एक चीज भूल गया था, तो मैं एक आपको उसके बारे में बता देता हूँ।
0: बिल्कुल,
1: एज अ सिविल इंजीनियर आपको अगर आप में नॉलेज है, स्किल्स है, तो आपको आपका उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर भी नहीं बनना चाहते, बिल्डर भी नहीं बनना चाहते एज ए सिविल इंजीनियर, तो उसमें आप खाली एक सुपरविजन करके भी अच्छे पैसे कमा सकते हैं।
0: अच्छा,
1: अगर आपको स्किल्स है
0: हाँ।
1: और आप लोगों के साथ आपका एक कम्युनिकेशन अच्छा है, तो आप सिर्फ एक सुपरविजन करके आपका पूरा काम कर सकते हैं। उसमें कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है आपको, खाली एक जैसे कुछ सॉफ्टवेयर्स आते हैं, ऑटो कैड आता है, और थोड़ा जो आर्किटेक्चरल सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको सीखना है, और आप वो बना के जैसे प्लान होते हैं, एलिवेशन होते हैं, डिजाइनिंग करके आप उसमें अर्निंग कर सकते हैं। उसमें आपको सिर्फ ऑफिस चाहिए और स्किल्स चाहिए। और ये भी है,
0: तो ये भी एक अच्छी चीज है, मतलब बहुत कम इन्वेस्टमेंट में आप एक अच्छा जो है साइट ऑफिस खोल के आप इनकम शुरू कर सकते हैं पब्लिक सर्विस देते हुए।
1: पब्लिक सर्विस एज ए सर्विस।
0: जी जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया। आशा करूंगा हमारे विद्यार्थी मित्रों को ये भी बात समझ में आ गया होगा, और इस तरह से जो है आप थोड़ा सा स्मार्ट बन के जो है काम कर सकते हैं इन चीजों को, और आप खुद इंक्लूड ना होते हुए दूसरी कंपनीज को भी आप उनके साथ जो है टाइप करके के काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे वेज हैं, बस आपको जो है थोड़ा सा अपना एक्सेलेंसी यूज करते हुए कस्टमर सेटिस्फेक्शन की ओर अगर आप ध्यान देते हैं तो वो ज्यादा बेनिफिट हमको सभी को मिलता है। यानी कोई भी बिजनेस आप करेंगे तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज अवर मोटो ऐसा बोला जाता है, तो ये बिजनेसमैन का स्लोगन है। अगर आप इस चीज को खड़ा माना अच्छी तरह से इस पे उतरते हैं तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने में, है ना। तो यहां आप कम्प्रोमाइज करते हैं तो फिर आपके लिए मुश्किलें बनी रहती है, तो ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिए। आइए यहां पर लेते एक छोटा सा ब्रेक, सुनते एक और प्यारा सा गीत। आप सुना है ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: ओम शांति। नमस्कार, मैं आकाश मानिसार से नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक वॉलंटियर मेंबर, आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ आज के खास मेहमान जिन्हें आप सुन रहे हैं, महेश जी हैं जो सिविल इंजीनियर हैं और अभी आप जो है बिजनेस करते हैं, तो निश्चित तौर पे एक अच्छा अनुभव आपके पास है बिजनेस का। और मैं चाहूंगा कि आज हमारे विद्यार्थी मित्रों को भी अच्छा लग रहा है क्योंकि एक प्रैक्टिकल नॉलेज और एक्सपीरियंस जब हम लोग शेयर करते हैं तो तुरंत उन्हें पता चल जाता है, विद्यार्थियों को एक फोकस क्लियर हो जाता है कि हाँ इसमें ये चीजें हैं। तो मैं चाहूंगा कि सिविल इंजीनियरिंग में अगर हम खुद का बिजनेस करते हैं तो सबसे बड़ा रिस्क कहां पर होता है?
2: इसमें सबसे बड़ा रिस्क है लैक ऑफ नॉलेज। अगर आपने
1: प्रैक्टिकल नॉलेज की,
2: मैं लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज,
1: जी जी जी,
2: थियोरिटिकल तो इसमें काम ही नहीं करता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। और जैसे उसमें जैसे हम बोलते हैं, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है आपको तो जैसे कॉलम, बीम, स्लैब ये सब आता है, तो उसके प्रॉपर रीडिंग्स आपको आने चाहिए। जैसे अगर आप उसके डिजाइन कर रहे हैं तो आपको प्रॉपरली आना चाहिए, क्योंकि एक पूरा एक बिल्डिंग का लोड है जो लोड हम जमीन पर ट्रांसफर कर रहे हैं। और सामने वाली बिल्डिंग, जैसे आपने बिल्डिंग टच है,
1: बिल्कुल, वो
2: बिल्डिंग पे पूरा लोड जा सकता है अगर आपने प्रॉपर नॉलेज लगा के काम नहीं किया तो। ऐसे जैसे अर्थक्वेक, आजकल अर्थक्वेक की भी प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, जैसे तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स होती है, तो वो प्रॉपर आपको एक जो ड्राइंग्स होती है, उनकी डिजाइंस होती है, वो प्रॉपर स्टडी करना आना चाहिए। नहीं तो फिर कुछ भी, मतलब एक हादसा हो सकता है। इसमें काफी ये जिम्मेदारी वाला काम है, ये उतना भी आसान नहीं है जितना लोग सोचते हैं।
1: बिल्कुल
2: जिम्मेदारी वाला काम है, तो इसमें नॉलेज सबसे इम्पोर्टेंट है। और हमें अच्छे से पहले तो प्रैक्टिकल अनुभव लेके एक नॉलेजफुल आदमी से अनुभव लेना है, उसके बाद आगे बढ़ना है।
1: ये बहुत अच्छी बात आपने बताया महेश जी। और मैं चाहूंगा कि कुछ एग्जांपल अच्छे बिल्डर्स का अगर आप दे पाए तो।
2: मेरे सबसे फेवरेट जो बिल्डर्स मैं बोल सकता हूँ वो
1: जी,
2: है हीरानंदानी मुंबई। जैसे आप मुंबई में अगर
1: पोवई
2: जानते हैं तो पूरा उन्होंने डेवलप किया है।
1: जी जी,
2: लोधा हो गया, हीरानंदानी हो गया।
1: हाँ,
2: तो वैसे बिल्डर्स काफी इंस्पायरिंग है।
1: जी जी जी, तो इनमें क्या देखा आपने, दूसरे से ज्यादा इनको क्यों पसंद कर रहे हैं, क्या है इसमें?
2: डिजाइन एंड प्रैक्टिकलिटी। जैसे आप अगर हीरानंदानी गार्डन्स गए मुंबई में तो आपको जो भी एक सिविल इंजीनियर है उसे एक बार वहां जाना चाहिए। जो एक प्रैक्टिकल डिजाइन है वो उसको दर्शाते हैं, और उनकी जो बिल्डिंग के डिजाइन आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा मैं यहीं पर रहूं। तो एक वो फील आना चाहिए कस्टमर को।
1: बिल्कुल,
2: तो उनका वो अनुभव अच्छा है उसमें।
1: महेश जी, काफी अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि आपका जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो बातें हैं वो हम सभी को मोटिवेट तो करता ही है, और साथ ही साथ एक प्रैक्टिकल नॉलेज जब व्यक्ति सुनाता है तो इनसाइड भी हमारा शुरू हो जाता है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे विद्यार्थी मित्रों को खास सिविल इंजीनियरिंग करते वक्त, पढ़ाई करते वक्त किन किन चीजों का उन्हें ध्यान में बातें लानी है, किन किन चीजों को वो ध्यान रखे।
2: पढ़ाई करते करते एक्चुअली आपको पहले तो अपना इंटरेस्ट पता होना चाहिए कि आपको किस साइड जाना है। इसमें काफी सारी फील्ड्स है।
1: बिल्कुल,
2: जैसे एक डैम जैसे बनते हैं तो उसका एक फ्लूइड मैकेनिक्स होता है।

0: से स्ट्रक्चर है तो उसका स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग होता है।
1: जैसे
0: एनवायरमेंट साइड आपको जाना है तो एनवायरमेंटल साइंस होता है उसमें।
1: जी जी,
0: तो इसमें काफी सारी फील्ड्स है। आपको पहले तो अपना इंटरेस्ट पता करना है विद इन अ ईयर। तो जैसे पहले ईयर में सब कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आपको विद इन अ ईयर वो सब्जेक्ट पहले तो आपको पता करना है। उसके बाद जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट आए उस सब्जेक्ट को डीपली स्टडी करना है।
1: बिल्कुल,
0: बाकी सबका नॉलेज आपको होना चाहिए, भले उसमें थियोरेटिकल नॉलेज ही हो उसका नॉलेज होना चाहिए, लेकिन जो आपको सब्जेक्ट पसंद है उसका प्रैक्टिकल अनुभव साथ साथ में लेते चलना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। महेश जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे विद्यार्थी मित्रों को आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में, जहां पर हमने सिविल इंजीनियरिंग की बातें की और निश्चित तौर पे हर चीज जो है, जो भी हमने शुरुआत से लेकर अब तक बातें की, हर चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपने ध्यान से सुना हो आज का ये एपिसोड, तो आपके लिए बहुत बड़ा जो है सक्सेस का की मंत्रा मिल गया है, वो भी सिविल इंजीनियरिंग में। तो मैं चाहूंगा कि इसको 2-3 बार आप विद्यार्थी मित्रों को सुनना चाहिए प्रोग्राम को, और पॉइंट्स निकाल के रखिए, ताकि आपको कोई आगे करियर बनाने में या सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा। और एक अच्छा जो है, जैसे एग्जांपल्स के तौर पे अगर हम लेके, तो सचमुच आपको जो है ना, ये सारी चीजें नॉलेज के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल देखने की भी जरूरत है। नॉलेज एक बार की बात है कि आपको पता चल गया कि क्या फार्मूलाज है, किस तरह से चीजें अच्छी बनती हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए क्या फार्मूलाज हैं, कैसे मिक्सचर बनता है, ये सारी चीजें आपको एक बार फिर से भी मिल जाएंगी, है ना। लेकिन आपको मेन आता है कि कैसे वो चीजों को देखूं मैं, और वो चीजें प्रैक्टिकल कहां कैसे हो रहा है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। साइट विजिट, साइट में आप, मुझे लगता है कि कभी कभी आप वर्कर बन के भी ये सारी चीजें करके देखिए, है ना।
0: यस, बिल्कुल।
1: एक मिस्त्री कैसे काम करता है, एक जो लेबर है वो उनके साथ कैसे सपोर्टिव काम करता है। मैं चाहूंगा कि एक बार जो है ना, आप अपने आप को भूल जाइए और सारे काम को खुद करके देखिए, ताकि ये क्या है, क्योंकि एक लेबर अगर मेहनत कर रहा है तो वो भी आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, एक मिस्त्री काम कर रहा है तो वो, उसकी भी नॉलेज आपके पास हो, और फिर आप तो एज ए सुपरवाइजर ही रहेंगे वहां पर, फिर सुपरवाइजर के बाद जो मार्केटिंग वाले लोग हैं वो कैसे करते हैं, और कैसा फाइनेंस वगैरह सब चीजें आ जाती हैं, ये सारी चीजें आपको जो है एक बार गो थ्रू करना है। आप एक जगह पे काम करते हुए इन चीजों को प्रैक्टिस करके देखिए, क्योंकि आखिरी में जो है आपको एक टीम वर्क है, ये सिंगल मैन का काम बिल्कुल नहीं है। तो निश्चित तौर पे जब आप बिजनेस करना चाहेंगे या काम करना चाहेंगे साइट पे, तो वहां पर भी आपको जो है वो सारी चीजें प्रैक्टिकल ही आपको करना पड़ेगा। तो लोगों के साथ आपको जो है बहुत ही प्यार से पेश आना है, और वर्कर्स अगर नहीं आएंगे तो आपका टाइम पर वो स्ट्रक्चर खड़ा भी नहीं होगा, तो इसीलिए उनके साथ भी आपको प्यार से डील करना पड़ेगा, माना सभी से। तो वो बहुत बड़ी चीज है, तो वो चीजें आप एक बार करके देखिए, और अनुभव जो है सबसे बड़ा शिक्षक है। तो वो चीजें हमेशा आपको याद रखना है, नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भी आप टाइम दे। जैसे डिग्री प्राप्त करने के लिए आपने 3-4 साल लगाया है, वैसे प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भी आप 2-3 साल आराम से दीजिए, फिर आपको क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, और आप एक अच्छे जो है इंजीनियर बन के काम करना शुरू कर देंगे, और सोसाइटी के लिए भी बेहतर करेंगे, और अपने लिए भी बेहतर अपने आप ही हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि भाई, जो बंदा दूसरे का सोचता है तो उसका खुद का अपने आप भला हो जाता है ना, जो दूसरे का नहीं सोचेगा तो उसका भी भला मुश्किल से होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, कर भला तो हो भला। तो चलिए, इन्हीं शुभ आशाओं के साथ महेश जी, एक छोटा सा मैसेज के साथ हम लोग पूरा करेंगे, तो आप हमारे विद्यार्थी मित्रों को एक मैसेज क्या देना चाहेंगे?
0: विद्यार्थियों के लिए आज की डेट में सबसे बड़ा जो चीज है वो है इंटरेस्ट। उन्हें कोई भी चीज करनी है तो उन्हें इंटरेस्ट लेके करना है, उन्हें इंटरेस्ट नहीं है तो उन्हें कुछ और सोचना है। अगर इंटरेस्ट होगा तो ही वो एक्सेल कर पाएंगे। तो आपको, आप सोचिए, समझिए आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट के पीछे भागिए बस। जितना ज्यादा आप में नॉलेज होता जाएगा उतने ज्यादा आप एक्सपीरियंस होते जाएंगे, आपका एक क्लैरिटी आएगी, पढ़ाई हो गई, कोई भी फील्ड हो गया, उसमें क्लैरिटी आएगी, और वो क्लैरिटी होगी तो कोई भी आपको सराहेगा, जो भी बात जिसके साथ आपको बिजनेस करना है, जॉब करना है। तो इंटरेस्ट और क्लैरिटी होगा ना,

0: तो आप आगे बढ़ पाएंगे, बहुत आगे बढ़ सकते हैं।
1: जी महेश जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया और बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हैं। इतना अच्छा जो है एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए करियर इन सिविल इंजीनियरिंग के बारे में, और फिर से मिलते हैं और हम चाहेंगे कि आप इसी तरह रेडियो के साथ जुड़े रहें नई नई बातों के लिए। तो चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माय कार इज इन माय कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटीफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू करते हैं, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

खुशियों की गुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपनेपन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में। सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: you.
1: Hold your dad, Daddy, hey!

गया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए।

0: मैंने कहा काम तो बताइए।
1: काम?
0: हाँ।
1: काम सीधा साधा है, मेरा एक वादा है।
0: अच्छा?
1: प्यार तो निभाओगे?
0: निभाऊंगा।

0: Mitgedei.
1: Pelle Sella am Mitgedei. Pelle Sella am Mitgedei.

0: हेलो यशु, कैसा है?
1: ठीक हूँ, आप बताओ?
0: मैं भी ठीक हूँ। और आजकल क्या कर रहे हो तुम? बहुत दिनों से दिख नहीं रहे स्टूडियो में।
1: भैया थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया था मुंह पे, इस कारण तबीयत खराब हो गई थी।
0: अच्छा, और मम्मी पापा कैसे हैं?
1: मम्मी पापा तो ठीक है। आपको पता है क्या हो गया? पापा गए हैं दिल्ली।
0: अच्छा,
1: काम से। और जब तक मेरी तबीयत खराब थी तो मैं ही सुबह के समय, जब मम्मी तो जाते हैं स्कूल में पढ़ाने और मेरी बहन जाती है पढ़ने स्कूल में, तो उस समय दोनों चले गए होते हैं, मैं घर पे अकेला होता हूँ। और आसपास कितने सारे लेबर्स वर्कर्स काम करते हैं ना, तो घर पे अकेले रह रहे कर थोड़ा डर लगता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी मम्मी देकर जाते हैं घर पे कि संभालना।
0: अच्छा, और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तुम्हें?
2: हेलो बच्चो।
3: हाय दीदी,
2: कैसे हो तुम लोग?
3: ठीक है।
2: अच्छा, तो स्टूडियो में अभी तुम लोग बैठ के क्या बातें कर रहे थे? यश और पंकज, आप दोनों की आवाज़ सुनाई दे रही थी।
0: दीदी अभी यश आया बहुत दिनों बाद, तो मैं बस पूछ रहा था कि आजकल कैसा है और क्या चल रहा है उसके घर पे। और इसने बताया कि इसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है क्योंकि इसके पापा कहीं बाहर गए हुए हैं।
2: भाई अगर मम्मी पापा घर पे ना हो, कोई भी एक घर पे ना हो, तो बच्चों पे थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आ ही जाती है।
4: हाँ दीदी।
3: जी दीदी,
2: है ना? तो एक काम करते हैं, आज हम इसी बारे में बात करते हैं कि आप बच्चों के ऊपर कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं।
3: जी दीदी।
1: ओके
2: ठीक है। तो सबसे पहले दृष्टि आप बताओ कि कौन

0: कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप फील करते हो कि आपकी है?
1: कभी कभी जब मम्मी घर पे नहीं होते, मतलब मोस्टली मम्मा घर पे नहीं होती क्योंकि वो स्कूल में पढ़ाने जाते हैं ना, तो इस वजह से फिर घर को संभालना, जैसे बर्तन धोने का काम होता है, झाड़ू पोछा होता है, तो यश भी कभी कभी यहाँ स्टूडियो आ जाता है तो मैं घर पे वो सारे काम करती हूँ और मुझे लगता है कि वो सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो मुझे करनी चाहिए।
0: अच्छा, घर के अलावा भी कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको लगता है, चाहे वो पढ़ाई में अच्छा करने की हो या फिर कुछ और ऐसे काम हो, जो आपको लगता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है?
1: जी दीदी, क्योंकि स्कूल में हम लोग को कितने सारे काम देते हैं, कोई टीचर हमें इंग्लिश स्पीकिंग मॉनिटर बनाता है तो उसके लिए भी हमको पूरे क्लास को देखना पड़ता है कि वो लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं कि नहीं, तो वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मतलब मुझे लगता है मेरी स्कूल में जो फ्रेंड्स होती हैं, कभी कभी क्या होता है वो लोग एब्सेंट हो जाते हैं तो उनका काम करवाना ना उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उसमें उनकी मदद करना भी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।
0: अच्छा, तो अभी यश आप बताओ, आपको कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फील होती हैं?
2: दीदी, मेरे को रेडियो में जैसे हमारा उड़ान का शो आता है तो उसकी प्रिपरेशन के लिए दीदी ने जिम्मेदारी दी है कि हम कुछ चीजें घर से लाएं और कुछ इधर आके थोड़ी प्रिपेयर कर लें। और मम्मी ने कुछ घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी हैं, जैसे घर पे साफ सफाई रखना, कोई ना कोई काम करते रहना और घर का संभाल रखना, और जैसे कुछ नीचे लेबर्स काम करते हैं, ऐसे मेरे को थोड़ा डर तो लगता है बट लेकिन फिर भी स्कूल में फ्रेंड्स की तो बस हेल्प करना, उनके साथ मस्ती करना, बस खेलते रहना, पढ़ते रहना फ्रेंड्स के साथ स्कूल में, जैसे उनकी हेल्प करना, और क्लास में जैसे मैम ने कुछ ना कुछ अगर हमें किसी चीज के लिए अपॉइंट किया हो तो वो काम बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे एक्यूरेट चीज करके मैम को थमाना।
0: ठीक है, ये तो बहुत अच्छी चीजें बताई आपने। पंकज, आप बताओ आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो आपको लगता है इस वक्त आपकी है?
3: मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सुबह आंखें खोलते ही शुरू हो जाती है, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि सुबह अपने टाइम पे उठना ताकि हम पूरे दिन का जो टाइम है उसको मैनेज कर पाए। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं 5 बजे उठूं जिससे कि मैं अपने पूरे दिन का जो भी शेड्यूल है उसको मैं मैनेज करूं। तो ये स्टार्टिंग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उसके बाद बिना किसी के कहे और बिना मम्मी पापा के कुछ बोले ही अपने सारे कामों को करना, जैसे स्कूल के लिए रेडी होना, ब्रेकफास्ट करना, और जो भी काम होते हैं हमारे, कपड़े वगैरह भी अच्छे से आयरन करके पहनना, ये सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ये मैं खुद करता हूँ।
0: ठीक है, और
3: घर पे कोई भी अगर सामान लाना हो बाहर से या कुछ भी काम करना हो जो करना चाहिए तो वो सब करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होती है। और स्कूल में भी अगर टीचर नहीं हो तो स्कूल के क्लास की चीजों का ध्यान रखना और हमारे जो भी शेड्यूल के जो काम होते हैं उनका खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी भी शेड्यूल को तोड़े नहीं, तो वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, शेड्यूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। अच्छा सैंडी, आपको क्या लगता है आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं?
4: दीदी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम जब पंकज से बोला कि जब उठते तब से, तो सबसे पहला तो टाइम का पंकज ने बताया वो है ही है, फिर दूसरा कि हम अपने कभी कभी कुछ काम के लिए मम्मी बोलती है तो मैं शायद कभी नहीं कर पाता, तो फिर मैं बाद में फील करता कि हाँ मेरी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे करनी भी चाहिए। फिर फर्स्ट पढ़ाई, क्यों हमारी पढ़ाई के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब हम कुछ नहीं करेंगे तो फिर हमारे मम्मी पापा को बुरा लगेगा, तो ये दूसरी पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर अगर स्कूल से आए तो अपना बैग सही जगह पर रखना, अपनी कॉपी किताब का ध्यान रखना, ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि कभी कभी मैं किताबें यहाँ रख देता हूँ और ध्यान नहीं देता हूँ, तो मुझे फील होता है कि हाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे रखना चाहिए, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम होती है, कोई चीज नहीं मिलती है, फिर स्कूल के लिए कॉलेज के लिए लेट होते हैं, इसीलिए ऐसी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है जो हमें करनी चाहिए।
0: फ्रेंड्स के प्रति कुछ नहीं?
4: हाँ, फ्रेंड्स के प्रति भी है, जैसे कि अगर वो दुखी है तो मुझे पता करना है कि दुखी क्यों है, अगर मेरी बात से कोई बुरा लगा तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कारण बुरा क्यों लगा उसे, फिर उसे हैप्पी भी रखना, ये भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
3: दीदी, हमारी फ्रेंड्स के लिए तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि अगर हम अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर गए हैं और हमारे भले ही हमारे पेरेंट्स को इन्फॉर्म हो या नहीं हो, लेकिन फिर भी अगर फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर गए हैं और वहां कुछ भी करते हैं, एक दूसरे को संभालना या किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसको समझाना या उससे निपटना, सारे फ्रेंड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम सही सलामत

0: सकता वैसे।
1: अच्छा दीदी, हमें हमारे मैनर्स का ध्यान रखना, वो भी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम किसी से जुबान न लड़ाए।
2: ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको फील होती है?
1: जी दीदी।
2: अच्छा तो अब मुझे ये बताओ, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने फील की अपने फैमिली के प्रति, स्कूल के प्रति, टीचर्स के प्रति, फ्रेंड्स के प्रति, क्या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी भी हैं जो आपको अपने देश के प्रति फील होती हैं?
0: उसे स्वच्छ रखना, जैसे हमारे भारतीय कंट्री से हमारे इंडिया का कई कई जगह देखने आते हैं फॉरेनर्स, वो सोचते होंगे कि थोड़ी बहुत गंदगी है यहाँ पे, जैसे फॉरेन कंट्री साफ होती है वैसे हमें भी अपने भारत को स्वच्छ और साफ बनाना चाहिए ताकि और लोग आके हमारे भारत को देखें।
2: ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होता है?
0: यस दीदी।
2: और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी?
1: दीदी हमें पॉल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए, ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
2: और पंकज?
3: दीदी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक और होती है टूरिस्ट के हिसाब से देखा जाए तो, जो हमारे बाहर के जो फॉरेनर्स हमारे इंडिया में घूमने के लिए आते हैं तो उन्हें काफी लोग होते हैं जो उनको मिसगाइड कर देते हैं या किसी तरह उनसे कुछ पैसे कमाने की लालसा दिखाते हैं और उनको लूटने की भी कोशिश करते हैं। तो एक तरह से हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उनके साथ कहीं कुछ गलत हो रहा है या कोई उनको मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है और वहां पे अगर हम मौजूद हों तो हम उन्हें सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं और उनको कुछ अच्छा बताया जाना चाहिए मेरे हिसाब से।
2: मतलब सही इन्फॉर्मेशन देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ। आपको लगते हैं। अच्छा और सैंडी आपको?
3: दीदी आजकल जैसे देश में काफी चर्चे में चल रहा भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार से जैसे हम खुद भी भ्रष्टाचार करते हैं, जैसे मैं भी कई बार बाइक पे जा रहा होता हूँ तो हेलमेट नहीं भी पहना होता लेकिन ट्रैफिक पुलिस वाला अगर रोकता है तो मैं साइड से निकल जाता हूँ या उसको चकमा देके कहीं से खिसक जाता हूँ, तो ये नहीं करना चाहिए लेकिन मैं टाइम बचाने के लिए या पैसे बचाने के लिए ऐसा कर लेता हूँ। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उस जिम्मेदारी को अपने सर पे लूँ और जितना हो सके अपने देश के लिए कुछ करूं, तो ये देश के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ऐसे और भी देखा जाए तो कई तरह के भ्रष्टाचार हैं, जिस भ्रष्टाचार में हम साथ देते हैं, हम खुद जिम्मेदार होते हैं उनके, तो ऐसे भ्रष्टाचार हमें नहीं करने चाहिए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
2: बिल्कुल, मतलब किसी चीज को सपोर्ट ना करना, जो गलत काम है उसे सपोर्ट ना करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको।
3: जी दीदी बिल्कुल।
2: तो मतलब आज से पंकज हेलमेट में ही हमेशा नजर आएगा।
1: जी दीदी।
2: अच्छा ठीक है बच्चों, देखो ये बात आपने बहुत अच्छी कही क्योंकि कभी कभी हम किसी बारे में सोचते नहीं है लेकिन जब हम सोचना शुरू करेंगे तो हमें समझ में आएगा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है।
1: जी दीदी।
2: है ना
0: दीदी, जैसे अगर किसी ने कोई गलत काम किया और हम उस बारे में जानते हैं बट लेकिन किसी को बता नहीं रहे हैं तो फिर वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनते है कि हम बताएं। हाँ। जैसे अगर वो हमारा दोस्त और हमें वो आ रहा है कि अगर हम बता देंगे तो आगे क्या होगा ऐसे करके, लेकिन हम कुछ ना कुछ गलत ही कर रहे हैं क्योंकि अगर हम बताएंगे तो आगे जाके उसकी फ्यूचर में उसको हेल्प मिलेगी, जैसे अभी हम उसको रोक देंगे वैसे काम करने से तो फिर आगे जाके वो वैसे करेगा नहीं क्योंकि उसे याद आएगा कि अरे हाँ मैंने किया था तो ऐसे हुआ था।
2: तो मतलब आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि अपने दोस्त को गलत कामों में साथ नहीं देना है?
0: यस दीदी होती है,
2: फील होती है।
1: दीदी मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, सच बोलना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
2: बिल्कुल, सच बोलना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत अच्छी बात कही दृष्टि आपने। अच्छा ठीक है, ये तो आप लोगों ने बताया कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको फील होती हैं। अब ये बताओ कभी कोई ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन आई है या कोई ऐसी सिचुएशन आई है जब आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया हो जबकि उस समय सर्कमस्टेंसेज ऐसे नहीं थे कि आप वो चीज कर पाए लेकिन क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इसीलिए आपने वो काम किया हो?
3: दीदी एक बार क्या हुआ था, अभी ज्यादा दिनों की बात नहीं है, एक दो महीने पहले की बात है, तो मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई थी लेकिन उनकी तबीयत अचानक खराब होने के कारण कंस्ट्रक्शन साइट पे जो भी लेबर्स या मिस्त्री काम करते थे उनका ध्यान रखना, उनसे काम करवाना या साइट को संभालना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई थी क्योंकि अगर नहीं संभालते तो काफी नुकसान हो जाता, तो मैंने डेढ़ महीने तक कंस्ट्रक्शन साइट को संभाला था अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर।
2: ये तो पंकज ने बहुत अच्छी बात कही क्योंकि कभी कभी जब डिफिकल्ट सिचुएशन आती है तो हम हार

0: बन जाते हैं या हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन दुखी ना होकर रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानकर जो उसने काम किया उस सब के लिए मुझे लगता है हम सबको जोरदार ताली बजानी चाहिए।
1: थैंक यू।
0: अच्छा, तो अब मुझे ये बताओ कि जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं कर पाते हो तो आपको कैसा फील होता है?
2: बहुत बुरा लगता है दीदी। ये मेरे साथ आज ही हुआ। मतलब मैं रेस में थी और मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि सफायर हाउस यानी कि जो ब्लू हाउस होता है उसको कैसे भी करके मुझे जिताना था रेस में, और उन्होंने बोला था जो फर्स्ट और सेकेंड आएगा वही जीतेगा। बट लेकिन हुआ क्या, जो मेरे साथ दो लड़कियां थी ना अलग अलग हाउसेस की, वो पहले भाग गई टाइम से पहले, और मैंने जब सर को बताया तो सर ने भी बोल दिया कि नहीं नहीं कोई बात नहीं होता है। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मेरे को सेकेंड या फर्स्ट आना चाहिए था, लेकिन मैं थर्ड आई तो मुझे लगा कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं कर पाई।
0: अच्छा दृष्टि, देखो इसमें एक बात ये है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा अच्छा परफॉर्म करने की होनी चाहिए, लेकिन फर्स्ट या सेकेंड आए ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें नहीं लेनी चाहिए। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम अपना बेस्ट परफॉर्म करें, कहीं भी हमारी परफॉर्मेंस में हमारी तैयारी में कमी ना हो, लेकिन रिजल्ट क्या होगा वो तो हमारे हाथ में नहीं है। तो बच्चों कभी भी रिजल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि अपनी परफॉर्मेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना।
2: दीदी,
3: हाँ दीदी,
2: वो लोग जानते थे मैं फर्स्ट सेकंड आ जाऊंगी, क्योंकि जब उन्होंने सिलेक्शन किया था तो भी मैं फर्स्ट आई थी, लेकिन वो लोग पहले भाग गए इसलिए वो फर्स्ट आ गए।
0: हमें बुरा नहीं फील करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने अपना बेस्ट दिया तो दूसरों के कंपैरिजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है, सिर्फ हमने क्या किया वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है।
2: जी दीदी, और बाद में जिन दीदी ने मुझे सिलेक्ट किया था उन्होंने बोला कि अगर वो लोग जल्दी नहीं भागते तो आप फर्स्ट जरूर आते, इसलिए मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने ऐसा बोला।
0: और सैंडी आप बताओ, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं कर पाते हो तो कैसा फील होता है?
3: ऐसे तो बुरा लगता है दीदी, क्योंकि जो हमारा दायित्व था हमने पूरा नहीं किया, तो बाद में से फील होता है कि हाँ मुझे करना चाहिए था और नेक्स्ट टाइम करने की कोशिश भी करते हैं।
0: कभी आपने ऐसा कुछ फील किया है अपनी लाइफ में?
3: हाँ दीदी, एक बार घर पे शायद कुछ काम चल रहा था, पापा ने बोला था कि उस दिन संडे था, पापा ने बोला था ये काम करके रखना, वो गए थे ड्यूटी, फिर मैंने किया नहीं, फिर शाम को आया तो उन्होंने बोला किया नहीं, फिर दूसरे दिन मैंने याद नहीं किया, तो फिर मुझे तीसरे दिन से बुरा लगा कि हाँ मुझे कर देना चाहिए था, क्योंकि बाद में तीसरे दिन पापा ने खुद ने किया, फिर मुझे बुरा लगा कि हाँ मुझे कर देना चाहिए था, तो मुझे तो उस वक्त थोड़ा बुरा लगा था।
0: बिल्कुल, जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो हमें बुरा तो लगता है, लेकिन उसके बाद हम स्टेप क्या लेते हैं वो भी बहुत मायने रखता है। अगर हम ये सोच लें कि हमें आगे करना ही है तो मतलब हमें एक लेसन मिल गया जो लाइफ लॉन्ग हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने में मदद करता है। तो क्या आपने ये लेसन दिया?
3: हाँ बिल्कुल दीदी।
0: अच्छा यश, आप बताओ आपको कैसा लगता है या फिर आप उसके बाद क्या करते हो?
4: वैसे तो बहुत बुरा लगता है जब मैं कोई काम पूरा ना कर पाऊँ, तो जैसे घर पे मम्मी अगर कोई काम देकर जाएं और अगर वो पूरा ना हो तो जब मम्मी घर आते हैं तब थोड़ी डांट भी पड़ती है और बुरा भी बहुत लगता है कि मतलब ये काम पूरा नहीं कर पाया, जैसे कोई भी काम हो घर का हो चाहे बाहर का हो, तो मतलब फिर उससे तो मैंने सीख ली और अब मम्मी कोई भी काम बोले तो मैं टाइम टू टाइम करके दे देता हूँ।
0: मतलब मम्मी जो काम बोलती है वो इम्पोर्टेंट ही होगा और मैं कर सकता हूँ तभी वो बोलती है, इसीलिए उसे तुरंत कर देना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल तुरंत कर देना सबसे अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छी बात बताई यश आपने। पंकज आप बताओ, कभी आपने ऐसा कुछ फील किया है या फिर उसके बाद आपने क्या किया है?
5: दीदी बहुत पहले की बात है, जब मैं थोड़ा छोटा था और मेरे मम्मी और दीदी वगैरह सब गाँव गए हुए थे, मैं और मेरे पापा ही केवल यहाँ आबरोड में रह रहे थे, तो एक बार क्या हुआ कि पापा ने कुछ बाहर सूखने के लिए रखा था और पापा ने कहा था कि बारिश हो या कोई जानवर उसे खा जाए उससे पहले उसको तो घर में रख देना और ध्यान रखना थोड़ा, तो मैं खेलने में बिजी था और मैंने उस चीज का ध्यान नहीं रखा और इतने में कोई गाय आके उसने वो खा लिया, तो फिर जब पापा घर पे आए और उन्होंने देखा तो मुझे बहुत डांट पड़ी और फिर मुझे बहुत बुरा फील हुआ।
0: और उसके बाद फिर आपने क्या सोचा?
5: उसके बाद मैंने सोचा कि मैं दोबारा कभी ऐसी गैर जिम्मेदारी वाली हरकत नहीं करूंगा।

0: अच्छा बच्चों, मुझे ये बताओ, जब आप ये सोचते हो कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा फुलफिल करोगे और वो डिसीजन लेते हो, तो क्या उसको हमेशा खड़े रह पाते हो या भूल जाते हो?
1: दीदी, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं भूल जाती हूँ, वरना तो मैं कर लेती हूँ।
0: अच्छा, तो अब एक और बात मुझे ये बताओ
2: दीदी, कई बार होता है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होती है, लेकिन फिर भी हम उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते नहीं, उनसे दूर रहने की कोशिश करते हैं।
1: जी दीदी।
0: अच्छा, तो उनसे दूर रहने की जब हम कोशिश करते हैं, तो वो क्या रीजन होता है, हम क्यों कोशिश करते हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों से भागते क्यों हैं?
2: क्योंकि उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने में शायद हमें ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है। जैसे कि एक बार मुझे मेरी मम्मी ने कहा था कि कुछ काम दिया था करने को, एक हॉस्पिटल का बिल था, उसकी कॉपी बनाने को कहा था कि इसकी कॉपी कर देना, सारे जितने भी पेजेस है उनके, तो 30-40 पेज थे और उसमें बहुत सारे दवाइयों की लिस्ट थी, तो उसको लिखना था मुझे, लेकिन वो इतने ज्यादा थे कि मुझे देख के उसको करने की इच्छा नहीं हुई, तो मैंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं की थी। लेकिन बाद में, बहुत देर बाद मैंने वो काम किया।
0: क्योंकि कभी कभी हमारा मन नहीं होता है।
2: हाँ, तो मैं यही कहना चाहता था कि कई बार हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें पता होती है, लेकिन फिर भी हम उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं,
0: क्योंकि हमारा मन नहीं होता है या फिर हमें मजा नहीं आता है वो करने में।
2: हाँ दीदी,
0: है ना। लेकिन मजे से ऊपर होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसीलिए आपने करने की कोशिश भी की। तो यश, आप बताओ, कभी आपने अपनी किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने की कोशिश की है?
3: नहीं दीदी।
0: अच्छा मुझे बच्चों, आप ये बताओ, ऐसी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको फील होती है जो आपके अराउंड लोग हैं, जो सबसे क्लोज लोग आपके अराउंड हैं, जैसे आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके टीचर्स हैं, तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको फील होती हैं कि उन्हें फुलफिल करनी चाहिए आपके लिए? हम पंकज, आप बताओ।
2: दीदी, मेरे साथ कई बार क्या होता है कि स्कूल में जैसे काफी टीचर्स हैं जो दूसरे स्टूडेंट्स में और मुझ में काफी डिफरेंस देखते हैं, और मुझे नहीं लगता कि इतने डिफरेंस जो वो महसूस करते, फील करते, वो होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर स्टूडेंट को एक जैसा ही देखें और उनसे अपनेपन जैसा व्यवहार करें।
0: अच्छा दृष्टि, आप बताओ।
1: दीदी, मुझे लगता है कि मेरी मम्मी को मुझे बहुत अच्छा अच्छा खाना बना के देना चाहिए। वैसे तो वो बहुत अच्छा खाना बना के देते हैं, लेकिन उनके काम की वजह से उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। वो सुबह सुबह जल्दी उठ के खाना बनाते हैं और मैं उसमें उनकी हेल्प करती हूँ, लेकिन फिर भी मतलब मुझे चाहिए कि वो और अच्छा खाना बनाए,
3: यानी कि कुछ स्पेशल बनाए।
1: हाँ।
0: अच्छा, तो ये आपको फील होता है मम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
1: जी दीदी।
0: और अच्छा यश, आप बताओ।
3: दीदी, मैं तो अपने दोस्तों के बारे में ये सोचता हूँ कि हर समय मेरे साथ ही रहें और कभी मेरे विरोधी टीम में ना चले जाएं।
0: अच्छा, मतलब आपको ये लगता है कि आपके फ्रेंड्स की जिम्मेदारी है कि वो हमेशा आपकी साइड लें।
3: हाँ, अगर गलत काम हो तो मेरे को समझाएं, लेकिन अगर सही बात है तो फिर उनको मेरे साथ ही रहना चाहिए।
0: और सैंडी, आप बताओ।
4: दीदी, मुझे मेरी मैम से लगता कि उन्हें ऐसा कभी लगता कि हाँ मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता, तो कभी भी मुझे ऐसा बोलते हैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, मैम को विश्वास होना चाहिए मेरे पे।
0: मतलब आपको ये लगता है कि आप पे विश्वास रखना टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
1: जी हाँ।
0: अच्छा, क्योंकि जब वो ऐसा नहीं करते तो आपको बुरा लगता है।
4: हाँ बहुत।
0: और किसी से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है, राह चलते लोगों से फील होती है, कुछ ऐसा लगता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मम्मी पापा की?
1: दीदी, मुझे लगता है कि कभी कभी क्या होता है, कोई कोई लोग ना, किसी के अगर हम लोग के जैसे कभी ऐसा हुआ होता है किसी किसी के साथ कि उस जन के पैसे गिर जाते हैं, लेकिन बाजू में वो जो जाता है वो जानता है कि इसके पैसे गिरे हैं, लेकिन वो उसको नहीं देता, वो खुद रख लेता है। तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ना खुद रखकर उस जन को दे जिसके वो पैसे थे।
0: ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो हमें लगता है दूसरों को हमारे प्रति फुलफिल करनी चाहिए।
1: जी।
0: लेकिन अगर वो नहीं कर पाते हैं तो इन दैट केस आप लोग क्या करते हो, मतलब आपको कैसा फील होता है वो एक अलग बात है। जब वो लोग वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं कर पाते तो आप क्या करते हो?
1: दीदी, मैं जब मेरी फ्रेंड ऐसे करती है तो मैं उसको समझाती हूँ कि देख, मत तो कभी फ्रेंडशिप तोड़।

0: नहीं चाहती क्योंकि तू ही मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बट मैं उसको समझाती हूँ और बाद में फिर उन दोनों के बीच में जो वो फाइट होती है ना, उसको सॉल्व भी करना होता है, तो उसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग साथ में बैठकर।
1: अच्छा, ये बात आपने अच्छी कही क्योंकि कई बार नहीं समझ पाते, हमें लगता है दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमारी बात को समझे, लेकिन सबका समझने का नजरिया अलग अलग होता है।
0: जी जी जी,
1: तो जिम्मेदारी हमारी हो जाती है कि अगर वो ना समझे तो हम उन्हें समझाएं, क्योंकि कभी कभी हम अपनी बात कहते नहीं हैं, दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो समझ जाएं।
0: जी दीदी, ये आपकी बात बहुत सही है,
1: है ना? तो समझाने में कोई पराई नहीं है, अगर कोई आपकी बात ना समझे तो उसे समझाओ। अच्छा सैंडी, आपको क्या लगता है?
2: दीदी वो नहीं कर पाते, बुरा तो लगता ही बात है, फिर मैं सोचता हूँ कि मैं खुद वो कमियां दूर करता हूँ। कभी मैम बोलते कि मैम को विश्वास नहीं, तो फिर मैं सोचता कि मैं अच्छा परफॉर्म करूँ तो मैम को लगे कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि मैम को मुझे विश्वास हो कि हाँ मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ और परफॉर्म करने की कोशिश भी करता हूँ।
1: ये अच्छी बात है अगर हम कोशिश करें अपनी तरफ से, क्योंकि हम दूसरों को तो बदल नहीं सकते।
0: जी दीदी,
1: है ना? तो दूसरे अपनी जिम्मेदारियां ना भी समझें, लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी है और ये हमारे प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि
2: हाँ
1: हम
2: दीदी
1: अच्छा परफॉर्म करें।
0: जी दीदी,
1: है ना? और पंकज आप बताओ।
3: दीदी जैसे स्कूल में टीचर्स तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कई बार नहीं भी निभाते हैं, या फिर उनसे कोई मिस्टेक में या किसी स्टूडेंट को समझने में गलती भी कर देते हैं अनजाने में, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उस पर ज्यादा ध्यान न देकर अपने जो भी काम है उसमें ध्यान देना चाहिए और मुझे अच्छा परफॉर्म करना चाहिए जो भी मेरा काम है उसमें।
1: बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारे पास एक टीचर है, लेकिन एक टीचर के पास कितने सारे स्टूडेंट्स होते
3: हैं?
0: 65।
1: अब सोचो एक एक को समझ पाना कितना मुश्किल है।
0: बहुत ज्यादा दीदी,
1: है ना? तो कभी अगर बाय चांस या गलती से ऐसा हो भी जाए तो हमें बुरा फील नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो चलो आज हमने बहुत सारी बातें की रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर और हमने ये समझा कि दूसरों की जो हमारे प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज है तो फुलफिल नहीं भी कर पाते, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे प्रति हमारी भी हैं जो हमें पूरी करनी है।
0: जी दीदी,
1: तो इसी के साथ इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। फिर से मिलेंगे बच्चों की दुनिया के अगले एपिसोड में और करेंगे ढेर सारी बातें। तब तक के लिए बाय बाय।
0: बाय बाय।
4: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
5: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ? कहते मैं उठा, ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया। सबको डांट रहा था तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा? इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे? किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है? हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहां और ठीक करने की उंगली भी यहां। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं? उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
4: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए।
1: आहा।

0: शबनम आप ही ठंडी फिदाओं से जा जा।
1: अरे जा जा।

तक कर तेरा दिल भूल जाऊं। खेल खेल में मेलो दिल का ऐसा खेल दिखाऊं, नजरों की मैं डोर फेंक कर तेरा दिल उलझाऊं। पागल को पागल पहचाने जाने नहीं अनाड़ी, तो मैं हूँ मस्त मदारी, मैं हूँ मस्त मदारी, बिना तीर दिल घायल कर दूं।

0: साथ साथ।
1: अरे रे,
0: घटा के संग संग
1: संभालना,
0: हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, ओ साथी।

बन के कहाँ रहता है, दरिया का बहता पानी यूं न रहेगा हरदम। उसमें है आखिर पानी बन के कहाँ रहता है, दरिया का बहता पानी चांद से।

जश्न मोहब्बत थी तू दिल को धड़क लेने दो प्यार की आदत सीखो।

0: हार कभी जीत कभी काहे करो न रे हार कभी जीत कभी काहे का
1: करो न रे
0: हार कभी जीत।

बात हो गुलजार, जहाँ चार यार, जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार, जहाँ चार यार। महफिल रंगीन जमे, महफिल रंगीन जमे, दौर चले धूम मचे, मस्त मस्त नजर देखे नए चमत्कार, जहाँ चार यार, जहाँ

चूहे को पड़ गए जान के लाले, बोला मुझको कोई बचा ले। चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे, चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे, पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे। हां, पंजरों का

ਕਿ ਲੱਭਣੇ ਲੱਭਣੇ ਝਗੜੇ ਅਰੇ ਝਗੜੇ ਲੱਭਣੇ।

समझ में आया। रात को शहर पी के आया, दरवाजे पे फिर चिल्लाया, उस दिन बीवी बन गई भोली, कुंडी खोली हंस के बोली, जाने तमन्ना अंदर आओ, पहले तो कुछ खाओ आओ, फिर बिस्तर पे होंगी बातें, बड़े प्यार से कटेंगी रातें। शौहर चौंका, भूले से मैं, ये किसके घर आ गया यार, मेरी बीवी मुझे कभी भी दे नहीं सकती इतना प्यार। शौहर बिस्तर छोड़ के भागा और कुंडी ताला तोड़ के भागा, शौहर बिस्तर छोड़ के भागा, कुंडी ताला तोड़ के भागा, भागा रे भागा रे भागा रे भागा रे भागा। बोला देवी माफ कीजिए, मेरे साथ जरा इंसाफ कीजिए, मुझको अपने घर जाना है, वरना बीवी फिर मारेगी। उस दिन बीवी होश में आई, बंद हो गई सारी लड़ाई, नफरत हारी उलपत जीती, लुटी खुशी फिर लौट के आई। अरे नफरत हारी उलपत जीती, लुटी खुशी फिर लौट के आई, आई रे आई रे आई रे आई रे आई। पीना छूट गया, पीना छूट गया, बीवी ने इतना दिया प्यार, पीना छूट गया। फिर दोनों ऐसे मिले, हे हे, फिर दोनों ऐसे मिले, प्यार में ही डूब गए। प्यार अगर मिले तो हर नशा है बेकार, जहाँ चार गया।

0: Hi, Judy. Aren't you trying this? It's very nice. Have more. Hi, Sherman.
1: Hi. आप खड़ा क्यों नहीं खा रहे?
2: जी नहीं, मैं डाइटिंग कर रही हूँ।
0: डाइटिंग?
3: लगता तो नहीं।

जब भी देश की बात होती है ऐसे लोग मजाक में उड़ा देते हैं। ये लोग जो पीते हैं वो शराब नहीं, अनगिनत लोगों का खून है। और आज जब बच्चे भूख से पिलकते हैं तो ऐसे लोग अनाज पांव तले कुचलते हैं। ऐसे फूल इनके हाथों कुचले जाते हैं, मसले जाते हैं। लोगों के पास तन ढकने को कपड़ा नहीं और इन्हें तन ढकने का शौक नहीं। ये गुलाबी रात वाले काली रात के जिम्मेदार शबाब और शराब के नशे में चूर, मखमल के बिस्तर पर सोने वाले इतना भी नहीं सोचते कि आज इन्हीं की रक्षा के लिए इनके अपने भाई